प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। ऑगस्टो अजायल पेगेस के नेतृत्व में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल पोतवी स्थित ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवास भी शामिल हुए। इस दौरे का उद्देश्य कस्टम्स प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, परिचालन लागत को कम करना और ड्रग्स तस्करी, अवैध उत्पादों तथा टैक्स से जुड़ी धोखाधड़ी से सीमाओं की बेहतर सुरक्षा करना है। आईटी सेक्टर के पूर्व मंत्री दीपक बालगुबिन को फोन टैपिंग जांच के सिलसिले में समन भेजा गया है। याद दिला दें कि इस मामले में CCID की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख और पूर्व ACP लील राम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। CCID का आरोप है कि लील राम दियाल ने प्रेस्ट सोल ब्रांड के एक लिसनिंग टैपिंग डिवाइस का एक्सेस कोड देने से इंकार कर दिया था। आशंका है कि इस उपकरण का इस्तेमाल बातचीत रिकॉर्ड करने की दिशा में किया गया था, जिसके कुछ अंश मुस्तास लीक्स नाम के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के सामने आए हैं। फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए। अमेरिकी सेना ने बताया कि गुरुवार को शाम ईरान के सैन्य ठिकानों पर नया दौर शुरू किया गया। ये 13वीं रात लगातार हमले हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, जबकि दोपहर को उत्तर पश्चिम दिशा में थोड़े से बादल घिराएंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठाएंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:43 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 आप विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन। मेरे अज़ीज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु यौम जुम्मा मुबारक हो। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की इनायत से आप सब खैर वाफियत से होंगे। जुम्मातुल मुबारक की इन मुकद्दस घड़ियों में पेश खिदमत हैं उर्दू नशरियात सबाल खैर। आपका मेज़बान निसार अख्तर दिल की अता गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी साल का दूसरा महीना माह सफ़रुल मुज़फ़र हमारे दरमियान साया फिगन है। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें माह सफ़र की बेपाया रहमतों बरकतों और फ्यूज़ अनवार से माला माल फरमाए। आमीन। उम्मीद है ये महफिल आप सामईन की तवज्जो का बाइस बनेगी। आइए मजलिस का बाज़ाब्ता आगाज़ कलाम रब्बानी की तिलावत से करते हैं। बागौर व अदब समात फरमाइए।

सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत समात फरमाई। हर आयत जो आपने सुनी वो उस ज़ात की सदा है जो हमें हमसे ज़्यादा जानता है, जो हमारे दुख दर्द, खुशी व गम, दुआएँ, हाजतें, यहाँ तक कि हमारे खामोश आंसुओं से भी वाकिफ़ हैं। कुरान मुकद्दस हमें सिखाता है कि ज़िंदगी क्या है, मकसद हयात क्या है और असल कामयाबी कहाँ है। ये वो कलाम पाक है जो अर्श से नाजिल हुआ ताकि इंसान को अपने खालिक व मालिक परवरदिगार आलम तक पहुँचा दे। कुरान पाक सुनना दरअसल दिल की इबादत है। ये वो लम्हात होते हैं जब बंदा अपने रब से बात नहीं करता बल्कि अपने रब की बात सुनता है। जो

सामईन मोहतरम, माह सफ़रुल मुज़फ़र की 11 तारीख को एक ऐसी मुबारक हस्ती का विसाल हुआ था जिन्हें मुफस्सिर आज़म हिंद के लकब से

जाना जाता है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा इब्राहिम रज़ा ख़ान जिलानी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से हैं। आप आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के वो रोशन चिराग हैं जिनकी रोशनी ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बर्रे सगीर के कोने कोने में इल्म कुरान व सुन्नत की खुशबू फैलाई। हज़रत अल्लामा इब्राहिम रज़ा ख़ान जिलानी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से निकले हुए अल्फाज, उनके कलम से लिखी गई तहरीरें और उनका किरदार आज भी अहले सुन्नत के लिए मशगले राह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में वाक़ है, जहां हर साल ज़ायरीन का हजूम रहता है।

मोहतरम सामईन, पाक व हिंद में तबलीग इस्लाम के लिए जिन औलिया कराम ने नुमाया किरदार अदा किया उनमें हज़रत दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाही का नाम सर फहरिस्त है। माह सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र की 20 तारीख को आप रहमतुल्लाही का उर्स मुबारक मनाया जाता है। आप रहमतुल्लाही तसव्वुफ़ के आला मर्तबे पर फ़ाइज़ इश्क़ हकीकी से सरशार बुजुर्ग थे। आप रहमतुल्लाही ने तबलीग दीन इनफरादी कोशिश तसानीफ़ और रूहानी क़ुव्वत से इस्लाम को आम किया और कसरत से लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, उर्दू प्रोग्राम सबा अल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। माह सफर अल मुज़फ़र की 22 तारीख को हज़रत पीर सैयद ज़हूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ था। दरअसल आप रहमतुल्लाह अलैह 19वीं सदी के एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके मॉरिशस तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी शख्सियत, सादगी और इखलास ने हर एक के दिल को मुनव्वर व मुजल्ला किया। लोगों की खिदमत, बातिन की सफाई और इश्क़ हकीकी की तालीम आपका पैगाम था। हज़रत पीर सैयद ज़हूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार गिश्तिया के कब्रिस्तान में अकीदत व एहतराम से ज़ियारतगाह बना हुआ है।

उस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन नहीं जानता जिसने कलम उठाया तो फतवे इल्म के जगमगाने लगे और जबान खोली तो नातों में इश्क की खुशबू बिखर गई। सामईन, मैं उस इमाम की बात कर रहा हूँ जिन्हें दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। फ़ख्र अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 25 तारीख को हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह का इल्म समंदर की गहराई रखता था और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रग रग में रवां था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक आलिम नहीं, एक तहरीक का नाम है। ऐसी तहरीक जो दिलों को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ती है। आइए उनका एक खूबसूरत कलाम समाप्त करते हैं।

सामईन ज़ीवकार, आज योम जुम्मा है। ऐ दोनों जहां के माबूद, तेरी रहमत से ये बाबरकत दिन शुरू हो गया है। या इलाही, इस दिन में की जाने वाली हर इबादत, हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ गुनहगारों की लग्जिशें माफ़ फरमाने वाले गफूर रहीम, हमारे गुनाहों को ऐसे बख्श दे कि फिर हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी मनकबत के साथ हमारा आज का सबाल खैर प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपने आज की बज़्म को पसंद फरमाया होगा। अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले जुम्मे को फिर हाजिर खिदमत होंगे। आइए आखिर में सलातुस्सलाम का नजराना।

श्रोताओं प्रणाम। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। कहा जाता है कि भक्ति में बहुत शक्ति है। जो भी मनुष्य भक्ति के साथ परमात्मा को पूजता है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है, उनके सभी विघ्न के साथ साथ और मन में कुभावनाएं भी मिट जाती हैं। तो चलिए इसी भक्ति के साथ, आस्था के साथ और इसी भाव के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से।

श्रोताओं कहा जाता है माता रानी शक्ति का स्वरूप है और जो भी माता रानी को सच्चे दिल से सच्चे हृदय से पूछते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं माता रानी, तभी उनको शक्ति का स्वरूप कहा जाता है।

शक्ति। श्रोताओं कहा जाता है कि जब सब द्वार बंद हो जाते हैं तो एक ही द्वार जो है वो खुले रहते हैं और वो है परमात्मा के। जो भी माता रानी के द्वारे गए उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुए हैं और साथ ही मन वांछित वरदान भी मिले हैं। आइए प्रेम से बोलिए जय माता दी।

श्रोताओं, जो मनुष्य अपने पूरे तन मन से और भक्ति के साथ परमात्मा का नाम लेता है तो उनके सभी जो दुख हैं मिट जाते हैं। कहा जाता है जीवन एक यात्रा है, जो भी हम कर्म करते हैं वही लौट कर वापस अवश्य आता है, इसलिए अपने कर्मों में सुधार लाइए, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं, हमारे मन में ही वास करते हैं। आइए एक और सुंदर भजन आप सभी के नाम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में।

शक्ति। श्रोताओं बस यही आशा है कि आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। चलिए इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा की ओर से आप सभी को प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: चलिए वगैरह सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल का अधिक सुलभ बनाना। ये केंद्र अगले सप्ताह से शुरू होगा और शुरुआती चरण में सप्ताह के एक दिन ये काम करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों की क्रमिक भर्ती के साथ ही यहां कंसल्टेशंस यानी जांच की सुविधा सप्ताह में 4 से 5 दिन उपलब्ध कराई जाएगी। मॉरिशस अफ्रीका की सेवा में एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र यानी रीजनल फाइनेंशियल हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए TDB यानी ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने कल इबेन में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। 17 जून से सेंट्रल वॉच अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नए समय निर्धारित किए हैं। सेंट्रल प्लाटो इलाके इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसकी मुख्य वजह जलाशयों के जल स्तर में चिंताजनक गिरावट है। विशेष रूप से देश का सबसे बड़ा जलाशय मोवाक्वा, जिसका जल स्तर गिरकर लगभग 43% के आसपास पहुंच गया है। पानी के भंडार को बचाए रखने के लिए CWA ने दैनिक आपूर्ति घटाकर केवल एक समय कर दी है। विदेशी खबरों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि गुरुवार शाम को ईरान के सैन्य ठिकानों पर नया दौर शुरू हुआ। यहाँ 13वीं रात लगातार हमले किए गए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया दीजिए नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: चल कोई बात नहीं, हम अपना नाम बता देते हैं। 12:07 मैं हूँ विदिता, आ गई हूँ साथ देने के लिए आपके अपने प्रोग्राम में, जो कि है सुहाना सफर।
1: You're listening RM Free Radio. Radio.
0: रेडियो मनोरंजन आर एम थ्री के सभी लिसनर्स का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारा टिकटॉक अभी थोड़ी देर में लाइव होने वाला है, साथ जुड़े रहिए।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: वेलकम स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर। चलिए हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 12:15 हुए हैं आज शुक्रवार 24 जुलाई और आप हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए देखते हैं इधर हमारे इस प्रोग्राम में कौन है जो हमारे मेहमान बनी हैं। तो यहाँ पर थैंक यू सो मच ट्रैवल और साथ में यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं आपके लिए। ये है परी, जी हाँ बिना पंखों वाली परी आ गई, माधुरी 1-2-3 करती हुई आई है। आयशा आज से छुट्टी शुरू, तो वो बड़ी खुश लग रही है और जाहिर सी बात है उनका लंच टाइम होता है तो कुछ अभी खाने पीने के बाद करेगी ज़रूर एंड यू नो वी लव यू। चलो क्वीन यहाँ पर विदुला शर्मा सी गोविंद हमारे साथ हैं। हिमेश कैसे हो भाई, तरन का वेलकम करते हैं। वर्षा सुभाची, दिनेश गोपी साथ में, खुमन बोहरा हमारे साथ हैं। राधे राधे आपको एंड थैंक यू प्रिया, हमारी ओर से एक खतरनाक नमस्ते भी स्वीकार कीजिए। एंड साथ में यहाँ पर गाना होगा आपके लिए। हमारे साथ हैं दिलवंती सनातन, नमस्ते जी कैसे हैं। मेधा सुखोन कैसे हैं, सुरेखा जी स्वागत हैं, किरण चमन नमस्कार और साथ में यहाँ पर भिंता, नीरू रामसन, प्रतिमा गंगा और साथ में राजेश जूतन का हम स्वागत करते हैं। सुखविंदर पाल आपका भी वेलकम है और बोनापिच अगर आप लोग लंच ले रहे हैं, कविता उन्हें नमस्कार। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं उन तमाम दोस्तों के लिए जो अभी मूड में आ गई हैं और उनका मूड कुछ ऐसा है कि उन्होंने भी डिसाइड किया है कि देखो भाई आज तो फ्राइडे है, फ्राइडे में मस्ती होनी ज़रूरी है तो मस्ती करेंगे। हरी पोखरेल जी आपका भी हम स्वागत करते हैं, नमस्कार। एंड साथ में यहाँ पर दीप्ति कैसी हो भाई, हाँ बिल्कुल सब आज रोजी रोजी या पिंगी पिंगी ही कर रहे हैं मुझे। चलो जी लंच टाइम है तो बोना पेची और साथ में अगर गाने की बात करें तो गाना आएगा आपके लिए

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: वेलकम स्वागत है आपका सुहाना सफर हमारे प्रोग्राम में। चलिए जी, प्रतिमा गंगा, अजरीन हुसैन बक्स और मिस्टर नुरेदीन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम, स्वागत है आपका। एंड साथ ही साथ यहाँ पर प्लीज आप लोग जब गाने की फरमाइश करें तो मेक श्योर कि आप लोग ऐसे गाने की फरमाइश ना करें जो मैं चला नहीं सकती। हम लोग नए गाने नहीं चलाते यहाँ पर, 90s के गाने नहीं चलते, सिर्फ 60s 80s 70s के गाने चलते हैं। चले जी दीप्ति जी, ये लगता है कि आप भी मूड में आ गई हैं। कहती हैं फ्राइडे है तो मस्ती वाले गाने तो चलेंगे चलेंगे। बिल्कुल यही गाना सुखविंदर पाल आपके नाम डेडिकेट करेंगे। और रोए मेरी अम्मा मुझे पैदा करके, रोए क्यों रोए। चलो जी, यहाँ पर गाना होगा आपके लिए लिटिल बेबी गर्ल आधिया, 7 months की है, और साथ में चेष्टा हर्ष के लिए भी। ऑलराइट, और यही गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए जो साथ दे रहे हमारे

0: जो लेडीज इस समय प्रोग्राम सुन रही है वो कहती है अब दर्द दिल कहाँ रहा, अब तो दर्द कमर, दर्द सर, दर्द हाथ पैर, हर जगह दर्द होता है, उम्र भी ढल चुकी है, लेकिन यादें कमाल की यादें हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। स्कॉटलैंड से सुरेखा और उनके पति आनंद के लिए अगला गाना।
1: RL Free Radio, Radio, Radio.
0: ये गाना हम दीप चंद जी आपके लिए डेडिकेट करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में आप हमारे साथ प्रोग्राम के साथ जुड़े

0: आती रहेंगी बहारें या जाती रहेंगी बहारें, हमारा भी कुछ ऐसा ही, हम आते जाते रहते हैं आप ही के प्रोग्राम में जो है सुहाना सफर।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए तो सुहाना सफर हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारा अगला गाना होगा ये भी जान लेते हैं कि वो गाना किसको हम नज़र करना चाहेंगे। बहुत सारे दोस्त हैं साथ दे रहे हैं और अभी के लिए तो इतना है कि हमारे जो दोस्त हैं वो टिकटॉक पे ज़्यादातर हमारे साथ होते हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरोज, थैंक यू सो मच सरोज। और अभी वो घर पर हैं एंड काम कर रही हैं, हमारे लाइव में जुड़ी हुई हैं और गाने एंजॉय कर रही हैं। और बाकी जितने भी दोस्त हैं उनको बता दो कि भाई हम आ गए हैं और आपके साथ साथ रहने वाले हैं। कब तक रहने वाले हैं भाई? आपके साथ साथ हम रहने वाले हैं 2 बजे तक। आ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं आए तो उनको बुलाना, अभी समय हो गया है बुलाने का। कहा था ना कि गाने हमारे कुछ ऐसे होंगे जिससे फ्राइडे वाला मूड जो है ना उसको हम अपने इस महफिल को लाइट अप कर लेंगे। और काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको 90s के गाने पसंद आते हैं, तो कभी कभी हम एक दो गाने चला भी देते हैं, डिपेंड करता है किस ज़माने का। इसमें गोविंदा नज़र आए थे, नीलम नज़र आई थी, काफ़ी सारे लोगों का ये फेवरेट गाना है, तो चलिए चलाते हैं।

भाई हमारे भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है, हम भी खुश हो जाते हैं जब टिकटॉक पे हमारे सारे दोस्त जो हैं लाइव को ज्वाइन कर जाते हैं।

0: सफर सुहाना सफर। चलिए अगला गाना सरोज के साथ हम सुबी मनोज के लिए। मनोज कहते हैं आज तो फ्राइडे, आज बहुत काम है लेकिन फिर भी मैं यहीं हूँ, सुन रहा हूँ, भले मैं लाइव को कमेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं इधर ही हूँ। थैंक यू सो मच और हमेशा की तरह सो लोबी। ओके थैंक यू सो मच। और इसी के साथ यहाँ पर मिली के लिए गाना होगा जिस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम सभी मिलकर यहाँ पर साहिल को भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके बिना तो प्रोग्राम अधूरा रहता है। आई होप ही इज़ गुड। एंड उनके बॉस अनिल वो भी बहुत ही अच्छे हैं, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहते हैं। तो चलिए पूरी टीम के लिए हो जाएगा ना।
1: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो।

0: जीने को तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसे जिंदगी।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए सुहाना सफर कार्यक्रम में अब जो नेक्स्ट हमारा गाना होगा वो हम चला रहे हैं, किसके लिए वैसे गाना होगा आपके लिए, माधुरी, साहिल, परी, दीप्ति, मिस्टर गुरु फ्रॉम पेरिस, उनकी पत्नी वीना गंगा दोस्त के लिए गाना मांग रहे हैं, सरीमा के लिए जुमा मुबारक आपको भी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू भाई, कितना प्यार दोगे, थैंक यू सो मच, ट्रैवल क्या कर रहे हो। चलो सुरेखा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, और जो लोग हमारे टिकटॉक के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे साथ रेडियो पर जुड़े हुए हैं, मैं जानती हूँ आप लोगों को पुराने गाने अच्छे लगते हैं और इसीलिए तो पुराने गीतों में एक गाना ये भी है।

चलिए गाना हमें लेके जा रहा है एक बजे के समाचारों की ओर, उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम जारी रखेंगे और इसी चलते यहाँ पर हम बबीता बुला की और ज्योति गोली का भी स्वागत करते हमारे प्रोग्राम में। मिलते हैं थोड़ी देर में समाचारों के बाद।

0: तो चलिए भी हम थोड़ी देर में बढ़ने जा रहे हैं एक बजे के समाचारों की ओर। हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको बता दें कि हमारे प्रोग्राम में हम पुराने गाने चलाते हैं, नए गीतों की अगर फरमाइश करनी है तो वो बाद में होगी। अभी के लिए फिलहाल चलिए हम समाचारों की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं कि देश विदेश की खबरों में क्या हो रहा है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: घड़ी मिलाते चलिए दिन के ठीक एक बचा है।

0: सुनते देश विदेश की खबरें आपसे आशीता नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतू शाश्वताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस में ग्रैंड थॉर्नटन ने अपने कारोबारी विस्तार के तहत नई पहचान और विस्तृत सेवाओं की घोषणा की है। इस संबंध में गुरुवार 23 जुलाई को पोर्ट लुइस स्थित लुला बोर्डोने होटल में आयोजित कार्यक्रम में समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी की नई रणनीति की जानकारी दी। पिछले 16 वर्षों से मॉरिशस में कार्यरत जीपीओ लिमिटेड अब ग्रैंड थॉर्नटन मॉरिशस लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। कंपनी के अनुसार ये बदलाव केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं बल्कि इसके साथ सेवाओं के दायरे का भी विस्तार किया गया है। अब कंपनी 4 प्रमुख क्षेत्रों ऑडिट परामर्श यानी कंसल्टिंग टैक्सेशन और आउटसोर्सिंग सेवाओं में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी का उद्देश्य मॉरिशस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना है। मॉरिशस के पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT मंत्री दीपक बालगोबीन आज सुबह लगभग 10:30 बजे पोर्ट लुइस के लाइन बैरक्स पहुंचे। उनके साथ वकील गावी रिगादू और सुदेश कालीचरण भी मौजूद थे। दीपक बालगोबीन से CCID कथित टेलीफोन जासूसी मामले में पूछताछ कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले की जाँच के सिलसिले में इससे पहले CCID की काउंटर टेररिज्म यूनिट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर लीलराम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने एक ऐसे निगरानी उपकरण के एक्सेस कोड उपलब्ध कराने से इनकार किया जिसका इस्तेमाल कथित रूप से टेलीफोन वार्तालापों को अवैध रूप से रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। इन रिकॉर्डिंग्स को मुस्ताश लिंक्स के नाम से सार्वजनिक किया गया था। स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित ओवियो हाइड्रो अरीना में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ खेलों का आधिकारिक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह का प्रमुख आकर्षण विभिन्न देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों की रंगारंग मार्च पोस्ट रही। 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इन खेलों में इस बार 74 देश और क्षेत्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 3,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिनमें मॉरिशस के करीब 40 खिलाड़ी भी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला भी

0: उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कैप फ्योरे पेनिनसुला को पूरी तरह खाली कराने के आदेश दिए हैं। इसके बाद सैकड़ों लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र को इसीलिए खाली कराया गया है क्योंकि जिरोदे क्षेत्र में कई दिनों से भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को सोमस क्षेत्र में शुरू हुई इस आग ने रात भर विकराल रूप बनाए रखा और अब तक लगभग 8,700 हेक्टेयर यानी करीब 21,500 एकड़ क्षेत्र इसके चपेट में आ चुका है। उधर स्पेन सरकार ने राजधानी मैड्रिड के निकट कई इलाकों में बेकाबू होती जंगल की आग को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में रात भर के दौरान किसी नई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। हालांकि मंगलवार को बोर्डो हवाई अड्डे के निकट आग बुझाने के अभियान के दौरान दो दमकल कर्मी की मौत हो गई थी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। लामारी ओकुले में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री धनराज बुलक जिन्हें दान के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले एमबीसी के पूर्व अधिकारी थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी नीता बुलक के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स के शमशान होम में ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। अवेन्यू दे पेरुश मोसलमान माए बुवालो में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्राकेन देवी जिन्हें पहलाद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे सुनील देवी के घर बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर के शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर
1: स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर। दिन के 1:11 हो रहे हैं और यहाँ पर अभी खाने की ही बात हो रही है। वाह, क्या क्या खाने की बात चल रही है। कोई बर्गर की बात कर रहा है, कोई बिरयानी की बात कर रहा है, कोई चना पूरी की बात कर रहा है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को आइसक्रीम चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, सारे के सारे लोग हमारे टिकटॉक के साथ जुड़े हैं। आप चाहें तो आप भी यहाँ मज़ा ले सकते हो। चलिए जी, आकाश गौतम बविचरण यहाँ पर हमारे साथ है, उनके लिए गाना होगा। नीलिमा कहती है कि उनकी मॉम रेणुका 74 ईयर्स की हो जाएगी और मंडे किस्ट फैमिली पालमा से बहुत सारा प्यार भेज रही हैं। बबीता बुला की और वैदेही के लिए गाना होगा। वहीं पे जीतन दुलवा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। एंड यहाँ पर शिमला बिजादर आपका वेलकम करते हैं। एंड साथ में गाना होगा, यहाँ पर इस गाने की फरमाइश की गई थी। सबने बोला कि भाई चला दो चला दो चला दो, तो मैंने सरा कोई बात नहीं, चला देते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: वेल सुहाना सफर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विनीता के साथ रेडियो मनोरंजन पर, और यहाँ हमारे दोस्तों के साथ काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। आप चाहे तो हमारी इस लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो खूबसूरत गीतों के इस हसीन सफर में अभी जो अगला गाना होगा वो आपके लिए होगा। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे साथ बस ऐसे जुड़े रहो और हमारे गाने एंजॉय करते रहो। हमारा काम है आपको एंटरटेन करना और वही हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां भी रहो बस खुश रहो, दो दिन की जिंदगी है, मुड़ के पीछे देखेंगे तो काहे रह जाएगा, बस यादें, खूबसूरत यादें जो हमारे और आपके बीच, ये जो पल, ये जो लम्हा होता है ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता।

0: भाई ऐसा अगर कभी नहीं हुआ तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं, सैंडो हमारे साथ हैं। चलिए नेक्स्ट गाना आपके लिए डेडिकेट करते हैं। और मैंने बोला ना कि यहाँ पर हमारे साथ हैं कौन, बेबी जेन कहते हैं कि नेक्स्ट गाना उनके निफ्यू विहान के लिए, उनका बर्थडे है और 4 साल के हुए हैं आज। सभी आंटीज की तरफ से, सभी अंकल्स की तरफ से, पापा विकी और मम स्वीटी की तरफ से उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और चलिए इसी के साथ ये गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम संदेश दाऊचन के लिए, और ये होगा सुरेखा की तरफ से क्योंकि आज उनका है जन्मदिन।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

एक ऐसा गाना जो सबके दिल को छू जाता है, सब झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, झूमने लगते हैं। One of my favorites, आपको भी पसंद आएगा आई होप। फिल्म का नाम है कौन कैसे, किशोर दा की आवाज में

भाई आग बगैर साथ में है तो डरने की क्या बात है। चलिए यहाँ पर रूट के मत जाना, साथ मत छोड़ना, बस साथ रहना, ऐसे गुनगुनाते जाना। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका।

0: RM3 Radio.
1: कोई रूठा नहीं, सब साथ में हैं और यही है लता जी की आवाज में। पेश है अगला गाना आपके लिए, फिल्म है साउथ एंड।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर हमारे साथ और भी बहुत सारे दोस्त जुड़ गए हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पे अनवर। अनवर के लिए स्पेशली ये गाना हम डेडिकेट करते हैं क्योंकि अब हमारे जाने का भी टाइम हो गया है, ज़्यादा वक्त भी नहीं है। तो अनवर, दिस वन गोज स्पेशली फॉर यू। और साथ में यही गाना हम लक्ष्य रामबन के लिए डेडिकेट करते हैं जो पालमा से हैं, 18 साल के हुए हैं आज। सभी रामबन फैमिली के लिए, उनके पापा की तरफ से, उनके मम्मी की तरफ से, उनकी पूरी फैमिली और स्पेनल आपके लिए और गुलशन जी आपके नाम भी।

और ये गाना स्पेशली स्पेशली स्पेशली जाता है आशा जानू के लिए, जिन्होंने याद दिलाया भाई इस फिल्म का कोई गाना तो चला दो। सो आशा, ये गाना आपके लिए, आपकी मम्मी कुमारी और आपके पूरी फैमिली के नाम।

चलिए भाई इधर भी जल्दी बिखेरने का समय आ गया है और मैं आपको बता दूं अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 2 बजे के समाचारों की ओर. थैंक यू सो मच टू ऑल माय फ्रेंड जो साथ देते रहे हमारे गाने एंजॉय करते रहे. अब आपसे मुलाकात मंडे को होगी, भूलिएगा नहीं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी का स्वागत किया जाता है। दो वर्षों तक चले नवीनीकरण कार्य के बाद पोर्ट लुइस के जीतू अस्पताल का शवगृह दोबारा संचालित होने लगा है। इस अवसर पर देश के 8 सार्वजनिक शवगृहों की कार्य प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है। इन शवगृहों में पार्थिव शरीरों के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न अस्पतालों के बीच उनके स्थानांतरण तथा लावारिस शवों के रख रखाव और अंतिम व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि ये सेवा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली आम लोगों की नज़रों से प्रायः दूर रहती है। मॉरिशस में ग्रैंड थॉर्नटन ने अपने कारोबारी विस्तार के तहत नई पहचान और विस्तृत सेवाओं की घोषणा की है। इस संबंध में गुरुवार 23 जुलाई को पोर्ट लुइस के लाबुदने होटल में आयोजित कार्यक्रम में समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी की नई रणनीति की जानकारी दी। पिछले 16 वर्षों से मॉरिशस में कार्यरत जीपीयू लिमिटेड अब ग्रैंड थॉर्नटन मॉरिशस लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। कंपनी के अनुसार ये बदलाव केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ सेवाओं के दायरे का भी विस्तार किया गया है। अब कंपनी 4 प्रमुख क्षेत्रों ऑडिट, परामर्श यानी कंसल्टिंग, टैक्सेशन और आउटसोर्सिंग सेवाओं में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी का उद्देश्य मॉरिशस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना है। मॉरिशस के पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री यानी आईसीटी मंत्री दीपक वाल गुबीन आज सुबह लगभग 10:30 बजे पोर्ट लुइस के लाइन बारैक्स पहुंचे। उनके साथ वकील रवि रिगादू और सुदेश कालीचरण भी मौजूद थे। दीपक बालगोबीन से सीसीआईडी कथित टेलीफोन जासूसी मामले में पूछताछ कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले की जांच के सिलसिले में इससे पहले सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर लीला मदियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने एक ऐसे निगरानी उपकरण के एक्सेस कोड उपलब्ध कराने से इनकार किया जिसका इस्तेमाल कथित रूप से टेलीफोन वार्तालापों को अवैध रूप से रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। इन रिकॉर्डिंग्स को मुस्ताश लीक्स के नाम से सार्वजनिक किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के मैनचेस्टर में स्थापित नए नंबर 10 नोफ कार्यालय में आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। डाउनिंग स्ट्रीट की ये नई शाखा प्रधानमंत्री की उस पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य व्हाइट हॉल और वेस्टमिंस्टर से प्रशासनिक तथा नीतिगत अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर देश के विभिन्न क्षेत्रों को अधिक अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति देता है। मंत्री लूसी पावल और लुइस हेग भी नियमित रूप से इस नए कार्यालय से कार्य करेंगी। अगले वर्ष के अंत तक यहां लगभग 300 सिविल

0: सेवकों की तैनाती किए जाने की योजना है। आज मैनचेस्टर में एंडी बर्नम राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मंत्रिमंडलीय समिति का गठन वर्ष 2008 में पूरे ब्रिटेन के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया था। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। सात्रे बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। मॉस्को रोड रोजबेल में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्मावती भरत पैदाश्रम रामजावन और जिन्हें इंद्रावती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे ससिराज भरत के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारिजानी रोजबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमरो एट 11 AM। लामारे उकुले में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्रीधनराज बुलक जिन्हें दान के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो MBC के पूर्व अधिकारी थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती नीता बुलक के घर उकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम आपका जाना पहचाना है, गीत नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, हमारा ध्येय ये होता है कि आपको गीत नृत्य हमारी संस्कृति से कैसे जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कारों से कैसे जुड़ा हुआ है, परंपराओं में कैसे ये छिपा हुआ है, और हमारी जो धरोहर है हमारे देश की गीत गवाई, उसमें भी हमारे देश की महिलाएं जो हैं अपनी संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में एक अतिथि आई हैं जो हैं स्मिता लच्छन अपिया जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और उनकी जो गीतों की यात्रा रही, उन्होंने एक भोजपुरी क्वीन जो कि 8 गीतों के साथ उनकी एल्बम है वो भी रही, जो वर्ष में कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें वो 5वें नंबर पर भी आई, पर साथ ही साथ उन्होंने गीतों की यात्रा जो कहीं शादी में कहीं संस्कारों में जो भी गीत गवाई में होते हैं उनमें जुड़ते हुए धीरे धीरे ये जाना, ये पहचाना कि गीत के लिए शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत आवश्यक है। तो हम आज उनसे बातचीत में आपको ये जानकारी देंगे कि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीत हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में जुड़ता है, पर उसकी शिक्षा लेना भी कितना आवश्यक है। एक बार फिर स्वागत करती हूँ स्मिता जी आपका, बहुत बहुत प्रणाम करते हुए हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमारा कार्यक्रम है गीत नृत्य और परंपरा, तो संगीत आपके लिए क्या है?
1: संगीत मेरे लिए केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगीत मन को शांति देता है, खुशी देता है और तनाव को भी कम करता है। यह हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में हमारा सहयोग देता है।
0: मतलब आपकी भावनाओं को कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए आप संगीत का सहारा लेती
1: जी।
0: पर साथ ही साथ जब हम बातचीत कर रहे थे आपसे तो मैंने जाना कि आध्यात्मिकता से भी जुड़ता है संगीत, तो आप उसको आध्यात्मिक पक्ष की ओर भी ले जाती हैं?
1: जी हाँ, संगीत और आध्यात्मिक का गहरा संबंध जो है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र का उच्चारण

0: मन को शांति भी देता है म्यूज़िक, और ईश्वर की के प्रति श्रद्धा भी बढ़ाता है, और संगीत आत्मा जैसे कि शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी देता है।
1: तो आपकी आत्मिक भोजन जो है वो संगीत से पहुंचता है आपकी आत्मा तक, और वे आपको
0: परमात्मा से जुड़ने की रास्ते बनाते हैं,
1: मार्गदर्शन भी देता है। पर हमने जाना कि आपने एल्बम भी बना ली, पर आपने गुरुजी रमेश संतोखी जी से और मोहरलाल चमन जी से शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया या उनसे शिक्षा ग्रहण की, वो विचार आपको कैसे आया?
0: जब पहले शुरुआत में मैंने म्यूज़िक को अपना जैसे कि एक कैरियर बनाने की सोची, तो अपने आप को चैलेंज करते हुए, तो संगीत में तो हमें जैसे कि सीखना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने गुरुजी का,
1: आपने गीत गवाई की टोली को छोड़ के शास्त्रीय संगीत को क्यों अपनाया?
0: जी हम मेरी शुरुआत तो कीर्तन और भजनों में हुई थी, साईं कीर्तन, तो वहीं से 3 महीने ऐसे गाने गाते हुए आवाज़ भी अच्छी थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी फील्ड में आगे बढ़ूं। तो मैंने गुरुजी रमेश जी संतोखी जी जो पिछत्र अफ्रीके हैं, और मोहरलाल चमन जी जो त्रियोले के हैं, तो उनसे शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा।
1: कितना समय लगा आपको अपने आप में उसमें ढालने के लिए?
0: जैसे कि ये तो
1: क्योंकि बॉलीवुड के गाने, हिंदी सिनेमा के गाने गाना बहुत आसान है, सुना गा लिया, पर शास्त्रीय संगीत एक सुर में गाना, उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है,
0: अध्ययन की जरूरत होती है ना,
1: अभ्यास की आवश्यकता होती
0: जी,
1: है
0: बिल्कुल।
1: तो आपने कैसे अभ्यास किया? जब मैं पाती हूँ आप विवाहित भी हैं, आपके 4 बच्चे भी हैं, तो इसमें से आप समय निकालकर शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं या सीख चुकी हैं, तो उसके लिए भी समय निकाला कैसे?
0: अपने आप को चैलेंज करते हुए, क्योंकि अभी के जो हम जो घर में स्त्रियां होती हैं वो अपने आप को ऐसे अकेला पाती हैं कभी, तो कुछ वो अपने आप के लिए कुछ करना चाहिए उनको, और यही बात सोचते हुए मैंने भी सोचा कि अपना एक खुद का एक आइडेंटिटी बनाऊँ, और संगीत तो मेरी रुचि ही थी, उसको मैं और ज़्यादा निखारने की कोशिश की हूँ, अभी आगे देखते हैं।
1: अभी भी आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं मोहरलाल जी से और संतोखी जी से?
0: नहीं, अभी तो वो सब अभी तो
1: रुक गया है,
0: क्योंकि अभी तो हम परफॉर्मेंस में आ गए हैं
1: जी,
0: अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कराओके करते हैं, ऑर्केस्ट्रा भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, तो गाना चलता रहता है हमारा, अभी तो परफॉर्मिंग में है।
1: आप जगह जगह शादियों में भी अपना सहयोग देती हैं, परफॉर्म करती हैं। चलिए, हमारी टीम जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है वे हैं भाई शिव, दीप शिखा जी, और प्रोडक्शन सीट पर बैठे हुए हैं रितेश जी। हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि वे आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। एक गीत के साथ कार्यक्रम को सजाते हैं, फिर बातचीत जारी रहेगी।

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत करते हैं जो अभी अभी जुड़े हैं कार्यक्रम से। तो बातचीत हो रही थी कि आपने संगीत के साथ साथ महत्वपूर्ण समझा कि शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी पानी चाहिए, पर अब मैं जानना चाहूँगी कि लोकगीत संगीत का मानव जीवन, क्योंकि लोकगीत जो है सीखना नहीं पड़ता है, वो हमारे परिवार में, हमारी समाज में लोकगीत रचे बसे हुए हैं, पर उनका जो प्रभाव है मानव जीवन पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
2: लोकगीत हमारे रीति रिवाजी, त्यौहार, विवाह, जन्म और मृत्यु से वहाँ तक चलता है
1: जी।
2: जब नई पीढ़ी इन गीतों को सीखती और गाती हैं, तब हमारी संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहती हैं। इसीलिए लोकगीत परंपराओं के संरक्षण का महत्वपूर्ण महत्व है।
1: पर लोकगीतों में हम अपने समाज में जो भी बीत रहा है उसको भी तो पाते हैं, कि जैसे कई गीत हैं जो हल्दी विधि है, उसमें कटोरी में हल्दी डाली जाती है, माटी कोड़ाई होती है और उसके बाद घर लीपा जाता है, आवाहन किया जाता है हमारे भगवान, हमारे अवतारों का आवाहन करते हैं, महादेव का आवाहन करते हैं, हम श्री राम का, और दूल्हे को भी हम मानते हैं कि श्री राम आ रहे हैं या भगवान शिव पधार रहे हैं दूल्हे के सम्मान में, ऐसे लोकगीत गाए जाते हैं। और जब हम वधू के लिए सोचते हैं तो सीता माता का सोचते हैं या शिव के साथ पार्वती जैसे सोचते हैं, तो इसी प्रकार विष्णु के साथ सरस्वती माता का सोचते हैं।

0: आवाहन किया जाता है, उसके बाद जो गीत गाए जाते हैं वो भोजपुरी में, जैसे कि जलसा मना रहे हैं, शादी में जलसा होता है, गमट होता है, पुरुष लोगों के लिए गमट है, महिलाओं के लिए गीत गवाई है। कभी आपने सोचा कि गीत गवाई के इतने स्कूल खुल चुके हैं, आपको भी शिक्षा लेनी चाहिए, या कि केवल आपका झुकाव रहा शास्त्रीय संगीत की ओर?
1: नहीं, हमें हमें हमें अपने संस्कृति से जुड़ी रहनी चाहिए, इसीलिए हमें ये सब सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए।
0: तो सीखना तो चाहिए, पर उसका किस प्रकार हम समझ सकते हैं, क्योंकि पहले तो कंठस्थ थे, सब याद कर लेते थे, श्रुति का वो था कि हम सुनते थे, उसको समझते थे और कंठस्थ कर लेते थे, पर आज तो कराओके है, मोबाइल का ज़माना है, आज तो रिकॉर्ड किए जाते हैं, पब्लिश भी हो रही हैं पुस्तकें जिसमें बहुत सारे गीत हैं। तो आप क्या सोचती हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उन तक ये पहुंचाने के लिए केवल संगीत को गा लेना काफ़ी है, या के और माध्यम भी उसमें जुड़ने चाहिए हमारे संगीत को, हमारे नृत्य को, हमारी कलाओं को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए?
1: अभी जैसे कि हमारे नौजवान ऐसे ड्रग्स में हैं या कुछ ऐसी आदतें में हैं जो उनको ये सब बहुत दूर तक नहीं ले जाएंगे, मगर संगीत में वो अपने आप को जैसे कि वो सीख सकते हैं, तो उनको
0: अपने आप चरित्र निर्माण भी होता है और एक मार्गदर्शन पाता है संगीत से,
1: व्यक्तित्व का विकास भी होता है ना, पर्सनालिटी
0: जी,
1: और मनोरंजन भी होता है, एक टाइम पास के लिए भी होता है गाने।
0: मनोरंजन क्यों जीवन में आवश्यक है?
1: मनोरंजन जैसे कि ये आदमी को खुशी देता है ना
0: जी,
1: और स्ट्रेस से दूर रखता है, दुखों से दूर रखता है।
0: एक तो संगीत एक थेरेपी भी है
1: जी, बिल्कुल।
0: जब आप मनोरंजन की बात कर रही हैं तो हम उसे एक थेरेपी भी मान सकते हैं कि अपने आपाधापी वाले जीवन से हट के वे आपको मनोरंजन से जोड़ता है, और एक थेरेपी है कि आप संगीत सुन रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो संगीत सुन रहे हैं। पर आपके लिए संगीत क्या है? मैं दोबारा से ये प्रश्न पे आती हूँ, आपने शास्त्रीय संगीत भी सीखा, अपने परिवार को भी संजोया और इसे एक करियर मान के चल रही हैं आप, इसका प्रभाव आप पर इतना ज़्यादा है, ऐसा क्यों?
1: क्योंकि मैं इससे मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, गाने गाती हूँ, घर भी संभालती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ, और मेरा एक सोशल लाइफ भी है। पब्लिक
0: सोशल लाइफ क्यों आवश्यक है आपके लिए?
1: क्योंकि घर पे कितना रहे एक इंसान, और हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट में भी देखना होता है ना कि हमें नारी शक्ति है, और हम घर पे बस बैठ के बर्तन मांझ रहे हैं या ऐसा वैसा, तो उतना उस स्तर तक मैं तो नहीं रह सकती। मुझे ज़िंदगी में गाने गाने हैं क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी है और अच्छा भी कर रही हूँ, लोग मुझे
0: सराहते हैं,
1: हाँ, प्रोत्साहित भी करते हैं, और मेरी एक अलग पहचान भी बन चुकी है, अभी बहुत लोग भी जानने लगे हैं मुझे, नहीं तो ऐसे घर में कौन पहचानता है आपको।
0: तो अब हम श्रोताओं के लिए सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़, कोई गीत जो आपने अपने क्लिप में, जो आपने अपनी एल्बम तैयार की है, उसमें से कोई गीत आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकती हैं?
1: एक छोटा सा
0: अवश्य,
1: वो भोजपुरी में था जो मैंने
0: जी भोजपुरी, यहाँ हम सब श्रोता जानते हैं कि भोजपुरी ही हमारे देश की पहचान है, भाषा की, और हमें हिचकना नहीं चाहिए, भोजपुरी हमारी पहचान है, तो भोजपुरी में आप अपना गीत सुना सकती हैं।
1: तो मेरे एल्बम भोजपुरी क्वीन का पहला गाना था एगो छोकरा हमार दिलवा में, तो वहीं सुनाती हूँ दोहराए।
0: अवश्य, स्वागत है।
1: एगो छोकरा हमार दिलवा में घर बनैले बा, एगो छोकरा हमार

0: ऐसा कुछ. थैंक यू.
1: और जब हिंदी का कोई गीत हो तो आप वो भी हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकती हैं. तो

0: जो आप शादी में आजकल बहुत, जैसे कोई कहता है कि आप ये वाला गीत हमें सुनाइए, तो कौन सा गीत है प्रचलित आजकल जो शादियों का मौसम चल रहा है, तो प्रचलित गीत कौन सा है जो किस, जैसे रंबा राम तोहल जी का नाम बहुत चर्चित है, जुबेरा लोटो लेके जाए, उनका गीत हर तरफ मांग होती है उस गीत की, शादी में, गीत गवाई में, या हल्दी विधि के बाद जो संगीत होता है उसमें उनका ये बहुत चर्चित गीत रहता है,
1: बहुत योगदान है,
0: बहुत लोग उस गीत का आनंद उठाते हैं। आप कौन सा गीत आजकल पाती हैं कि हिंदी का ये वाला गीत बहुत चर्चित है और इसकी मांग लोग करते हैं?
1: तो अभी अभी अभी स्मिता भी ट्रेंड कर रही है
0: जी,
1: तो अभी हिंदी में जो अभी गाना अभी जो ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं तो वो सुनाती हूँ आपको, जो
0: अवश्य,
1: जो मेरा भी अभी अभी मेरा भी फेवरेट है
0: जी।
1: और सभी गानों सभी संगीत कार्यक्रम में मैं ये सब ये गाने प्रपोज गाती भी हूँ।
0: अवश्य,
1: ये सयारा का गाना है।

0: तो ऐसा कुछ है. थैंक यू.
1: आजकल ये अभी ट्रेंड में चर्चित गीत है
0: जी.
1: पर शास्त्रीय संगीत का अनुभव आपने सीखा, उसका कुछ अनुभव मैं जानना चाहूँगी हमारे श्रोताओं के लिए कि शास्त्रीय संगीत हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है. क्योंकि शास्त्रीय संगीत बिल्कुल ही हम अनजान हैं जो कि बाथरूम सिंगर्स हैं, जो कि बहुत थोड़ा सा संगीत से जुड़े हुए हैं या रेडियो तक ही सीमित है. रेडियो सुनते हैं, चर्चित गीतों को सुनते हैं, पर शास्त्रीय संगीत एक अलग है जिसमें सुर ताल लय राग सब आना चाहिए और उसका नियम अनुसार आना चाहिए. क्यों आवश्यक, क्यों पाती हैं कि शास्त्रीय संगीत सीखना आवश्यक था आपके लिए?
0: जी, शास्त्रीय संगीत ये तो जैसे कि ये सब सीखने के लिए एडवांस लेवल का है शास्त्रीय संगीत, तो इसके लिए गुरुओं से शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इसमें सुर ताल लगते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए. तो एक गुरु से ज़्यादा कौन आपको सिखाए. तो शास्त्रीय संगीत सुनने से मन को तो शांति मिलती है और आनंद भी मिलता है. शुरुआत में इसे समझने में थोड़ा कठिन भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो सुंदरता और गहराई और अनुभव होते हैं और धैर्य और अनुशासन और एकाग्रता भी सिखाता है.
1: तो आपको फोकस करना भी सिखाता है.
0: जी बिल्कुल
1: जी, बहुत सुंदर आपने अपना विचार दिया. चलिए एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे सजाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी.

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: श्रोताओं, बातचीत हो रही है स्मिता जी के साथ और संगीत और नृत्य की बात करें तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारी धार्मिक कार्यों से लेकर विवाह में जो आयोजन होते हैं उनमें तक, सभी संस्कारों में भी गीत का बहुत प्रभाव होता है और गीत के साथ साथ नृत्य का भी एक अनुपम सुंदर प्रभाव और कार्यक्रमों में सुंदरता आती है। पर हमारे जो संगीत और नृत्य हमारी परंपराओं को कैसे संजोता है, रिश्ते को कैसे एक दूजे में समाता है गीत और नृत्य। स्मिता जी,
2: संगीत और नृत्य हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। हर त्योहार, विवाह, धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक समारोह में इनका विशेष स्थान होता है ना
1: जी।
2: ये हमारी पहचान और विरासत का जो जीवित रखते हैं,
1: विरासत को जो जीवित रखते हैं। पर हमारे जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो थाली बजती है, तो वहीं पर जो दाई है, अब तो अस्पतालों में होता है, आधुनिक जीवन में मेरे ख्याल से दाई नहीं आती है, घरों में डिलीवरी ही नहीं होती है, पर जब भी बच्चे का जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है और जब भी विवाह का होता है तो हम कहते हैं लड्डू बांटे जाएंगे। तो ये हमारे भोजन के साथ भी जुड़

जुड़ता है, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति के साथ भी जुड़ता है। आज हमारे देश में दुर्गा पूजा होती है और उसमें डांडिया भी खेला जाता है। दुर्गा पूजा में बहुत सारे भजनों का आयोजन होता है। पूरी पूरी रात महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं 9 दिन के लिए। जैसे पूरे देश में एक नृत्य और गीत का माहौल बना होता है, तो हमारी परंपराओं को संजोने का

0: तक ये पहुंच पाए, क्योंकि अगर हम इस सब को छोड़ देंगे तो हम कट जाएंगे। आपका क्या कहना है?
1: जी बिल्कुल, संस्कृति हमें सभी बच्चे को ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए, म्यूज़िक और संगीत से जुड़ना चाहिए सभी को, क्योंकि हम आपको क्या बताएं कि अभी के जो बच्चे ड्रग्स में हैं ये हैं, तो ये सब रास्ते छोड़ छाड़ के ये सब हम म्यूज़िक सीखें तो बेहतर होगा।
0: संगीत से जुड़ना ज़्यादा बेहतर मानती हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: जब आपने मोहनलाल जी के साथ भी शिक्षा शास्त्रीय संगीत की पाई, संतोखी जी के साथ भी शिक्षा ग्रहण की, तो आपने क्या पाया कि वो बहुत मुश्किल है, या कि आपको एक अनुभव मिला जो आप गाती थी वो बहुत सीमित था, अब आपने उसको एलैबोरेटेड पाया और अच्छे से अपने सुर ताल लय को जोड़ पाती हैं?
1: जी, म्यूज़िक सीखना गुरुओं के साथ तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि म्यूज़िक शास्त्रीय संगीत ये सब बेसिक जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुर ताल नहीं होंगे तो एक गाना वो ऐसे नहीं गा पाएंगे, जैसे वो अलग हो जाता है, सुर ताल के बिना एक गाना भद्दा लगता है। और सुर ताल के साथ आप गाएंगे, एक भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक तो भावना से जुड़ा है। अपनी जो आप हम जैसे लोगों से हम बात करते हैं, भावना भी शेयर करते हैं, फीलिंग्स भी तो होता है ना, तो गीत
0: के माध्यम से वो
1: पास ऑन होता है,
0: संवेदनशीलता पास ऑन होती है, पहुंचती है श्रोताओं तक या दर्शकों तक।
1: जी,
0: तो आप तकरीबन एक महीने में कितनी बार अभ्यास करती हैं, क्योंकि अब आपके चार बच्चे भी हैं, अभ्यास का समय आप निकाल पाती हैं, और कितनी बार अभ्यास करती हैं?
1: दिन में एक बार तो अभ्यास होती ही है, क्योंकि हम तो गाते रहते हैं, काम भी होता रहता है, गाना भी गाते रहते हैं, अभ्यास होते रहते हैं। एक बार ही गुरुजी ने सिखा दिया तो दिमाग में रह जाते हैं, तो उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं, काम भी होता है, बच्चों को भी
0: आपको लगता है कि अभ्यास आवश्यक है?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं होगा तो आप वो सुर ताल में नहीं पकड़ पाएंगे, भूल जाएंगे, गला भी बैठ जाता है, तो वे एक ट्रेनिंग होती है, गले की रियाज भी होती है,
0: वो रियाज करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल।
0: तो महीने में आप 4-5 कार्यक्रमों में भी जाती हैं, पर समय निकालती हैं अभ्यास करने के लिए भी घर पर, तो सब बैलेंस कर पाती हैं?
1: जी बिल्कुल, बैलेंस हो जाता है
0: घर परिवार और कार्यक्रमों में जाना।
1: जी बिल्कुल, एक समय होता है कि जब हम घर परिवार, काम, खाना बनाना, काम करना, घर के सारे क्रोज करना, और एक समय भी आता है जो अपने लिए निकालना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लिए काम है, संगीत मेरे लिए काम है, इससे मेरी कमाई भी होती है अच्छी खासी। और संडे, सैटरडेज, मंडेज, ऐसे मैं जो शादियों में गाना या ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना, लाइव म्यूज़िक करना, कराओके में गाना, तो टाइम निकालना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जो जैसे कि बोले काम है, पैसे मिलते हैं इनके, तो अच्छे से भी रियाज ये हमारे मेरा काम है।
0: अभ्यास करना आवश्यक है।
1: जी बिल्कुल,
0: पर साथ ही साथ जीवन में संगीत और नृत्य हमारी परंपराओं से जुड़ता है, इसके बारे में आपका क्या विचार है?
1: बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम शादियों में जाएंगे तो वहाँ पर अकेले कोई गा रहा है तो कोई नाचे भी, तो इसीलिए ये संगीत और संगीत और डांस और म्यूज़िक, वोकल्स, ये सब साथ चलता है, कोई गाए तो कोई नाचे शादियों में,
0: और वादन
1: म्यूज़िक भी कनेक्टेड है, कोई गाए, म्यूज़िक बजाए और कोई डांस करे, और यही तो मनोरंजन है। दिस इज सेड टू बी मनोरंजन।
0: मनोरंजन के साथ साथ वो अध्यात्म से भी जोड़ता है।
1: जी बिल्कुल, कीर्तनों में है, भजनों में है, भगवान से जोड़ता है, खुशी देता है, मानसिक तनाव से दूर रखता है, और ख़ुद को आध्यात्मिक जैसे कि भगवान से जोड़ता है।
0: बहुत अच्छा विचार दिया। हम भाई शिव से कहेंगे एक सुंदर गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।

0: परंपरा।
1: आज गीत संगीत पर बात हो रही है स्मिता जी के साथ, जो कि बचपन में हिंदी पढ़ती थी। उनके पिता एक हिंदी टीचर थे, गुरुजी थे, वे उनसे हिंदी सीखती थी और साथ ही साथ हिंदी पढ़ाती भी थी बैठकाओं में। तो ये भी उनका एक अतिरिक्त कार्य था कि खुद पढ़ना अपने पिता से, फिर बैठकाओं में अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना। हिंदी के साथ साथ उन्होंने भोजपुरी में संगीत शिक्षा भी ग्रहण की, उसके बाद शास्त्रीय संगीत।

0: भी सीखा और आज वे नवीन उपकरणों के साथ भी कराओके लेकर म्यूज़िक एल्बम्स भी तैयार कर चुकी हैं। पर हमारी संस्कृति, हमारी गीत गवाई जो हमारी धरोहर है, उसमें भी आप जुड़ी हुई हैं, गीत गवाई में भी भाग लेती हैं और भजन मंडली के साथ भी गीत गाती हैं, कीर्तन करती हैं, तो कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक अंश भी जोड़ती हैं अपने गीत संगीत में। इसके अलावा आपका कहना है कि मेरे को उससे बहुत अच्छा लगता है, मनोरंजन के साथ साथ एक आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करती हैं। बताएं हमें, श्रोताओं को थोड़ा सा बताएं कि अध्यात्म से जुड़ने के लिए आप भजनों को संगीत से जोड़कर, कुछ होते हैं जो मंत्र मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र भी गए मंत्र हैं जो गाए जाते हैं, पर भजन भी एक अलग आनंद देते हैं जब उनको मन से गाया जाता है। एक भजन आपसे सुनकर हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में।
1: तो मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ
0: जी,
1: और कृष्ण भगवान की भी
0: जी।
1: तो कृष्ण भगवान के लिए गाना हो जाए, भजन हो जाए।

0: तो ऐसे ऐसे भजनों के साथ आप भजन मंडली में भी जाती हैं और दुर्गा पूजा में भी जाती हैं?
1: जी, जागरण में जाते हैं, दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, भजन कीर्तन, जैसे अभी गणेश चतुर्थी भी आते हैं तो उनमें, उन सब में भी पार्टिसिपेट करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, गाना के गाना हो जाते हैं और मन की शांति भी हो जाती है और भक्ति भी हो जाती है।
0: जब आप भजन का आनंद ले रही हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने में संतुष्ट हो पाती हैं?
1: जी बिल्कुल, संतुष्ट हो पाते हैं क्योंकि ये हमारी तरफ से एक, जैसे कि भगवान को हम उसको डेडिकेट कर रहे हैं, हमारी भक्ति, हमारी भावना हाँ, और मन को शांति मिलती है, खुशी भी मिलती है और संतुष्टि भी मिलती है।
0: पर एक अलग आनंद होता है जब हम भजन कीर्तन करते हैं, एक अलग आनंद का अनुभव होता है। साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत जब आपने सीखा हो तो भजन गाने में और ज़्यादा सहायक होता होगा।
1: जी बिल्कुल, सुर ताल अच्छे से बैठे, अच्छे से गाएं, भावनाएं व्यक्त अच्छे से हो तो,
0: और श्रोताओं तक पहुंच पाए।
1: हाँ,
0: क्योंकि वो मन से तक पहुंचने के लिए फिर वो प्रभु तक पहुंचेगा ना।
1: जी बिल्कुल,
0: पहले श्रोताओं तक पहुंचता है फिर प्रभु तक, और प्रभु का आनंद तो अलग ही है।
1: जी
0: बहुत सुंदर। पर आज की युवा पीढ़ी के लिए आप संगीत, नृत्य और ऐसी परंपराओं को, संस्कृति से जोड़ते हुए क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को?
1: मॉरिशस के युवकों से कहना चाहूँगी कि वे अपनी भाषा, संस्कृति और संगीत और परंपराओं का सम्मान करें, आधुनिकता को अपनाएं लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें, कभी ना भूलें। संगीत और कला को सीखें क्योंकि ये हमारी व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज को जोड़ने
0: का भी है।
1: जी बिल्कुल
0: जी,
1: और समाज से जुड़ने का कार्य भी करता है,
0: समाज से जोड़ने का भी कार्य करता है। तो समाज में जुड़ना क्यों आवश्यक है?
1: तो समाज में रहते हुए आप समाज से अलग थोड़ी ना जा सकते हैं, उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए। और ये एक माध्यम है म्यूज़िक, संगीत और जो जैसे कि मनोरंजन भी होता है ना, तो खुशियाँ

0: भी लाता है ज़िंदगी में और एकता बनाए रखता है और खुशियाँ भी देता है।
1: तो समाज में एकता की भी आवश्यकता पाती हैं आप।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम एकजुट होकर रहते हैं तो हम सबका कल्याण इसी में है।
0: जी बिल्कुल
1: जी, बहुत सुंदर। एक गीत के साथ भाई शिव कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, फिर बातचीत जारी रहेगी।

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: श्रोताओं, संगीत सुव्यवस्थित ध्वनियों, स्वरों और ताल का एक ऐसा कलात्मक संयोजन है जो भावनाओं को व्यक्त करता है, साथ ही मन को आनंद प्रदान करता है। जो स्मिता जी ने हमें बताया, हमारी परंपरा में गायन, वादन और नृत्य के सम्मिलित रूप को संगीत कहा जाता है। ये एक सार्वभौमिक भाषा है जो संस्कृति, भावनाओं और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और ऐसी ही संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं जिसमें गीत, नृत्य और बहुत सी ऐसी स्वर हैं जो हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को संजोते हैं। चाहे वह हृदय की धड़कन हो, उसमें भी तो एक आवाज़ होती है, और वो रिदम अगर बिगड़ जाए तो मानव कहीं का नहीं रहता है, ऐसा हमारा मानना है। तो संगीत एक अलग ही अनुभव है हमारे जीवन का। स्मिता जी से बातचीत की हमने, श्रोताओं के लिए उन्होंने बताया कि जो आज की नव युवक हैं, वे भटक रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए संगीत, नृत्य जैसी कलाएं सीखनी आवश्यक हैं, ताकि वे अपने आप को सुसंस्कृत पाएं और अपनी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ पाएं। क्योंकि आज मानव भटक जल्दी से जा रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं। जब हमारे पूर्वज आए थे तो बहुत दुख में थे, हमारा जीवन बहुत कठिन था, पर आज हर बच्चे को हर चीज़ जैसे कि प्लाटो पर मिल रही है। पर आज का अनुभव जो हमें सिखा रहा है कि हमें अपनी जड़ों को संजोना बहुत आवश्यक है, हमारी परंपराओं को संजोना बहुत आवश्यक है। आज गीत, नृत्य और परंपरा में स्मिता जी से बात हुई, उन्होंने भी यही संदेश दिया। आज के लिए इतना ही, हमारी टीम को धन्यवाद देंगे जिसमें भाई शिव, दीपिका जी और प्रोडक्शन सीट पर रितेश जी हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। श्रोता, आप लोग जुड़े हमारे साथ, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। एक अन्य कार्यक्रम में गीत, नृत्य और परंपरा पर एक और चर्चा के साथ हम जुड़ेंगे। आज के लिए शुभ संध्या।
0: और परंपरा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दो वर्षों तक चले नवीनीकरण कार्य के बाद पोर्ट लुईस के जीतू अस्पताल का शवगृह दोबारा संचालित होने लगा है। इस अवसर पर देश के 8 सार्वजनिक शवगृहों की कार्य प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है। इन शवगृहों में पार्थिव शरीरों के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न अस्पतालों के बीच उनके स्थानांतरण तथा लावारिस शवों के रखरखाव और अंतिम व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि ये सेवा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली आम लोगों की नज़रों से प्रायः दूर रहती है। मॉरिशस के पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री आईसीटी मंत्री दीपक बालगोबिन आज सुबह लगभग 10:30 बजे पोर्ट लुईस लाइन बैराक्स पहुंचे। उनके साथ वकील गवीर गदू और सुदेश कालीचंद भी मौजूद थे। दीपक बालगोबिन ने सीसीआईडी कथित टेलीफोन जासूसी मामले में पूछताछ कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले की जांच के सिलसिले में इससे पहले सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर लीला हमदियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने एक ऐसे निगरानी उपकरण के एक्सेस कोड उपलब्ध कराने से इनकार किया जिसका इस्तेमाल कथित रूप से टेलीफोन वार्तालापों को अवैध रूप से रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। इन रिकॉर्डिंग्स को मुस्ताश लिंक्स के नाम से सार्वजनिक किया गया था। स्कॉटलैंड की ग्लासगो स्थित ओवियो हाइड्रो अरीना में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों की रंगारंग मार्च पास्ट रही। 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इन खेलों में इस बार 74 देश और इलाके भाग ले रही है। प्रतियोगिता में लगभग 3,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिनमें मॉरिशस के करीब 40 खिलाड़ी भी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिलिया भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका ने अपने 60 व्यापारिक साझेदार देशों पर नए शुल्क लागू कर दिए हैं। ये कदम अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद फिर से शुरू हुए व्यापारिक विवाद को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। नए शुल्कों के दायरे में ब्रिटेन, चीन और यूरोपीय संघ समेत कई देश शामिल हैं। इन देशों से आने वाले लगभग सभी सामानों पर 10 से 12% यानी 10 से 12.5% तक आयात शुल्क लगाया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि ये शुल्क इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार जबरन मजदूरी की समस्या से निपटने में पर्याप्त कदम नहीं उठा पाई है। हालांकि अमेरिकी व्यापार विशेषज्ञ ने कहा है कि ये कदम जबरन मजदूरी से संबंधित नहीं है बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप शुल्क लगाने के लिए एक कानूनी आधार तलाश रही है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपातकालीन शक्तियों के तहत वैश्विक स्तर पर लगाए गए कई शुल्क कानूनी रूप से लागू नहीं किए गए थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। RM3 Radio.

0: सभी श्रोता लोग की विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम जब भी इस कार्यक्रम के साथ आते हैं शुक्रवार के दिन, हम यहाँ पर कानून से जुड़े काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है, आपको पता ही है कि हर शुक्रवार को जब हम कानून के बारे में बात करते हैं तो हमारे साथ हमारे वकील कपिल देव रघुनंदन जी हमारे साथ होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए उनसे मिलते हैं और आज की चर्चा इस कार्यक्रम में जानते हैं कि आज का हमारा जो विषय है उस पर हम आज क्या चर्चा करने जा रहे हैं। तो वकील बाबू जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
0: कैसे वा समाचार?
1: भगवान की कृपा से चला था ठीक।
0: कार्यक्रम में स्वागत एक बार फिर से। आज के हमने के जो शीर्षक बा कि माँ बाप के ओकर लड़का पर कौन अधिकार,

0: एकर पर हमने चर्चा करब चाह तो हमने के जितना भी अभी श्रोता लोग हमने के कार्यक्रम में हमने के साथ देवत हुन जा वो लोग भी सोचे जा तो माँ बाप की गो लड़का में कौन हक है सब हक है लेकिन आज ये जो विषय लेकर आने जा एकर पर हमने विस्तार से बात करब चाह और हमने जानब जा ऑथोरिटी पैरेंटल कौन ची है
1: जैसे हमने बोलिया सा पैरेंटल ऑथोरिटी अंग्ले में ऑथोरिटी पैरेंटल फ्रांसीस ये हमने के कुछ सिविल मोशन ये गुवर्ने करेला जैसे हमेशा बोल ले ऐसा लिखल कानून है और हमने के कब मेम की लाकूर में आवेला मजिस्ट्रा हो वकील हो कुछ चीज हो यही को मजे अप्लीके करेला डिसीडे करेला तनेला हमने सब कोई हमेशा सोची ला सर माँ बाप होते हुए कि हमने के लड़का में हमने के सब हक बा नहीं बोले ला हमारी ये हमार लड़का है आले जोन कुछ खराब हम ओके चाहे ला सुने के
0: हाँ।
1: और ओके कुमाजे हम देखब ओके ओकर पोजीशन कैसे बा और देवो हमर देवो कौन सी है लड़कुआ में माँ बाप सोचे ला कब ये ऐसा हमार बात देवो हमार चीज करे के तो हमने सकब सब कुछ करे उ लड़कुआ से
0: हाँ।
1: अभी देखब सब कौन प्रॉब्लम होए ला
0: अच्छा
1: और कैसे हमने सोची ना सा हमने के सब बा हक उ लड़कुआ में हमने के देवो बा हमने के ड्यूटी बा हमने के लड़का में और ओब्लिगेशन बा कुछ करे के चाहे ला उ लड़कुआ में कब देख बा कानून ही बोले ला उ जोन हक बा हमने में उ सब ले लेवे ला लड़कुआ के कुमा जे हमने के हक नहीं रहेला
0: अच्छा।
1: सब आदमी बोले ला अरे ये तो हमार लड़का हमार हक बा उकर में कानून में बा बोलेला असम एगो दुआ एगो देवा है एगो माँ बाप के ओकर लड़का के ओकर अलीगढ़ जैसे हमने बोलिया सा और उ लड़कुआ के चाहला एगो लड़का जो मिनेर है जे ओकर तब ओकर माँ बाप ओकर दुआ बा उ तब तक ले मिनेर रही ओकर दुआ बा उ लड़कुआ में कैसे होल एगो मजे है लड़का एगो जिजुता हो गल सब जे मजे हो गल तो माँ बाप वही तक के उ लोग के दुआ नहीं बा उ लड़कुआ में इतना याद करे कि चला मजे हो जाए तो तू आ कर अपन मानियर माँ बापा द्वारा नहीं सकी कुमा जे जिकते करे कौन सी करे ओकरो न देवो बा बस कि अब तू तो बड़ा हो गई लिजुता तो कुमा जे माजे है तो माजे बोले लनसन उ एगो आदमी इंडिपेंडेंट है तो सब जे माँ बापा के अब ओकर के कुमा जे नीचे तू नहीं हो
0: हाँ लेकिन जब हमने बोली ना जो लड़का के जब जिजुता हो गल जब माजे हो गल 18 साल के बाद इंडिपेंडेंट सकी रहे लेकिन 18 साल के लड़का लोग तो अभी भी कॉलेज जाता लिखुल जाता माँ बाप की तो जिम्मेदारी रहेला लाइक वहाँ पर ना
1: हाँ मिसल में हमने उसे नहीं देखा था ऐसा ये खूब बोला था ठीक ठीक सौ को एक बार मिसल में यही हमने के कानून कब बोलेला तो एक आदमी माजे हो चला तो नहीं ओकर माँ बाप कब ओके जाता लिखुल सिपाह यूनिवर्सिटी तो ओकर में इन पर्सन जैसे हमने बोले सर ओकर दुआ बा आ रही नहीं उ पढ़ाई के ले कुर के जाई के ओकर दिवो करे के ओके मन होई तो सकी लइकवा के बोले बो अब हम तुके तुके कुमा जब भेजा था यूनिवर्सिटी या नहीं भेजा था तो लइकवा नहीं सकी कुछ करे हाँ अरे वो लड़का के बोझो हमारे एगो लड़का बा जिजुता बा कल हमारे यहाँ मुआइए नहीं बा हम बोले जाने वो बोलते जाने बा हमके मन बा यूनिवर्सिटी जाए के सिपा हमके मन बा अनंगलितर जाए के वकील करे के हम लिए करे बस कि हमी तो अच्छे से अपन जिजुता में कर दे ले रही एक बान लड़का बाई से तो जिजुता हो गल माजे हो गल पैसा बबुआ के नहीं बा तो हफिजे तो नहीं करी ओकर जो चीज कमुआ करे के चाहला मेम के ओकर इच्छा बा ओ लड़कुआ के ओके मन बा कुमा जा कुछ ना कुछ बने के पैसा नहीं बा अरे एगो दूसरा चीज हम कौते करते हैं अभी हम सीजियो में आवत हैं तमने के भाई जोन कौसो में हुआ बा एगो जोली चीज हमके बोले कौन चीज में बतिया बा हम बोले ओतो उते पैरेंटल तो हमके बोला तो ओतो उते पैरेंटल बोले खोजत हो कि एगो लड़का एगो मिने ओकर माँ बाप ओकर कुमा जे सब कुमा जे धोआ बा उ लड़कुआ में हम बोले अरे का बोले थो तो बोले मुझे थोड़ा एगो कहानी का कौन ते कल तुम कि वो जोली एगो लिग्जाम दिलक अरे वही लिग्जाम अभी हम यहाँ बतिया थे एगो बाप बा ओकर एगो बेटा बा
0: हाँ।
1: बेटा आर दोनों को मजा लड़का मिने बा है बेटुआ अरे बेटुआ को मजा बपुआ ओके कुछ बोलक
0: हाँ।
1: कैसे बोलक ओके कहा बोलत हुआ बेटुआ को मजे ओकर लाल सी बुझो सेजन होल बा सी

0: कैंसम आज की कैंसम के लड़का दे देखो नदी पच्चीस नियर बरिस से लौका था बपुआ के लगल बात बोले
1: लैकुआ मिनेबा अपन बाप के डोंटा था
0: हाँ अब ओके लगल बात बोले हाँ। तब बपुआ बोले ए ऐसे उसे उम्र से नहीं बची है हम तो तोर बाप है बोले तू कहाँ हमर बाप होवे बस बपुआ एक छटकन मरलक लैकुआ के बोले मरले हमके आतान कर अभी हम तुके बताइला का करे के चला मोबाइल लेलक टेलीफोन कर लक ला पुलिस के हाँ बोले ला पुलिस के ओकर बाप मारा था ला पुलिस साल ला पुलिस होके देखे बोला था यहाँ एगो हकमा जम के एगो कंप्लेंट मिलल है कि बोला था है एगो लैकुआ तोर बेटवा कि ओके मरल है ओके दू तीन थप्पर नहीं छा खून में निकले के तब
1: मरलक से
0: मरलक आसोल जैसे नहीं बोले सर जब हुआ तो मरलक ला पुलिस बोले चल लंकित लिप्स के साल लाकुर में पुशवीप कर लग
1: लैकुआ
0: हाँ लैकुआ सके नहीं ला पुलिस पुशवीप करी मैं लैकुआ तो थी मोह है लैकुआ के लाकुर में एक्सप्लिके करलक कि हाँ इका मर बापुआ मरलक हमके तो लाकू एगो लमान दे दिलक देख ल अपने लैका कौन तोहर देवो बा कौन चीज करे के अरे एगो दूसरा मजे एगो कहाँ जी कहाँ कौनते करी लग एगो है पति पत्नी शादी करलन सन पति पति कब शादी करलन सन तो एगो लैका होल अब एगो लैका होल बस कुमा जाए एगो दू बरिस होल पति पत्नी नहीं सकलन सन कुमा जे जिए 20 बरिस जिले रहलन सन संगे बस देखन सन तब पत्नी बोले जाने ले हम नहीं सकब अब से तुर से जिए जैसे तुर का तेर है ने होने बा हम जीवोश मांगब तो मांगलक जीवोश ओके कुमा जे है छोड़ दिलक मैं मऊआ लैकुआ लेके चल गल
1: हाँ
0: लैकुआ लेके चल गल उसके बोकर संगे रह के जाना ना आली ई कौवा में कैसे जीवोश मिलल लैकुआ जोन रहल अपन लैका रहल बपुआ मऊआ के दोनों के लैकुआ अपने
1: हाँ, अपन लैका हाँ,
0: लागत मिल गल मऊआ के मऊआ चल गल ओकर लैकुआ के लेके बपुआ के दिवा कभी अपन लैका के गले नहीं देखे जोन दिन से मजे से पारे खोल माँ बपुआ लैकुआ मजे चल गल मजे मऊआ संगे दू बरिस के
1: यानी कि हाँ जो बपुआ बा ओपन लैका के जब से लैकुआ गलबा नहीं दिखले बा
0: हाई का दू बरिस से कब कुमा जे जीवोश मिल गल चल गल उ कभी नहीं कुमा जे लैकुआ के गल देखे कुनो ले तेरे नहीं लेलक लैकुआ के कुनो मानिए फिनेंसिय एगो दे के
1: कुछ नहीं
0: पैसा ओकर लेजिकासियों के खाई पियाई के ओकर बीएनएट के कुछ नहीं कभी ओकर लैका के एगो कादो लाने या एगो लानी वे से या कुमा जो कोनो चीज के लोकाजों में कब आल न ओके जाके देखलक न रेंकोंत्रे करलक उ लैकुआ के
1: यानी कि उ लैकुआ कर खातिर एग्जिस्ट हुए नहीं रहल
0: हाँ और ओ कोनो उ लैकुआ तो औसन हो गल इमोशनल बा नहीं बा उ प्यारुआ भाव भव्य नहीं बा बपुए तो कभी ऐसन करलक अजी को के एलवाई हो गलो के भूला गल अभी पहुँचवे नहीं या ऐसन कावा में तो का होल जीज एगो जीज म देलक मऊआ अप्लाई करलक एगो एप्लीकेशन करलक जीज घई में ला कुछ सुप्रे में बोले हमके मन बा ऑटोरिटे पारंटल हमरे सिर्फ मिले के और उ मिशिवा के ओकर पति के जोन रहल जीवोशो के ओके नहीं कुछ मजा ओके नहीं कुमा जाई
1: यानी कि जितना भी फैसला लेके रही उ लैकुआ के उ सब उमा ली
0: हाँ मऊ ले उता पहले शुरू दे देलक हाँ। नहीं तो बपुआ ओ तो इते पारंटल मतलब पारंट हाँ, के होते हुए ओकर तो लैका है
1: हाँ।
0: जन्म से ओकरे लैका है उ लैकुआ के जोन ओकर धुआ बा ही भाई बपुआ के रहल से तो जदुन धुआ हुआ और ओकर ओब्लिगेशन हो लैकुआ में कानून निकाल देलक बोले आज से तू कुछ नहीं होवे उ है लैकुआ बगल बस की काहे कोनो ले तेरे नहीं
1: दिखैलक
0: हाँ तो देख लही पारंट है आको रीति पारंटल जोन रखल उ एक्सक्लूसिव देलक जीजवा मऊआ के
1: काहे कि जब जीवोस हुएला तो एगो माँ बाप लैकुआ कहूँ रही
0: हाँ।
1: आज मान ला उ पिता के संगे बा तो माँ के लैकुआ के मिले की ओके दुआ रहेला और जब लैकुआन माँ के संगे हुआन तो पिता के दुआ मिलेला जैसे कोंजे में वीकेंड
0: हाँ,
1: सब कुछ रहेला कहूँ जाए के रहला तू दूर जना के परेला सीए करे के ओतोहिते उधर पासपोर्ट परेला सीए करे के लेकिन जब अभी जैसे बोलला कि अब लैकुआ के नहीं दिखत हुआ नहीं मिलत हुआ कुछ नहीं करत हुआ तब ऑटोमेटिक माँ यहाँ पर जितना दुआ बा उ सब मामा की मिल गल अब लैकुआ के लेकुल जाए के घूमे के कुछ डिसीजन रही वो खाली ओकर मान ली
0: जरूर निकला कैसे शुरू करे सब कोई बोले माँ बाप के हक बा लैकुआ में अपन लैकुआ में कुछ करे के ओकर देवो एप्लीकेशन उ लैकुआ के ओकर

0: बात हुआ कभी नहीं देखले हुआ एगो घर में कबतिया लेन सन दोनों आदमी तो है एगो है सिबुस एगो बात बोलक है बपुआ है लैकुआ के मामा के बात ए सिर्फ तोर लैका नहीं है हमरो लैका है ये कभी सुन ले हुआ तो सिंह कब ओतोगीते एक नाम ओतोगीते पारंताल जबकि कम क्वा जिस आदमी बोले ना कौन ची है ओतोगीते पारंताल ये एगो मजल ओतोगीते है एगो माँ बाप दोनों ऑसम दोनों के संगे संगे ओकर देवो आर ओकर ओब्लिगेशन ओ लैकुआ के पाछे समझ ले ना अभी कैसे तू माँ जैसे बुझो है शादी कर ले हो तो हर है चार गो लैका बा चारों लैकुआ में हक तुहर बा उखरो बा है पति के मैं देख ल हिया ऐसन काम में होल जहाँ छीन ले लक हम बोलते ऊ दुआ हुआ जोन रहल ओ तो वीते पावा तलवा के लाकुर बस की बोले ये लैकुआ के तोर देवो तोर ओब्लिगेशन कौन जिक्र ले न कभी गईले न कोई ज्वाइन कर ले न कोनो लामू माँ बेहिया में मैं पूता पुस्तक में है ओकर ओतोगीते पारंताल आली अब हमने देखी रासा एगो ओतोगीते पारंताल एगो माँ बाप के ओकर लैका में कौन कौन चीज है
1: हाँ
0: पहला हमने देखी रासा ओ माँ बाप के चाहेला देखे के सिक्योरिते ओकर लैका के आर ओकर डेवलपमेंट में पहला ओके देखी कि हमर लैका अरे एगो एगो सिक्योरिटी में बा ओकर एजुकेशन के देखे हमेशा सब कोई नहीं माँ बाप तो बोले सर नहीं हमके चाहला हमर लैका के पढ़ाई की
1: सब माँ बाप पहला यही सोचेला कि ओकर लैका जोन बा सबसे पहले ओकर पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाए बाद में देखम सर
0: ई पहला चीज देखे लन सर ओकर एजुकेशन ओकर सिक्योरिटी अनमन के ऊ लैका कोरे बा न कुमा जे खुशी बा एगो प्रॉब्लम हो या एगो दंजे में हो नहीं सकता जिए तो ई हमने ओकर डेवलपमेंट करके ऊ लैकुआ के ई एगो माँ बाप के एगो दुआ है एगो माँ बाप एग्जैसे करे लनसन अपन दुआ लैतेरे लैकुआ के ओकर लैतेरे में नहीं कि कच कर बक मजब एगो लैतेरे कोट लही ओ लैकुआ के तक मजे कोरेक नहीं बना सब चीज करे के चाहला एगो माँ बाप के ओकर बेनिफिट के ओकर लैतेरे के ओकर लैकुआ के आलो काल दे बक मैं कुछ खर्चब खरीदब या कुछ बनेब तो लैकुआ के दिक्कत धो न कौन ची करे के चाहेला कि ऊ लैकुआ कुमा जे लिमन से जीही या ओकर देखभाल करब आलो तो ई हमने देखेला सबने के कानून में कुछ सिविलवा जो लिखल है बोलेला दोनों के हक था माँ बपुआ के देखे के ओकर लैका के ओके एना ओकर दुआ है अली काल तो जनबे करेला एगो मिनी कब है एगो लैका रही ओकर माँ बाप सिंह करेला ओकर खातिन ओकर माँ बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी
1: हाँ, ओकर लिखल रही ओकर पहुंचे के रही ओकर कुछो चीज रहला सब कुछ ओकर माँ बाप सिंह करेला
0: अली तो हियाँ देखेला एगो लैका कब लेजिटिम रही लेजिटिम मतलब है माँ बाप के अपन लैका आज जो अपन लैका के दिकलारे कर ले वंसन तो वो बोले रंसन बायोलॉजिकल कुमा जे वो लैकुआ ओकर है बस ओकर माँ से नहीं होल बार ओकर बाप तो बापू है तो हियाँ एगो लैका ए लेजिटिम है तो अब हमने देखी ना सा एगो है लैका कब नेचुरल है तो हियाँ देख बो मेम की वो मैडमुआ जियता एगो दूसर आदमी से मैं वो आदमी से शादी नहीं कर ले बा अभी तो दुनिया आजकल मॉडर्न बा आदमी तो मजा कब शादी भी नहीं करता तो दूसर संगे रहता तो जब वो लैकुआ ओके कुमा जे ओकर माँ से बुझो दिखलारी कर ले रहा बसी बपुआ बोले हमारे लैका नहीं बा हम नहीं मानते नहीं सब देख सब पितारानव सब पोगाम में अध्ययन सब कैसे होल जला तो हियाँ बोला था वो एगो लैका नेचुरल है बपुआ दिखलारे नहीं कर ले बा मऊआ दिखलारे कर ले बा बपुआ नहीं रिकोनेट करता कि वो कर लैका है मैं मऊआ गल बा लेता सिविल में ओकर लाग देने सांस में बा वो लैकुआ ओकर नाम में अकेले ओकर नाम में तेरे ही हमने बोला सर ई एगो लैका जो नेचुरल बा जब वो लैकुआ जो नेचुरल बा जो अपने मऊए दिखलारी कर ले बा और बपुआ नहीं है कर ले बा तो ऑटोरिटी पारंटल जो ओकर हक बा बपुआ में नहीं बा बस इधर ओकर लैका है नहीं है ना वो तो दिखलारे ही नहीं कर ले बा ओकर लैका
1: ओकर नाम तो नहीं बा ना
0: ओकर लैका जोली ओकर त नमोए नहीं बा उमे तो कैसे सकी बोले ई हमर लैका है तो ऊ नहीं सकी कहू जाय ओके ओकर लाग देने सांस में देखियन से ओकर नाम
1: खाली माँ के नाम बा
0: खाली माँ के नाम तक बोले से नहीं तू तो तोर बाप तो के दिखलारे नहीं कर ले बा तू नहीं सकबे कुछ करे तोर बपुआ तोर खड़ा रे नहीं कुछ नहीं हाँ दिखलारे कर ले बा वो हकुआ वो डिबुआ हुआ ओब्लिगेशन हुआ मऊआ के है देखा वो तो

0: parental que c'est rien et vous laïka légitime ba à régulaïka hogal ba naturel d'une ou qui déclaré que le ba ou qui ce qui comme je sais pas les
1: décisions les responsable parties parties à tuer ou que sub just not which race sub
0: hein te hiya même qui duno sangé rahat wansan sif mawa que des voix ba ou que hak ba ou laïko ami te hiya autorité parentale n'aï ba duno et que go ba mawa ba बफुआ नहीं बा मेम की वो मानता ओकर बाप हो मेम की कभी हाँ बायोलॉजिकल ही ओकर बपुए हो डिक्लेयर नहीं कर ले बा ना बफुआ
1: से होल बाकी नहीं डिक्लेयर कर ले बा
0: हाँ नहीं डिक्लेयर कर ले बा जिसने बोला बाप ने बोला लाख देने सांस वाम में तो ओकर नाम नहीं बा एक बार बाप नहीं बोले हम नहीं एक्सेप्ट ही अमर लड़का हो मेम की तो उसे शादी कर ले हाँ बस का करे कब गलता सिविल करे तो हुआ खाली मऊआ के नमुआ बा वो डिक्लेयर कर लग बपुआ नहीं डिक्लेयर
1: ऐसे ऐसे मोरिस मैसन का होल बा
0: अरे बाप हम यहाँ अब ये एगो प्रोग्राम साझा साझा उपा वाला तो हमने बोला अब सब कैसे रिसेस द पैटर्निटी एक हाँ। नाम रिसेस द पैटर्निटी कब एक बार किस बा है ला कुछ पॉइंट में हमने जे है प्रोग्राम दूसरा लाभ सर तुम दे साइड ई में आप सर रिसेस द पास कैसे एगो टेस्ट कब एगो बाप बोले एक मर लड़का नहीं है दिखा दूसर आपसे में ये बोली हमारे लड़का नहीं है तो मामा बोली तोर लड़का नहीं है हम तो बोलते ये तोरे लड़का है बस की काहे हम तो जाने ला हाँ तो नहीं करे अरे गो माँ ही जाने ला उपमा जे लड़का है कि नहीं तो बोली तो हमारे लड़का वो बोले नहीं है मानव हम तो का करी मेम की ओकर लाग देने सांस में बाव कर नमुआ बपुआ के बोले नहीं तो मामा बोली सैप देखब से कानून से मांगब हम कि तोके रिकोनेट करे के ई तोर लड़का है तो वो आई लकुरवा में बोले बोले नहीं हम नहीं रिकोनेट करत है ई कि हमर लड़का है ई रिसेस दे पाते नीति में आपसे आ तो आई सब अभी पाते नल में तो हियाँ देख ला वो कब जब एगो कुमा जे माई माँ बाप एगो लड़का के कुमा जो ओटोविते है बा पारंटाल ओ का करेला डिसीडे करेला ओ ऑर्गेनाइजे करेला ओ डिटरमिने करेला कैसे मोडालिटी ओकर से भी करी ओकर ला मतलब मेगो माँ बाप कब एगो लड़का ओकर कुमा जे मिने है ओ डिसीडे करेला लैतेरे ओ लड़कवा के कौन कौन चीज करे के कौन कौन चीज नहीं करे के मैं एक बार चीज है एगो देखबा माँ बाप बोले जाने ले हम बड़ी खुशी रही तू एगो दुखतेर बनते ओकर लड़का के बोला था वो लड़का बोले जाने ले पा हम नहीं आते कैसे हैं दुखतेर बने के बस हम तक कभी ओकर पिकिर हुए देखेला तो गिर जाइला सुकोने सांस अब कैसे तू हमके बोला तू ये करे के मैं देख ला बपुआ डिसीडे कर ले बा मोदालिते कौन ची करे के ओकर बेटुआ के बनाई के डॉक्टर मैं हिया तो बेटुआ बोला था नहीं
1: ओकर ओकर लाइन तेरे नहीं बाप कर
0: नहीं बा आले तो हिया बपुआ के जून ओकर दिवार रलो कर कुमा जे हक रहल वो नहीं सकक सेर भी करे उ लड़कवा में बस की एगो चीज ये बोले एग्जाम दे एक बान ऐसे बा कि वो बता वो नहीं जोन बपुआ बोला था वो नहीं करी वो अपन मानियर से अपन चीज कर दिया मिसलम हमेशा जीज दिखेला ले तेरे लड़का के कभी गो केस आवेला वो जोन माँ बपुआ बोले बा ठीक बोले बा मैं वो लड़कवा के ले तेरे कहाँ भाई में जोन माँ बपुआ बोला था नहीं देखा था कब नहीं बा तो वो डिसीडे करेला जीजवा कि ऑटोरिटी पारंटाल वो आदमिया जोन ओकर लड़कवा के ओके सेवे करता ओकर लैतेरे आर ओकर एंट्रेचियन बोले को जाते हैं खाई पी आयु के सबके
1: ओकर
0: जिम्मेदारी ओकर ले जिकाशियों के ओ लड़कवा के जीज डिसीडे करेला कभी ओके साविला लापुर में ये देखे ला ऑटोरिटी पारंटाल समझ जाए हमने के कॉन्सेप्शन हम माँ बाप बोले ला सर हमेशा ए तू तो तोके हम के चाहना सुन हम तोर बाप आर है माँ है सर तू नहीं तो के तोके चाहना सुने के इधर देखते है चल है ऐते रहे ला आली इधर देख ले ली सर कभी एगो लड़का है का है ऑटोरिटी पारंटाल एगो लड़का लेजिटिम एगो लड़का नेचुरल कौन कौन चीज कैसे हो ला अब हमने देखा सर ऑटोरिटी पारंटाल पंदम मरियाज शादी में रल तू तक गोभी माँ हुआ अब्बा हुआ है पति उधर दोनों के हक कौन सी है उ लड़कवा में जब शादी में तारेल देखब सर जीवोस में और कैसे हो तो देख ली से तारेल गो जीवोस में मैं वहाँ देखता आई हिया बोले ला जब एगो माँ बाप शादी कर ले हो सन पंदम मरियाज दोनों के

0: धुआ बा देवा बा उल्लैक्वा के देखे के और एक जेस से करी के दोनों संगे
1: हाँ
0: ओकर कौन ची करी लैक्वा
1: दोनों जन हवंसा लैक्वा के जितना ओकर ओकर खाए पिए के घूमे फिरे के लेकुल के ओकर सब कोई के रिस्पांसिबिलिटी जन हा लैक्वा के
0: हाँ।
1: माँ बाप दोनों उठावे
0: हाँ एक अब शादी कर ले हवंसन दोनों हाँ। एक बार तो दिख लो है बाप बोले बोले तू का जाने रे माँ वहाँ के बोले तू कुछ नहीं जाने रे जो तू तो बोले तू हम के देखो था ठीक बा कुमाजस्वा जी सबसे जाने ला सभी चीज तो ओकर कुमा जे हिया हई माँ के कुमा जे कोट नहीं लेवता में कानून जोन बा तो हुई पहांताल जब शादी कर ले बाए गो कुप शादी में उ लैकवा पैदा होल बा शादी में या अभी सिपाही नहीं होन सर दोनों के हक बा कौन ची करे के ओके मिशवा सकी देखे कि जोन मदमुआ बोला था कोरे के नहीं बा मैं ओकरो बा एगो लुपिनियो कि सकी वॉइस करे सकी बोले कि जे जोन तू बोला था हो नहीं अच्छा बा पश्चिम हम देखते मर लैका ऐसे बा हम जानी ला लैकवा बान चीज का कोते करी भी कानून बोले ला एक बान है देख बा जोन आवेला शादी कर लेला बपुए से तू आके बोले ला ऊ मजा ऊ देसी दे करी तू का जाने ले हम देसी दे कर
1: मैन ऑफ द हाउस
0: हाँ मैन ऑफ द हाउस या कुछ भी हुई भैया अभी कोनो तो बोला खंबा घर के पति है ना तो ये सब हम या बाप हुई या कुछ हुई मैं सेलमा हमने के उतो हुई थी पारंताल दोनों के हकवा बा वो कुछ सकी बोला था अभी डिसीजन देखब सर मैं ओकरो एगो धुआ बा ओकर लोपिनियो दे के कौन सी ठीक बा कि नहीं बा ये ओकर माँ के भी है और कब देखब लिमन से एगो माँ सब पहले नियर हमने के कब कब हमने रही सब माँ बाप साइट नहीं लिकोल घर लंसन सिपा कुछ तो हाँ तो सकेला हमर है बपुआस तनी जस्ती माले रहे हाँ। जी काश्यो में बोला हाँ, हाँ, हाँ। मऊआ से तो सकी
1: आगे तो महिला लोग की लिकोल नहीं जाता जना ढेर पढ़ाई लिखाई नहीं करते ला तो लोग के काम रहल घर पे रह के लड़का लोग के देखे के खियाए के पकाए के नितवायु करे के लेकिन अभी के महिला तो कंधा से कंधा मिलाकर सब कोई काम करता था
0: पति के सेवा करे के
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: अभी तो अवसर नहीं बाले
1: अभी नहीं
0: इसे में एक चीज है एक अच्छा है हम नहीं बोलते अभी इक्वल बा
1: हाँ
0: मिशे हो मैडम हो ओकर दुआ बराबर हक बराबर अरे वो सब नहीं आप मैं यहाँ देख लो कब शादी हो तेगो माँ मेम की पढ़ल बा या पढ़ल नहीं बा मैं अभी तो सभी कोई पढ़ल बा तो ओके देख बा वो धोआ बा ओके बा कौन सी बोले के पंद्रह सदिया में जब शादी में अरे ये तो देख ले ली सर अभी को पति पत्नी होवन सन मामा पापा होवन सन अब वो लोग जीवोसे कर होवन सन जीवोसे हो गल कौन ओकर धोआ बा उल्लै कुआ में अरे रेलवा देख ली सर जहाँ एगो है पत्नी एगो केस कर ले रहा लाकू में जैसे बोली ना कब जीवोश हो गल यही जीवोश में बात करब सर हो गल वो कभी अपन लड़का के कुमा जे लेते हुए नहीं रहल तो जीजुआ बोले हाँ आज से तू एगो मडमो एगो केस कर ले वो तो हुई थे पांगताल बोले खाली ओकरे दे के मडमो के ओकर बपुआ के ओकर पति आज तब पति तब नहीं रहल तब जीवोश हो गल तब बोला था कि कम को हमके दे तो के कानून बोले हाँ ऐतेल खुते बा लालुआ में बा कब अप्लाई कर लब तो बोले हाँ सचिस्वे गए कि मिशेवा के अब उल्लैकुआ में कोनो हक नहीं बा दिख ले रही सर जीवोसुआ में अभी दिख रहा सगो जेनेगाल एगो जेनेगाल जब एगो कुमा जय माँ बाप बा दोनों जीवोसे होल बा या सिपाही जिको एगो प्रोग्राम भी आनब सबनी सिपाशो जिको हमेशा दिख बद तीन कार आदमी बतिया ल जीवोश के विषय में
1: हाँ।
0: बोले हम तो सिपा रहे हैं भाई से हई बस हम जीवोसे हो गल नहीं हाँ एगो दूसरा एगो बड़का डिफरेंस बा सेपरेशन जी को पति पत्नी सेपारे रहता मेम घरवा में नहीं रहल बा मैं सदिया ही बा
1: अच्छा
0: ये भी है हाँ। एक बार आदमी मतलब वो खाली दंडवत मो काम नहीं बोले खो जाते एक बार तो छोड़ के चल दला बोले तोर से हम सब नहीं दिक्कत नहीं सकब जिए हम जाते हैं से पारे रहे मैं सदिया नहीं जी वो से कर ले बा सदिया टूटल नहीं बा
1: हाँ।
0: खाली से पारे बा वे दूसरा है हम नियानब सर
1: से पारे वो होगा तो उकरो में भी जो माँ बाप हाँ। अभी ले दोनों के पूरा हक बा बस की जब जीवो से वे हो जालन जा तो वैसे बोलनी कि माँ बाप के दोनों के हक रहला लड़का पे तो यहाँ पर तो खाली से पारे हो गल वन सर तो यानी कि जो भी लड़का के फैसला रही मैं सिर्फ मैं एक बात बताओ अब लड़का जो बा अपन माँ अपन माँ के संगे बा न तो ज्यादातर उकर डिसीजन जो है वो तो माँ लेबेला न

0: पिता के संगे रही तो ज्यादातर डिसीजन पिता वो अपन बगल से ले तो एक में कभी हो ना कि जैसे कि माँ बाप को मामा एगो फैसला लेलक लैकवा कर संगे बा तो पिता जो बा ऑब्जेक्टिव होल या तो फिर पिता एगो डिसीजन लेलक और माँ ऑब्जेक्टिव होल।
1: एगो जोली है प्रश्न बोल रहा है मैं एगो चीज है हमेशा लड़का जोन संगे रहेला।

0: माँ जे जे हुई माँ संगे रही तो जो मामा बोली हुई सुने पकड़े पहला चीज बोली तू तो हमार बाप हुए कौन धैल तेरे हमके बतैले हुए तू हमके खुशी हुए या हमर माँ जे तू हमर लिए कुछ कर ले हुए हमके तो तेरे से नहीं रह जीतू हमार माँ सब चीज कर ले बा वो मन ले बा खाई के पिए के यारे जीवोस्वामी आई सन ही में उन्हें तभी सब बोलती सन नहीं तो देखो यहाँ तक जीवो से हो गल बाकर संगे लड़का से पारे हुआ था हाँ हिया ऑटोरिटे पारंटल मेम कि जीवो से हो गलबा राइट कब जीवोस हो गलबा लाकू दे दे बा आज से पति पत्नी नहीं हो वंसन जीवोस फिनाल हो गलबा तो हिया लाकूर में कब किसवा आवे तो माँ तब पूछी कर ले हुई बपुआ के तो बोली ना हाँ जीवोस करते हुए हम आर तू भी तो के चाहे ला हर महीना के ओकर प्रणतवा में मांगे ला ओकर आप वो ड्राफ्टे करू देवे ला उमें बोले ला हम चाहत है ये लड़का के जो तोर लड़का है एगो पंशों आली मांते है मतलब एगो पंशों कर खाई पियाई के तो के दे के चाहे ला हाँ तो कर लड़का है तो यहाँ मेम के जीवो से होल बा ओकर बपुआ नहीं रहता संगे जीवोस बा सदिया नहीं बा अब कुमार जो उमे मेकअप कानून बोले कि तोरा चाहे ला है लैकवा के ओकर देखभाल करे के ओकर खाई पियाई के एगो पोंशों दे के पोंशों ही एगो पैसा है ओकर लिजिकाशों के ओकर खाई पिए के ओकर कपड़ा उदे ओकर बियानित के सब चीज के कुमाजे चाहे ला दे के आर बोली ऐतिल मिला गद दे सा फौवा जे के दे के कुमाजे मौवा के लागत बा बस उकर संगीता लैकवा बा तब नकुमा जे हई बपुआ उके दे के चला त हिया देखल मेम कि कुमा जे दोनों कुमा जे हई बा एगो हई अभी जीवो से हो गल बा बपुआ के उतो हई बा कि चाहेला उ लैकवा के दे के एगो पोंशु तरे लो एगो चीज बोलला हिया शादी करलन सन जीवो से हो गलन सन अब ऐसन कामे बपुआ के तक मजे हग बा उ लैकवा में कि जीवोस बा अबे अब ओके मन बा मवा के सिबोजों जाए के नंगले तेर एगो पासपोर्ट निकाले के
1: हाँ
0: अब मजे को पासपोर्ट निकाले के नहीं मवा अकेले मेम के ओके लागदुआ मिलल बा बिना ऑटोरिजेशन बपुआ के सियाचिया के पासपोर्टवा में नहीं सकी लेके लैकवा है जाए के पहला तो है ये पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जैसे ऑफिस बोले ला वही तक कब ओके फॉर्मा कम्प्ली करब तो बोलिए अरे उकर बाप से तो हाँ जीवो से मजे तो हो गल मैं उसकर बाप उकर दुआ बा ये लैकवा एगो मिने रह जे माजे रह तो वो तो अपने पासपोर्ट अपने निकाल दे तो हिया देख ल मेम कि कुमा जे हिया गो का जीवोस बा ओकर ओब्लिगेशन बा मऊआ के ओकर बाप के जोन रहल शादी कर ले रहकर से ओकर लैका का ओकर पासपोर्ट ओकर सियाचिया चाहे ला तब एगो पासपोर्ट ओके मिली तो हिया देखे ला जब कुमा जे माँ और बपुआ जोन हुआ रही तो ओके चाहे ला देखे के ओकर लैका कौन ची कर था ओकर लैका की देखभाल सवेजिया ई कभी देखब त लिमन से नहीं सकब कुमा जे कब शादी कर ले लो हाँ बुढ़िया से तो ओके कुमा जे बुला जे बचल गल बा मैं ई ओक तुहर गासिन है उ लैकवा तो चाहे ला ओके असम दोनों माँ और बाप देखे के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के उ लेक्जेसिस जोन हमनी बोले सा वो तो हुई मजे पारंटल ये वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है देख लो आज एक बार आदमी शादी कर ले बा सोचा था अरे हम तो शादी में हई मैं सिपारे हई हम सिपारे ओकर से तो हाँ एक बगल हई तब तो सदिया तो नहीं फिनिवल बा याद करे ओकर नाम सिपारे खाली दूसर साइड हई घर में रहता ई दूसर घर वा में रहता मैं सदिया तो हई बा बपुआ के या मऊआ के यहाँ का बाप के बोते बोले मऊआ के बोले थे मैम साफिर ओकर धक बा उ लैकवा में तब ले कानून नहीं छीन ले उ है नहीं छीने निकाल दे कुमाजे उ कुमाजे है उ तो भी ते पाहा तलवा हाउ ले कुआ के कुमाजे बगल से हाँ तब बपुआ कुमाजे कुछ नहीं सकी करे मेम की जाना था कि ये हमारे लड़का
1: एगो एगो और सवाल बा
0: हाँ बोला
1: मान ला कि एगो एगो जोन पति पत्नी हो वंसा जीवो से होगल वंसा लड़का जोन बा उ अपन पिता के ही यहाँ बा अब माँ शादी नहीं कर ले बा लेकिन पिता शादी कर ले बा दूसर एगो आंदले हो पत्नी तो जैसे बोला था कि हई दू गो जन तीन गो या चार गो या कितनो लड़का रही या हाँ, एगो लड़का रही हाँ, मान लो लड़कुआ जो बा अपन पिता के संगे रहता हाँ, हाँ, शादी के बाद जो रेस्पॉन्सिब रही से वो अभिले और पिता के और हो जो माँ जन्म दिले बा उलो के

0: बीच में रहेला और है जोन शादी करके नया नया आलवन का उकर हक रहेला लइकवा पे
1: अरे पहला चीज है जोन पहला शादी कर रहल से बुझो पतिया हाय तो पतिया कब शादी कर ले रहल उकर रिलेशन बा उकर लइकवा से बस उकर देवा उकर लइका है। दूसरा चीज ई बोली मेम की जीवोस हो गल बा बपुआ आर है मौवा मन मन उकर हक बा उ लइकवा में टबलेक माजे नहीं हुई समझ लो ना तो उसा भेजा बपुआ मेम की मौवा से पारे हो गल सन लीगल में जीवो सो हो गल बा मौवा के लइका हो मौवा के नाम में दिखलारे कर ले बा हाँ बपुआ दिखलारे कर ले बा ओकर नाम में तबलेक उ लइकवा जिसविता नहीं हुई ओकर माँ बपुआ नहीं सकी करे के कुछ करे के काल एगो चीज मा जो कर लेती गई उ लइकवा के जो उ है बा तो ओके मन बा कुमार ऐंची दे करे के कुछ बपुआ के चाहेला पूछे के है मौवा से कि देख इलेक्वा के ऐंतिल ऐंतिल का जिस नहीं बोली पसपोवा चाहिए तो यहाँ तो मैम की जीवो से हो गल बा मैं लेकवा ते गोमिने बा वहाँ तो को अभी सदी ओकर माँ दिखलारे कर ले बा ओकर लाग देने सांस में बा तब जाई पासपो तेन ऑफिस में मांगे पासपो तो वहाँ देख बा फोमा में दूरों के जाना भरे की दूनों के नहीं की पपुआ उठा के लेकवा से बोलो दूसरे लगल बिना परमिशन है के
0: जो नया पत्नी बा नहीं
1: घुसे हाँ अब नया पत्नियाँ जो शादी कर ले बा कुछ नई बा ओकर दुआ उ लइकवा में बस वो कर लइका ही नहीं हो समझ लो कैसे माफ करिए तुहर लइका बा हम तो मजे इतना से हई कौन दुआ बा हम हम के तुहर लइका में कुछ नहीं बा तो ऐसने मेम की उ पतिया शादी कर ले बा एगो दूसर मैडम से अब वो हो गल बा ओकर मैडम में कभी नहीं ओकर गांवला से सकी हुई ना अपन मौवास के नियर तो ओकर हक कानूनों के कुछ नहीं देवेला कई कुमाजे है ओकर
0: डिसीजन
1: डिसीजन लेके या फैसला जैसे बोले तो लेके उ लइकवा के बस की उ लइका ओकर लइका नहीं है जब लइका ओकर नहीं है तो उसे कुछ नहीं नहीं सकी करे और मजे काल सकी अभी आजकल के लइका ऐसे रह सकी बोली हाँ वो तो हमारे बाप के मजे तू शादी कर लेवे मैं हमार माँ तो तू नहीं हो ना तो फिर नहीं देख ला ही ओकर मजे खेल मजे है हो जाला मैं एक बार तक कोट ले तब हम सब नहीं दिखी ला सर आले हिया हमने दिखी ला सर अब एगो माँ वो तो हुई थे पारंताल में एगो माँ बाप के कुमाजे ओकर है देवो है कि ओकर लइका के चाहेला ओकर सिक्योरिटी देखे के ओकर लासांते देखे के कि एगो दौजे में नहीं बा और उ लइकवा के चाहेला जन्मा के बड़ा करत एगो मोगालिते में एगो चीज ओके सिखावा कैसे कुमा जेल अरे माँ बाप लोग नहीं बोलेगा जाने बेटा सेवा बेटी नहीं जो पूजा कर ऐसे कर एगो मोगाल कुमा जे एगो बनाए अपन लड़का के कैसे कुमा जे है जिए के कैसे गांजे करे के है बड़ा करे के तो उम्मीद देखे ओकर ओकर दुआ है। अब एगो बाप सिपोजो या एगो माँ वो को डाने हो गल बा एगो मूवी ट्रीटमेंट उ लइकवा में कूडाने होल बा अरे तरलुआ बोली ना पहला शुरू कि ऊ बपुआ एक छटकन मरलक भाई छोकरवा के अब छोकरवा चल गल ला पुलिस के देखे तो ला पुलिस देख लगे केस करलक अब बपुआ के मजे एगो लामान मिलोल एक नाम कोंडाने तब हियाँ देखलक अब ऊ कोंडाने हो गल मोवेज ट्रीटमेंट के तो सकल जाए जे मौआ ओ के नहीं चाहता कि फिर से ओकर लड़का एगो विक्षिम बने सकी मांगे जैसे वो तो हुई पाता लाकू के कि देख हम लइका हम अपन से देख कब लाकू भी सब सब देखी तो ओके सकी निकाल दी ओकर लइकवा ओके नहीं दे हियाँ हमने के देखी ला सा हर बाप हर माँ चाहेला वो तो हुई थे पाताल में नहीं एगो चीज करे के कि एगो क्रीम करे के कि कौन डाने हुई अपन लइका एगो जमाना रहल जब गांव में रही बा एगो बाप बलाकार कर दे उकर बेटी से बाप बपुआ के सकतन सर मुआ नहीं एगो चीज अच्छे चीज है हमारे लिए पूछ बत एगो बाप के नहीं चाहे ला इसे करे के मैं बाई सन का वो बोले हम एक तक मजा पैदा कर ले हई लड़का के वो पैदा करल तो हमारे मजा हक बा उकर में एगो बाप के हक नहीं बा कि ओकर बेटी से बलात्कार करेगी, ओकर बेटी की सिरवी करेगी, ये वो दिली है, ये वो ये सिर से ही है, ऐसा नहीं सन कारगल पहले रहल, अभी अभी तक मजबी बां में बां बां ना ये है
0: आप जनबा लाखों में रहे आप जनबा
1: हाँ है।

0: बार में नहीं तो जाने हम स्वीप कर जा कभी हम के तो कोई शो कुछ नहीं हुई तो हम साकी जाकर बैठा नहीं लकुरुआ में सुनत एगो ऐसे को का कब अलबा पसी काहे हर समय के आँचे जुन जुन केस आई लाकुर में तोहरा जान जाइब तो खाली तुहरा देख के पढ़ के जाना कौन काल के केस जाई खोज तो या नहीं जाइब या पढ़ ले होइब तो एगो बाप जहाँ एगो बलाकार कर दे हो अपने लड़का से तो उल बपुआ के कभी ओके उतोगीते पाहताल नहीं मिली ओके तो आपोसे ही नहीं होई सकी लैकवा के एगो सेतेन जिस्तांसवा के आर ओकर लैकवा हमेशा आई करी हेट करी अपन बाप के कैसे जैसे बड़ा होते जाए बस वो जानेला कौन सुफेर अरे सबसे मोवे चीज कि कुमार जी बा हमने के क्रिम के कुमार जी क्राइम बोले को जत हमने के पुस्तक में लिखल बा तो देख लो हियाँ हर एगो है बाप जहाँ ओकर एगो कुमार जी मोचिव घाव बा वो कुछ जिस्टिफिए करेला कि उ लैकवा के कुमार जी निकाले के ओकर माँ बाप संगे तो ये देख औसन कौवा में लैकवा कुमा जी हमेशा पास मिजर वेला और ओके ओतोगीते पाहताल नहीं मिलेला मैं पूछो आदमी बोलेला ये हमर लड़का है हम करब जैसे हमके खुशी रही हम सक पकड़ के मारे पहले को जमाना अभी तो लड़का बा है के कुमा जी
1: अभी तो नहीं सकवा लड़का लोग के मारे
0: हाँ ही बोलते हैं ना हाँ तो पहले तो मैं कभी एगो चीज अब मारे के विषय में जाने ना एगो लड़का के सगब मारे कोइजे करे
1: हाँ
0: ओके कोइजे करे के या के बोले के कि ये दे कैसे करत हुए नहीं जब दो तीन थप्पड़ तो कुमा जी मारे ला हाँ मारे के ऐसा एगो जो ओके कोइजे करे के
1: हाँ
0: मैं नहीं मारा कि खून निकाल या कुमा जी वो चीज नहीं करे के चाहे ला एक्सेस कुमा जी एगो है एगो चीज करब तो हमें सब चीज लाकुर वो भी कौदा नहीं करेला आलो तो ये एगो चीज मेय चीज है मार नहीं बैठ के बतिया हुआ एगो कुमा जी कैसे ओकर संगे जिए के चाहे
1: हाँ लेकिन जब एगो लड़का जब एगो कैंसा सेजा हो वेला तो ऐसा निकालो से बतिया के तरी मुश्किल हो जाला लेकिन तरी पैसे रिबेल हो जाला सा
0: नहीं कभी अपने हाथ है छोड़ देवे सन मां बकवा में ये खूब बोल रहा
1: आजकल के लड़का लोग तो अपन मां बाप के
0: कैसे गदाने लन सन नहीं
1: हां लोग नाम से बुलावे लन सा
0: हाँ हाँ सिलमा वो जाने ला का है एगो एगो एगो चीज है लाफोंस में कब पहला शुरू हो रहा मॉरिशस हुए में भी तो देखब आदमी बोले अपन बाप के ऊ बोले अंकुत ऊ पे आले
1: हाँ
0: तो अब का बोले सन अंकुत तो पे आले
1: हाँ
0: तो एगो चितवाये है तो चितवाये के मजे बोले सन जोन एगो आदमी भीरी बा अरे तो पत्नी में घरवा में अपने पति के बोलेला अंकुत तो पे आले
1: हाँ
0: तो आ तो पे आले तो ऊ तो बड़ा हुआ था
1: तो सुन के बड़ा हुआ था
0: हाँ तो कौन सी बोली हूँ वो बोले अंकुत तो पे आले
1: हाँ
0: हमने के
1: सिखावल कर रहल कि जब हमने छोटा रही सा कि हमने रे जे बड़ा होन सा माता पिता दादा दादी चाचा चाची सब कोई के जब बतिया सा आप बोले के तू नहीं बोले के
0: हाँ ये एगो दूसरा चीज बड़ा चीज पहले रहल जने बड़ा आदमी के कब देखब मौसी हुई दादी हुई या कोई भी भाई हुई पहला चीज ओकर पाँव गिरत रही सा
1: हाँ
0: प्रणाम है ऐ तेल सिपाही तेल चाची कैसे हो ठीक हो न गोड़ में गिर के आशीर्वाद ले अब घादू लाजू में चुमा ले बल्लता एगो एगो एगो मानियर कैसे सोसिएते मजे है ये बोलिए हो गल कैसे सांस नहीं तब देख ही कर बते तनी अच्छे ही बा मैं नहीं कि मारो पीटो
1: लेकिन यहीं से तो शुरू हुआ ना कि बचपन से

0: कुछ या मजे खाई के गाड़ी बुरी जो गोड़ लग के आओ भगवान के कुमाजे है तब आइए तब बैठ के खाइए आली तो उजाइ ले कुलू अपन भगवान के आगे मजे झुकी तो कुमाजे है तब हुआ से अपन जाई। मैं आजकल के कहाँ बा भाई माओ बपुआ नहीं एक्सप्लेन करता जैसे सिखेब उ लैकवा ओसने हुई तो हिया देखेला सर वो तो वीते पाहताल है एगो माँ बाप जोन चीज सिखावेला उकर लैका के उकर लैका उही स्वीप कर ले जाला आली ई तो हमने देख ले सर अभी हमने देखेला सर एगो लैका उकर वो तो वीते पाहताल कौन ची है एगो लैका जोन आबोने हो गल बा ये भी हम के सोसाइटी में बा एक बान लैका के माँ बाप कोते ही नहीं ले ले बा नहीं बताए कि पैदा होल बा सीमा में वो लैका नहीं है वो दूसर के बात के है। मैं ही अपने लैका के एगो है बा नहीं कोट नहीं ले होता अभी तो देख बा शेल्टर में कितना लैका बा हुआ लैका बा माँ बापवा जिलिमन रह जानत अपन लैका के देखे ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जानत तक आज तो शेल्टर में नहीं रहता दूसर जगह वो लैकवा कब बड़ा हुई तो कौन माँ बपुआ के कुमा जे ओकर गदानी बस वो तो कुमा जे माँ बपुआ के प्यार मोहब्बत तो कभी मिले नहीं बा तो ऐसन ऐसन कौवा में हमने देखिला स उ लैकवा जोन आबोने हो गल बा एगो लंबा पेयोद के तो उ लैकवा के ओकर है प्यार मोहब्बत जोन ओकर माँ बाप के चाहत तो उ लोग कुमा जे उ लोग नहीं है कुछ है करी ओकर लैकवा के कब जाए ओकर ओटोईते पाहताल में जो हुआ शेल्टर में बा हर डिसीजन जो ले के बा के ले होता
1: ओकर जो गार्डियन हुआ
0: है का या गार्डियन नहीं था जो हुआ बा उ शेल्टर हुआ में गो बोली के वो हुआ ले होता
1: लैकवा के गार्डियन उही उही रहला
0: उही अब वो ले हुआ था डिसीजन ले हुआ था ये में कौन सी है कौन सी करे यहाँ तो कर्मा बाप बा आली एक बार कोई देख ओकर लैका अबोने हो जाला जब कुमा जे व्योलेंस सर्वी कर ले बा कुमा जे व्योलेंस फिजिक साइकोलॉजिक सेक्सुअल ये सब सब कब होएला खाई पियाई के नहीं दे ले बा अंतरिक्षियाँ नहीं कर ले बा ओकर लेजिकाशों के नहीं दे ले बा ओकर मोरालिटी के नहीं देख ले बा कुछ नहीं देख ले बा उ लैकवा के तो उ लैकवा कब देख बड़ा हुई तो उ लैकवा एगो इतरांजे ही नियर कुमा जे रही पहिया बपुआ के उ कुछ करी बपुआ या मऊआ हल्ला करी कुछ बोली लेस तुमा बात मार के बताई कि देख तू तो हमार लैका वे बपुआ बोली आज तक हम तुके कुछ ही नहीं जानी ला तो हम गई को नीति ही नहीं करी ला तो बोले कैसे तो बोले कहाँ हम जीते ले हई कहाँ के हम के पूछ ले बा हम घर में रही तो बोले हम तो शेल्टर में हुआ रही
1: जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बा लैकवा के माँ बाप नहीं आवेला ओकर में अजय आबोदे नहीं कर दिला लैकवा के उस शेल्टर में चल गल तो कर जे ओकर गार्डियन रहेला
0: हाँ।
1: जे लोग के देखेला उस शेल्टरवा में
0: हाँ।
1: सब जितना फैसला बा वो लोग लेवेला
0: देख ला हिया यही बोला जला उतुईते पावन ताल एगो माँ बाप के हक बा ओकर लैका के जब ओकर लैका के आबोने कर दिले बा तो उ देखे बा ओकर खकुआ उमे कम हो जाला तो आज देखिला सर अब हमने एगो है आदमी मन बा ओके मांगे के एगो कुमा जे आक्षों और दिशाओं जैसे हमने जैसे बोलेला तो उस सकी एगो आक्षों आने लाकुर में जैसे पहला चीज हुआ हमने देख लेल से मदमुआ मांगे कि देखा ये बपुआ के कुमा जे अब ओकर देवो नहीं बा कुमा जे हम बोते पस कि कोनो कोट नहीं लेवेला मांग कर थी स कि ओके निकाले के लिहिया लैकुआ बा माँ बाप बा दोनों न मावा एंतरिसे बा न बपुआ एंतरिसे कर बा ओतोईते पारंताल सर्वी करे के ओकर है लैकवा में के सर्वी करे तर लोग तो शेल्टर में रल तरल एकरे नाम है उ लैकवा सकी एगो त्वाजम पेसुन नहीं त्वाजम पेसुन में हिंदी में भोजपुरी में नहीं बता एगो तीसरा आदमी जोन हमने बोली ला स एगो चितेर एगो चितेर सकेला एगो फमिये में भी हो एगो आदमी या एगो एक दूसर आदमी हुई जो ओकर है देखी ओकर है रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी उ सकी कुमा जे मांग करे लाकू के कि बपुआ के आर मामा के नहीं कुमा जे हमके द लाकू रे मिनिस्टर पब्लिक उ सब आवेला एगो पोसे जे है चितेर देखब से एक दिन कैसे होला आ चितेर चितेल तो हुआ खड़ा होला उ रिस्पॉन्सिबिलिटी उ लैकवा के
1: मांग
0: कर लाकुआ में जाके किसी वचन देवे लंसा कि हम लैकवा के दिखा हाँ। एक बार है भी बा दादी नहीं कुमा जे मौसी सब भी हुई दादी हो भी बा।

0: मौसू से बोले लो खड़ा रहे एगो मम दे फामी जिसे हमने बोल सखी गो चीते बने तो देख हुआ बोली जाके ओके हई लैकुआ के ओकर देखभाल करे के ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम ले नहीं कि उकर माँ बाप उकर माँ बाप अब हाँ, नहीं कर
1: अब एगो माँ बाप जोन बा लोग गरीब हो मन से एगो लैका के नहीं सकत हो सब पोसे पहले से लोग के दो तीन गो लैका बा एगो लैका हो गल बा तो मान ला एगो ऐसन परिवार जेकर लैका नहीं बा उ लैकवा के आदुप्ति कर लेलक तो जोन समय उ लैकवा के आदुप्ति कर लेलक तो जोन बायोलॉजिकल पेरेंट्स हवन से जैसे बोला जो जन्म देले बा उ लोग के हक है उ लैकवा पर कि सिर्फ जोन आदुप्ति कर लेवन उ लोग के हक रहेला
0: जब कुमार आदुप्शो में भी आप सब कोनो बा अडॉप्शन सिंप अडॉप्शन प्लेनेयर जब एगो कुमा जे है आदमी कुमा जे जोन के लैका नहीं रहल अब वो मांग करलक ऊ जाके एगो है हो गल कुमा जे ओके अडॉप्टे कर देलक जब अडॉप्टे कर देलक बा ऊ लैकवा के ओकर हक बा ऊ लैकवा में के ओकर बायोलॉजिकल मम एंड डैड बा ऊ लोग के हक नहीं बा लैकवा में
1: यानी कि जन्म सकरेला देले हुआ हाँ। लेकिन एक बार लैकवा के आदुप्ते करल गलबा लैकवा आदुप्ते हो गलबा दूसरे गोफामी से हाँ। यानी कि जब आदुप्ते करत वन से तो वो लोग बोलत वन से वो लोग लैकवा के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवत वन से ओकर खाए के पिए के कपड़ा के घूमे के ओकर लिजकाशों के सब कुछ वो लोग देवता
0: हाँ
1: यानी कि अब जोन बा हो जोन माँ बाप पैदा कर ले हुन जा वो लोग के एको हक नहीं है जे आदुप्ते कर ले बा खाली वो लोग के हक है उन लैका पर जितना डिसीजन लियन जा वो लोग लियन जा
0: एगो चीज बोल
1: देखते
0: सब चीज यहाँ लैकवा के है मिलल बा जो नवा मवा बा मैं हर चीज जमीन से भी सही जीबिए लैकवा के हक बा ओकर हौ पहला जो बायोलॉजिकल मम एंड डैड रहे
1: बहुत खूब बहुत बढ़िया तो हमने के जोन कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होवे जाता आज हमने देख लीजा माँ बाप के अपन लैका के प्रति कौन अधिकार रहेला और हमने के संगे हमने के वकील कपिल देव रघुनंदन जी हमने के संगे हवन ये कार्यक्रम के लिए हमने के इतना कुछ बताए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी
0: ठीक
1: चला एक साथ हमने के आज के जन कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुआ था हमने के पूरी टीम की तरफ से तोरा बहुत बहुत धन्यवाद शुभ दिन
0: नमस्ते।

0: नमस्कार गिनेशा श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस में जल आपूर्ति की स्थिति पर अब भी दबाव बना हुआ है। बारिश की कमी के कारण देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य औसत से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल पानी की कटौती मुख्य रूप से केंद्रीय पठारी क्षेत्रों तक सीमित है, यानी कि सेंट्रल इलाकों में। हालांकि यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो जल संरक्षण के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं प्रतिबाधक उपाय भी लागू किए जा सकती हैं। मॉरिशस की पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री दीपक बालगोबीन से आज सीसीआईडी ने गवाह के रूप में पूछताछ की। जांच के दौरान उनसे उनके मंत्री कार्यकाल में संसद से पारित एक कानून के संबंध में जानकारी मांगी गई। ये पूछताछ कथित टेलीफोन निगरानी उपकरणों की खरीद से जुड़े मामले में चल रही पुलिस जांच के तहत की गई है। दो वर्षों तक चले नवीनीकरण कार्य के बाद पोर्टलुइस के जीतू अस्पताल का शवगृह दोबारा संचालित होने लगा है। इस अवसर पर देश के 8 सार्वजनिक शवगृहों की कार्य प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है। इन शवगृहों में पार्थिव शरीरों के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न अस्पतालों के बीच उनके स्थानांतरण तथा लावारिस शवों के रखरखाव और अंतिम व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि ये सेवा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली आम लोगों की नजरों से प्रायः दूर रहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य पूर्व का संकट अब एक नए चरण में पहुंच गया है। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों के लगातार 13वें दिन यमन के हुती विद्रोहियों ने दबाव किया है कि उन्होंने लाल सागर में यानी कि रेड सी में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के इस दावे के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इस बढ़ते संकट का असर पहले ही वैश्विक बाजारों पर दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और तेल का एक बैरल अब 100 अमरीकी डॉलर से अधिक पर पहुंच गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है।
2: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं

का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये रेडियो मनोरंजन का प्रसारण है। मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ आज के सेगमेंट को लेकर अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक। जी हाँ, इस कार्यक्रम में जहाँ पर हम आपकी चिट्ठियों को, आपके मैसेजेस को शामिल करते हैं, आपके भेजे गए कुछ ऐसे पत्रों को शामिल करते हैं जिसमें आपने अपने दिल की बात को रखा है। और बेशक अगर आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बेशक हम आपका स्वागत करेंगे ऑन 4028070, या फिर आप मैसेज के द्वारा भी अपनी कही गई बात हमारे इस कार्यक्रम में शामिल ज़रूर कर सकते हैं। 5250620 नंबर है, याद रहे रेडियो मनोरंजन का नंबर 5250620। और बेफिक्र होकर आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं अपने नाम को डिस्क्लोज किए बिना। और आज की एक और ऐसी भावनात्मक चिट्ठी जहां पर उन्होंने अपने दिल की बात रखी है, और सच में आज का ये एक सिनारियो हो चुका है, घर घर की बात जिसे हम कहते हैं। तो चलिए आज की ये प्यारी सी चिट्ठी हम शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, आपकी चिट्ठी कार्यक्रम में। आपके कार्यक्रम में हम हर बार दिल छू जाने वाली चिट्ठियों को आप शामिल करती हैं, और मैं भी अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ। पहले के समय की बात है जब हर कोई रिश्तों का सम्मान किया करते थे। हमारे पड़ोसी हमारे घर परिवार के समान हुआ करते थे। अगर हमारे घर में कोई ख़ास मौका हो तो हमारे पड़ोसी ही हर कार्य में हमारा सहयोग देते थे। मानो ये खून के रिश्तों से भी बढ़कर हुआ करते थे। यही हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता था। पर ऐसा सभी ओर नहीं है। मैं आपसे आज के इस कार्यक्रम में अपने दिल की भावना को साझा करना चाहता हूँ। 3 मास के लिए अपने बेटे के बुलावे पर मैं लंदन गया था, और वहाँ का माहौल बिल्कुल ही हटकर था। वहाँ पड़ोस में कौन रहता है ये जानना भी मुश्किल। वहाँ का जीवन बहुत ही आधुनिक, मॉडर्न हम जिसे कहते हैं, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण, परंतु मानवता, अपनापन, सहयोग की भावना जैसा वहां देखने तक को नहीं मिलता। एक दूसरे के जिंदगी में या एक दूसरे के जीवन में कोई समस्या भी हो तो हम सहयोग किससे मांगे? कोई हमारी मदद तक करने को तैयार नहीं। ये बात को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, पर अफसोस के साथ आज मैं ये कह रहा हूं कि आज मॉरिशस में भी, ये हमारी जन्मभूमि है, पर धीरे धीरे करते हुए एक दूसरे से हमारे अपने दूर होते जा रहे हैं। कुछ समय पहले की ही बात है, हमारे पड़ोस में रहने वाले हमसे, हमारा उनसे कोई रिश्ता तो नहीं था, पर बहुत ही गहरा संबंध था। घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे हम उम्र थे, वो गुजर गए। बच्चों के साथ हम बड़े हुए हैं और आज बच्चे हमसे बड़े हो चुके हैं। उनके तौर तरीके कुछ समझ में नहीं आते। हमारे आंगन में जहाँ वे खेल कर बड़े हुए हैं, आज हम ही को आंखें दिखाते हैं। हमारे आंगन में एक आम का पेड़ था, और आज तक उसे लेकर कभी कोई अनबन नहीं हुई। कुछ दिन पहले उनके छोटे बेटे ने हमसे ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा कि आप ये पेड़ कटवा दीजिए। इतने सालों से पेड़ पर होने वाले फलों का आनंद लिया, पेड़ की छाओं में खेले हैं वे लोग, और आज पेड़ को काटने पर तुले हैं।

पेड़ को काटना समस्या ये नहीं है, उनका इस तरह से बात करना, बात करने का जो ढंग है, यही सारी समस्या है। अगर वो प्यार से भी कहते तो क्या ये समस्या हम सुलझा नहीं पाते? आज की इस कार्यक्रम में, आपकी चिट्ठी में, हम यही प्रस्तुत करना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि ये जो बरसों से बने रिश्ते हैं, इन्हें अपनी बातों से यूं ही ना बिखेरें। रिश्ते बनने में बरसों लग जाते हैं, बिखरने में बस कुछ क्षण। अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में, बिल्कुल आपकी यह चिट्ठी एक बहुत ही बड़ी सीख है, और हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं। चाचा जी, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने दिल की भावना को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की है, और बिल्कुल हम आपको यही कहेंगे कि आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। जहाँ पर हम आज के समय में एक दूसरे से इस जीवन की रेस में आगे तो बढ़ते चले जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों को कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे ढंग से, हमारे बातों के अंदाज़ से, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बहुत ही बुरी तरह से ठेस पहुंचा रहे हैं। और ये दिन हम कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जहाँ पर बस इंसान अकेला रह जाना है। आज हम कह सकते हैं कि दौलत में वो चूर होता जा रहा है, एक कह सकते हैं ना, शोहरत के चकाचौंध में इंसान बहुत आगे निकल चुका है। जिनके गोद में आप खेले हैं, जिनके आंगन में आपने हुल्लड़ मचाई होगी, आज वे ही लोग आपको बस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। चलिए, आपकी चिट्ठी का कार्यक्रम में हमने कुछ ऐसी ही चिट्ठियों को शामिल किया है जो आपकी ही द्वारा भेजी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मनोरंजन के लहरों पर ये कार्यक्रम शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच हर शुक्रवार को चलता है, और बिल्कुल चाचा जी, हम आपकी बातों से बिल्कुल ही सहमत हैं। भाई, ईश्वर ही उन्हें सद्बुद्धि दे, ये ही हम कह सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता कि जिनको हमने देखा है बचपन से, आज वे ही हमें आंखें दिखा रहे हैं। चलिए, अगर वे भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आई होप कि ये मैसेज आप तक पहुंच गया हो।

0: सारे रिश्ते मौजों के साथ बह गए। समय का भी यही हाल है। चिट्ठी मिली कार्यक्रम में चलिए हमेशा की तरह हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़ना बेहद पसंद करते हैं और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एक बहुत ही प्रिय श्रोता। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हाँ रत्ना जी नमस्ते।
0: नमस्ते श्यामा जी। आपका
1: श्रोताओं के भी नमस्ते।
0: हाँ जी,
1: तो मेरा ये कहना है कि आज कहाँ रिश्ता रहा। रिश्ता तो पानी की तरह बह गया है, धुल गया है।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो रिश्ते की अहमियत किसी को पता नहीं, बच्चों को पता नहीं। आज की दुनिया केवल अपने बल बूते पर टिकी है रत्ना जी। अपने अहंकार यानी अहम के आगे न बड़ों की लिहाज की जाती है, न मान आदर है। वह अहंकार में धीरे धीरे अपने रिश्ते को खो रहे हैं। जो हमारे बड़ों ने हमें दिया है कैसे उन्हें समझाए। अब तो केवल बदले की भावना में जीते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ, यह तेरा है, यह मेरा है, लेकिन कुछ लेकर हम नहीं जाएंगे। और बात कहाँ से शुरू होती है, घर परिवार से शुरू होती है। बच्चे कैसे कहेंगे कि ये पेड़ काट दो, यह पेड़ तेरा नहीं है, ये पेड़ हमारी जमीन में यानी कि पत्ते गिर रहे हैं या डाली गिर रही है। ये बात घर में होती है, आपस में होती है, शुरू होती है घर ही से। जब बड़ों बच्चों के सामने बात करते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो भी उत्तेजित होते हैं सुनकर ना। हाँ, वो भी उत्तेजित हो जाते हैं और ये समझते नहीं है, जाकर बड़ों से डिस्कस करते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा। हाँ हाँ, ये तेरा है, ये मेरा है, अपनी डाली काटो, आपके पत्ते हमारे यहाँ गिर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी ये हुआ है और होता है कि आपकी जो पेड़ की जो जड़ें हैं हमारी दीवार को हिला देगी।
0: सही बात। और आप हाँ। कई बार ऐसा भी होता है कि आज के समय में आप अगर उनसे मांग करें, भले अच्छे से भी बात करें, तभी हाँ। कई बार ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक अलग ही रुख लेता है जो बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है।
1: अब और एक बात कह दूं आपको, अगर नहीं कहूंगी तो ये मन में रह जाएगा। जो हमारे दीवार के समीप ही कुछ पालमिस का पेड़ है, जिसे कहते हैं खजूर ना, वो नहीं फलता है, लेकिन जितने उनकी जड़ें हैं वो हमारे हमारे घर के नीचे यानी वो जो है ना दीवार है ना, उसके नीचे नीचे से होकर हमारे घर के नीचे आ रहे हैं। जब मैंने कहा इसे काटना है तो पत्नी ने पति से जोड़ दिया, न किसान नुपिए, यानी आपका जो पेड़ है आप ओब्लाइज है काटने के लिए, वो नहीं काटेंगी। देखा आज की ये दुनिया है आपके मुंह पर।
0: कई बार ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रुख लेती है, बहुत हाँ, बड़ी तरह हाँ, से रिश्तों को खराब कर देती है।
1: हाँ,
0: और ये भी समझना जरूरी है कि कई बार पेड़ है, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि पेड़ भले ही हमारे आंगन में हो पर दूसरों के आंगन में जब ये जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। कहीं ना कहीं जैसे बता रहे हो कि कई बार झड़े इतनी ज्यादा हठीली हो जाती हैं और जिद्दी हो जाती है कि वो दीवार तक को तोड़ देती है, बहुत ज्यादा बुरी तरह से नुकसान करती है।
1: तो ये हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में दरार पड़े, तो हम चुप रहते हैं। आपको पता है सभी को चुप नहीं रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक छोटे से पेड़ के कारण, या कई बार ऐसा होता है कि पालतू जानवर के कारण कई बार पुलिस केस तक हो चुके हैं, कई घरों में ऐसा हुआ है। और ये एक बहुत ही बुरी तरीके से ये रुख लेता है। तो बिल्कुल कई बार हम कहते हैं ना कि एक समझदार नागरिक होने के नाते, एक समझदार पड़ोसी होने के नाते रिश्तों को हम अच्छे से संजो के रखें और किसी को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो, कोई नुकसान ना हो, इस बात का भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी हरकत या हमारी किसी भी कारण। कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पानी का जो बहना होता है, भले पानी हमारा है लेकिन किसी और के आंगन में जाके वहाँ गंदगी फैला रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी आज

0: के समाज में देखा गया है ये सारी चीजें भी बहुत बुरी तरह से
1: नहीं,
0: रोक लेते हैं।
1: वो पानी जो बहता है किसी के आंगन में जाकर उनकी जो ईंटें है ना खराब कर देती है,
0: ईंटें खराब करती है और कई बार होता है कि पानी बदबूदार हो या गंदा वाला पानी वहां पर बहता है तो हो सकता है कि पड़ोस के आंगन को गंदा कर रहा है। तो ये सारी चीजों को भी हमें समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और अगर मान लीजिए यही चीज उल्टी हो, उनका गंदा सा कोई चीज हमारे यहाँ बह रहा हो, उनकी उनके यहाँ की गंदगी हमारे यहाँ बह रही हो, तो ये हम कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। तो यही सारी छोटी छोटी चीजों का समझना और समझ बूझ के साथ परिवार को, मतलब कह सकते हैं कि रिश्तों को बनाए रखना, ये आजकल समाज में बहुत कम हो गया है।
1: हाँ, मैं ये कहूंगी कि बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ों को समझौता के साथ बातचीत करना चाहिए,
0: बात करनी चाहिए। हाँ,
1: बात करना चाहिए कि देखो आपकी डाली मेरे यहाँ आ गया है।
0: हाँ,
1: इसे निकाल दो।
0: हाँ, अच्छा, क्योंकि कई बार होता है
1: दिन आ गया है रत्ना अभी।
0: हाँ,
1: आप एक विषयों को खोजेंगे यानी कि पेड़ काटने वाले के खोजेंगे।
0: हाँ,
1: तो ये भी नहीं मिल रहा है,
0: बहुत ज्यादा
1: मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। और ऐसे हुआ है कि आपके आंगन में कितने तार है, जैसे कहते हैं बिजली के तार है, वो कैसे टीवी का तार है, तो ये सब डरावनी है। पेड़ काटने से पहले सब सोचना चाहिए ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा श्यामा जी। और ये सारी छोटी छोटी चीजों को मतलब हम जब ये सारी चीजों का सामना करते हैं तो समय के रहते उसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ना कि हम इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दे और कोई दुर्घटना हो जाए या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए। कोई नहीं चाहता कि उनके घर परिवार में कोई एक्सीडेंट हो। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि पेड़ सच में बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं और घने हो जाने के कारण डालियां इतनी ज्यादा फैल जाती हैं कि दूसरों के आंगन में वो बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा पैदा करती है, या फिर कहते हैं ना कि मच्छरों का जो ये है प्रॉब्लम होना बहुत शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी आपके विचारों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में आपने भी भाग लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहेंगे।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: हाँ जी, जी हाँ, आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। वैसे हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चिट्ठियाँ आती हैं, काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको हम आज के इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करने की कोशिश करते हैं। और जैसे यहाँ पर पड़ोस के साथ बने हुए या बिगड़े हुए रिश्तों के बारे में बात की गई, यहाँ पर एक और ऐसी प्यारी सी चिट्ठी आई है जहाँ पर भाइयों की बात हुई है। चलिए अगली चिट्ठी जो आई है इसमें आप लिखते हैं कि मुझे पिछले सप्ताह का आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था जहां पर आपने बड़ी बहन की बात की थी और बड़ी बहन को लेकर एक बहुत ही प्यारी सी चिट्ठी आपने पढ़ी थी जहां पर बड़ी बहन की जिम्मेदारी के साथ साथ आज के ज़माने को आपने जोड़ा था, जहां पर बड़ी बहन को कितनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। और यहां पर मैं बात जोड़ना चाहूँगा हमारे ही परिवार के बात, जहां पर मेरे बड़े भैया मेरे साथ बहुत ही बिल्कुल पिता के समान थे। और धीरे धीरे करते हुए जैसे जैसे हम बड़े होते गए, क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा समय ले रही हूँ क्योंकि मैं आपकी चिट्ठी को पढ़कर समझने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए तब तक एक गीत का ब्रेक लेते हैं, डेफिनेटली एक गीत का ब्रेक लेते हैं और चिट्ठी को जारी रखेंगे इस गीत के बाद।
2: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में. जी हाँ, इस वक्त 4:41 और यहाँ पर जो अगला पत्र आया है ये भी दो भाइयों के प्यार की भाषा बोलता है. और बिल्कुल यहाँ पर आपने बताया है कि आपके जो बड़े भैया हैं आप उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं और बिल्कुल वे पिता के समान हमेशा से हमारी देखभाल करते आए हैं. और साथ ही साथ आप ये भी लिखते हैं कि आप टोटल 5 भाई बहन हैं. सबसे बड़े हैं भैया, उसके बाद है आपकी बहन, उसके बाद आता है आपका नंबर और आपके बाद है और एक भाई और अंत में है एक बहन. हालांकि जैसे जैसे आप बड़े होते गए, कहते हैं ना कि दुनियादारी के साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारी चीज़ों को समझा. साथ ही साथ जैसे ही आगे फैमिली में एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई जहां पर बंटवारे की बात आई, बंटवारे के साथ साथ छोटे मोटे नोक झोंक झगड़े शुरू हो चुके. घर परिवार में कुछ ऐसा तनाव बना जहां पर बंटवारा तो हुआ पर बंटवारे ने साथ साथ रिश्तों के भी बंटवारे कर दिए. बड़े भाई ने कभी नहीं चाहा था कि इस समस्या के कारण घर में कोई भी तनाव बने, रिश्तों में कोई कड़वापन आए, पर छोटे भाई ने इस बात को बहुत ही बुरी तरह से उछाला. इसमें छोटी बहनों ने भी उसका साथ दिया और इसी कारण आज रिश्ते बहुत ही बुरी तरह से बिखर चुके हैं, बिगड़ चुके हैं. पिता के समान हमारे बड़े भैया. पर आज भी मैं उनका बहुत ही आदर सत्कार करता हूँ, बहुत ही उन्हें सम्मान देता हूँ. यहाँ तक कि उन्होंने अपने हिस्से का जो भी था वो अपने भाई बहनों में बांट देना ही उचित समझा. पिता के बाद सदैव वे ही हमारे साथ खड़े रहे हैं. हर समस्या में उन्होंने हमें कभी अकेला महसूस नहीं किया. पर जो हमारे छोटे भैया हैं, पढ़ लिख कर कुछ ऐसे ही बड़े साहब बन गए कि बड़े भाई का आदर सत्कार करना ही भूल गए. आपकी चिट्ठी मिली में मैं इतना ही शामिल कर पाया हूं. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. आज की ये चिट्ठी भी बहुत ही भाइयों में होने वाली अनबन के साथ साथ दो पहलू दिखाई दिए हैं कि कहीं एक ओर एक भाई है जो अपने बड़े भाई का इतना ज़्यादा सम्मान करता है और दूसरी ओर उसी माँ से जन्मे हुए छोटे बेटे की बात भी की गई है जहाँ पर छोटे बेटे ने अपने भाई तक को भुला दिया, अपने रिश्तों को भुला दिया. जहाँ पर बंटवारे की बात आई वहाँ पर रिश्ते पैसों से ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देने लगे और पैसों की जो खनक है, पैसों की जो ताकत है वो रिश्तों को कहीं ना कहीं हिला के रख देती है. आपकी चिट्ठी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी. हिम्मत चाहिए कई

बार ऐसे रिश्ते ऐसे सिचुएशन से गुजरने के लिए, क्योंकि आसान नहीं होता, जहां हम एक दूसरे के साथ हंस खेल कर बड़े हुए हैं, वहां एक दूसरे के दुश्मन बन जाना जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर।

श्रोताओं, इसी के साथ आज के ये सफर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन पर आप सुन रहे थे हमें, और इसी के साथ बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में 5 बजे के बाद आप सुनेंगे कलाकार के बाद। वैसे आज के इस कार्यक्रम को हम खुद जारी रखेंगे और आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, खालिद बंधु जी, राजा के नाम से जानते हैं, और उन्होंने कई सारे ऐसे गाने, कई सारे ऐसे एल्बम निकाले हैं, कई सारे लाजवाब गीतों को उन्होंने बिल्कुल आपके लिए बनाया है। तो आज के इस कार्यक्रम में अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे उनके साथ, तो आप हमारा साथ दीजिएगा ज़रूर 5 बजे से 6 बजे के अंतर्गत रेडियो मनोरंजन पर कलाकार के बाद। और आपकी चिट्ठी कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच एक और ऐसी लाजवाब चिट्ठी, एक और ऐसी भावनात्मक रिश्तों की बात को लेकर। तो चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति फिलहाल अभी के लिए। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: 94.6, 98.2। आप सुन रहे हैं ORM 3। कलाकार की बात, कार की बात।
1: शाम के बिल्कुल 5 बज गल बा और ये रेडियो मनोरंजन के लहरों पर कलाकार के बात कार्यक्रम में आप सब कोई के स्वागत बा।

0: हाय काम हाय कार्यक्रम भाई रोशन हर नाम द्वारा प्रस्तुत करल जाला हर सुख के दिन पर आज तरतना आप सब कोई के संगे जुड़ गल हवन हमर सब प्रेम नमस्कार स्वीकार कर ला जा अभी से लेके शाम के 6 बजे ले हम रहब आप सब कोई संगे और हाय कार्यक्रम में हमनी के स्थानीय कलाकार हमनी के साथ देवेलन जे एगो बहुत ही गर्व के बात है काहे के मोरिस के धरती पर ऐसन ऐसन स्थानीय कलाकार बाटे बोलबा त मोरिस के हीरा और आज एगो ऐसन हीरा आज हमनी के कार्यक्रम में आल हवन अब का बोला भाई जन भाई जी हवन हमर संगे उ ना केवल गीत सुनावेलन पर बहुत मेहनत के काम करेलन और सब कोई के मनोरंजन करेलन चला आज हमनी के कार्यक्रम में हमनी के संगे जुड़ गल हवन भाई खालिद बंधु राजा जेकरा सब कोई राजा के नाम से जाने लग जा तो चला आज के कार्यक्रम में स्वागत करब जा भाई राजा जी के तो भाई राजा आज हमनी के संगे जुड़ गल हवन कैसे हवा बोला तो
1: नमस्ते नमस्ते रत्ना जी
0: हाँ
1: नमस्ते हमारे गाँव के सब लोग जो हमारा सुनता जहाँ पर काम करीला
0: हाँ
1: और नमस्ते तुहर सब ऑडियंस के
0: बिल्कुल और आज के कार्यक्रम हैजा पर रेडियो मनोरंजन पर तू सुने सकत हवा और सबको इके जना देवत है हाई कार्यक्रम के टिकटॉक लाइव पर भी तू फॉलो करे सकबा और बिल्कुल आज के कार्यक्रम लाजवाब कार्यक्रम रही त भाई राजा आज के कार्यक्रम में हैजा पर तू आल हवा पहला तो हमनी के हई बताव कौन गाँव से तू हैजा पर आल हवा
1: हम पोदेलास्का गांव में रहिला पोदेलास्का लिनो में है रिवेज ग्रांप के आसपास
0: के आसपास में बिल्कुल और हौजा से है
1: छोटा सा गांव और जो इनको ढेर अपनी लोग गणेशा के नाम से
0: जाने लंचा हौजा पर पांच मुखी गणेश विराजमान हवन और मोरिस के मोरिस भर के कुमाजा जैसे बोल बजा टूरिस्टिक जगह हवा जहाँ पर पर्यटक लोग जाला पूजा करे लंसा और ये बहुत सुंदर गाँव है छोटा सन गाँव है पर बहुत सुंदर बहुत ही जोली गांव है तो भाई राजा आज हमनी के कार्यक्रम में तू उपस्थित होल हवा बहुत बहुत धन्यवाद तो पहला तो हम हये जाने खोजत हई मोरिस के धरती पर तू एगो भोजपुरी संगीतकार हवा भोजपुरी गीत में भोजपुरी गीत के साथ तू आगे बढ़ेला तो पहला तो हम हये पूछा भोजपुरी भाषा से तोहर लगाव कैसे बनल
1: हमार लगाव भोजपुरी भाषा से जब से पीती रही हमार माँ हमार संगे खाली भोजपुरी बचा तलक तो हमार लगाव जस्ती भोजपुरी हमार माँ संगे माजे मिलल बा पस के कारण तो माजे हम अपन माँ संगे जिले है तो जोन बात ओकर संगे बचाव तो खाली भोजपुरी में बचाव माँ हमार भात निकाल माँ
0: जैसे वो बोली वो उसे सीगल हवा सुन के
1: तो ओकरे संगे आगे हम के गांव में अपनी लोग बोलते हैं लाइक वाह की जो नहीं सकी बचाई खाली भोजपुरी ये बचाला
0: बाप रे मतलब पहला के सच्चे के जैसे और लेनो बगल में बहुत गांव हवन जैसे रिवे जो गांव ले ला गोसनुआ बगल ले ला गुडलैंड बगल ले ला तब कैसे शहर के आदमी लोग जस्ती किरियोली में बतियालन सा और गाँव के आदमी लोग बहुत भोजपुरी में खुशी रहलन बतियाई के तो ऐसे ने तोहरा भोजपुरी के लगाव शुरू होल तो भाई जी हम है ये पूछा पहला तो तोहर जो है संगीत के सफर है कैसे शुरुआत होल
1: हमर संगीत के सफर जो है आगे जब अथी लिखल जाते ली अपर सिक्स पर रही तब म्यूजिक दे रहा लिखल में तब बोली कहा नहीं मजे तेसुन पार ले ला तब हो मैं एगो अथी एगो ऑर्केस्ट्रा जो है वो लोग आ रहे मजे म्यूजिक दे करे तो जब परफॉर्मेंस दे ली तो ऑर्केस्ट्रा के जो है ओनर है वो हमारे बाप सामान इस्तीमे कही रहा मिसे सुदेश जुगावन वो लाल माछी के रहला
0: अच्छा।
1: तो वो हमरा बहुत पसंद कर ले रहा हौले पकवा तब हमरा बोला काहे ना तू आओ हम अभी हम संगे मजे लोकेश में ज्वाइन होब सा तो सुन गीत गाइए शादी में ही सब तो हम बोली चल हमारा माँ से पूछे के पास खाली हमार माँ तो आल घरे आल आल हमारा माँ से पूछलक फिर हम ईशो सब मांगलक तब जो अथी ज्वाइन ज्वाइन कर दे दी उन संगे गाय गए गीत मौसम में तेने सुन देरा तली तब को मजे फ्रिया सब चल गल बहुत जगह गई सर शादी में
0: कॉन्फिडेंस
1: डेवलप होल तब बॉलीवुड के खाली बॉलीवुड के गाना गाओ तेरी
0: अच्छा पहला तो शुरुआत खाली भोजपुरी नहीं रहल मतलब गीत में बॉलीवुड के सुन के सीख के
1: कहूँ पर नहीं गले मजे सीखे हमारे सीखले खाली ओकरे लगे

0: वो कैसे बोले थे जोड़ा हमारे बाप समान है बहुत ही सीमे का इलाज करा एक हमारे गोल मॉडल है सुरेश जुगावन
1: एगो गुरु नियर
0: एगो गुरु नियर हां
1: हां ता उसे जैसे उ सिखैलक ऐसे उ तू शुरुआत करलक
0: और सीमा में
1: ओकर सीमा में त जैसे भोजपुरी के संगीत में तू कैसे कदम दलन कैसे कैसे तोरा मन में बुझल कि भोजपुरी गीत भी गावब जाए एक दिन
0: हैला कुमाजिया कुमाजिया ए फिक कुमाजिया एगो 3 साल होलबा जोन हमर अति हमर लिस्पी में कुमाजिया कापार में घुमाय घूमत लग हां त हम बोलली उतना दिन से 2000 से अति लोकेश पे रहली बोली नहीं अब छा समझे करे कि कहीं ना एगो गीत कुमाजे हम ही एगो गीत सब कंपोजी करे एगो ओरिजिनल कुमाजे एक दिन है दुनिया में नहीं रहब तो एगो निशानी छोड़ के चल लब तो कहे ना कुमाजे एगो गीत हमरे खातिन सब कुमाजे करे तो ऐसने है लगाव जो नाल तब जाके अति इंस्पिरेशन जो है हाल कैसे है गीतवन के बोली लिख ली कैसे था एगो गीत लिखे के चाहते सुन ना म्यूजिक तनी सुन पियानो सीख ली कैसे पियानो बजाएंगे तब कुमाचे जाके इंस्पिरेशन हो के है बोली सब मिलल तब जाके है गोल गीत लिख ली तब हम हमर गीत में देखबे तो हमर मैडम बा हमर हमर लड़का लोग नचले बा हमर कामगार लोग बा और एगो खास हमनी जो हमारा एदे का लेबा है सिपो दे लेबा हमरा है गीत है गीतवा बनाए के ओकर नाम है हमर भाई ऋषि गंगलोल तो ऊ जब हम है गीतवा लिख देली खेल दे खेल लेली तने सुन हमर मैडम के सुनैली अच्छा बा ऊ त नहीं कोपोला भोजपुरी उतना पता तनी बहुत अच्छा बा तब बोली आतान कर कैसे भाई ऋषि के सुने गली भाई ऋषि हमारा पोता भी अच्छा बा पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव
1: अंकुराशी
0: कर लग तब लगता राजा तू आओ हम लगे भनाप सही गीतवा तब बोली ओके जाप सब पास पहला है ना लिस्ट में कुछ नहीं
1: बात समझ में नहीं बाकी कैसे रही
0: हाँ। तो बॉलीवुड के कितना गाना गईली बस हाई लाइक ओरिजिनलिटी रहल तब भाई किसी हमारा बहुत ही देखा बहुत ही देखा कब जाने रहे एगो गीत गाना बनाए के फिनोसो चाहेला ऐसन एदे कलक कोट कुमार कहाँ पर ऐसा एक घड़ी आल जोन अथी परल यहाँ पे करके वहाँ पे करके दिखा था भाई किसी अपन पोस्ट में से पैसा निकाल के कुमार जे जाता पे करे हम बोले हाई देख ओकर लेके आए हैं बहुत बहुत
1: बहुत बड़ा दिल, हाँ,
0: बहुत
1: सोना के दिल
0: सोना के दिल तो हाई सब कामगार जो है लोकेश में हम सके अथी ओकर सके रही एगो वैन से है कौन ऐसे तो हाई लामी छे जो रगल बा
1: उही तरह एदे कलन
0: बहुत बहुत
1: कैसे शुरुआत करे के तो भाई जी हैजा पर हैये बोलब जैसे तू पहला गीत लिखे के शुरू कलन तो कितना दिन में उ पारे होगल मतलब लिख के कितना दिन में पारे होगल एगो गीत
0: बहैला हैला हमर पहला गीत रहल
1: हां
0: तो हम गुनगुनाओ तली है गीतवा
1: हां हां
0: ऐसे बोलबे त जब से शुरू करली सा लिख दे गीतवा
1: हां हां
0: एगो एगो त्वासेमेन एनवा में हमर गीत
1: पारे होगल यानी हाई में अभी संगीत नहीं चढ़ाई ले हुआ खाली खाली मतलब गीत के बोल पारे
0: के बोल पारे होगल बस नहीं तब एगो गीत लिख दे बा तो ऐसे एगो अति आवेला जब गई भी तो ओकरा बोल भी नहीं हाई मोवा सोजे कर देला हाई यहाँ पर ही सोजे होगल बा
1: ओकर ओकर जोन राइमिंग मिलेला जैसे कनेक्शन चाहिए
0: कनेक्शन बस एगो फ्लो है ना एगो फ्लो है यहाँ से मजे हुआ ले जाइबे अब तोर गीत में मजे जनबे यहाँ से हुआ ले कैसे जाओ तो एगो फ्लो
1: चाहिला
0: नहीं मजे
1: हाँ एगो मीटर चाहिला एगो कैसे तू निमन से गीत गावत हवा तो चाहिला एगो कनेक्शन
0: होई के कुछ बोलत हवे गीतवा में कुछ खोजत हवे बोले के गीतवा में
1: हाँ तो है चाहिला मतलब मान ला एगो एक तीन समय एगो एक महीना ले हो कल और फिर जाके तू ओकर पे संगीत बिठाई लग तब जाके तू ऋषि भाई से जाके
0: ऋषि भाई वो संगीत बिठाई ले भाई में गीतवा में ओकर लामसिक ओकर
1: हाँ
0: हाँ वो है लामसिक डाले बा
1: और
0: जोन काम कर ले भाई गीतवा में हम बहुत सेटिस्फाई
1: हाँ हाँ और जैसे पहला गीत के बोल कौन रहल
0: हमी के गीत के बोल है हमी के एल्बम के नाम है थोड़ा जीले
1: हाँ
0: हाँ है ये बोल दे बता तोरा
1: हाँ हाँ है एगो बहुत
0: तनी सुन चाहे हमी के जीए के हर दिन के कुमाजे हर रोज के काम करी लासा हर रोज के हर दिन काम करी लासा लेंदी मगर बूट बीफे सु काम बैम सामदी के काम
1: हाँ
0: हाँ मैं कहा बोले खोज दी सर
1: हाँ हाँ
0: जैसे वीकेंड आवेला तो हमी के चाह तेरी सुन लेता हूँ निकाल के तेरी सुन जिए की
1: तनी सन रिपोजे करे के तनी सन लावी के एंजॉय करे
0: के हमी के कावागात के ज्वाइन करे के

0: continuous music. RM3.
1: कलाकार के बात और आज हमनी के संगे स्टूडियो में उपस्थित होल हवा ना मोरिस के एक वैसन कलाकार जब ब्यूरो में काम करे लंसा पर संगे संगे उनकरा बहुत शौक बा गीत गावे के और जैसे तू अभी सुनलन उनकर आवाज में रखल जीले जीले और हई जन गीत रहल सच्चे के थोड़ा जीला थोड़ा खुशियाली मनाला अपन परिवार संगे हई भी बहुत जरूरी है काहे के आज के जीवन में सब कोई व्यस्त हो जाला सब कोई काम के पाछे भागे लंसा और इस सच्चे के जब लेता नहीं मिलेला और जैसे भाई जी हमने के अभी बोलन थोड़ा देरी पहला कि जब तू 60 बरिस के हो जाइबा और तब तोरा मन में पड़ी कि तू कौन चीज गंवा देलक चला बात करब जा भाई राजा संगे और आज हमनी के स्टूडियो में उपस्थित होल हवन अभी थोड़ा घड़ी में तोरा सुनावब जा उनकर आवाज में उनकर एगो जोली सन लागिता उनले हवन हैजा पर उनकर आवाज में लाइव सुनब जा एगो बढ़िया संगीत तो भाई जी पहला तो आगे बढ़े के आगे हम हये जाने खोजत हई जब तू हई गीतवा शुरू कर लग लिखे के तो जैसे तू बोलन हई में कि जैसे ब्यूरो में जन काम करे लंस कारो में काम करे लंस जन जन लापेस करे लंस तो जितना जितना बोलबा कि जितना मोरिस में जितना सब काम करे लंस उनकरा सब कोई के याद करके तू हई गीत में उनकर एगो डेडिकेशन कर देलक तो कैसे तुहर मन में आल कि हई सब डाले के गीत में
2: अरे सबसे पहले हम मिशो उदय के एगो नमस्ते बोलिला
1: हाँ, रिवेज पोस्ट के हाँ, उदय जी हमने के संगे जुड़ गल हवन पॉइंट दे बिल्कुल रिवेज पोस्ट से उसा देवत हवन हमने के
2: तो हे गीतवा के बोली जोन है हाँ। कैसे है बोलीवान आर कारो में काम करेला बीरो में काम करेला और कैसे के बातों में काम करेला तो बीरो में तो बीरो के हे एग्जाम तो हम ही है हम ही बीरो में काम करेला हम एगो बैंक मैनेजर है ए हम गुडलैंड्स में काम करेला हम मोबैंक के बैंक मैनेजर है तो है दीदी वो आ कहे बीगो में कि हम देखबे वीडियो में हमरे देखबे अति अति पर एगो एक्टिंग करेंगे काम करते है ओकर पागल देखबे बीगो में काम करेला सर

0: लो तुम्हें जरा सा काम करे अब स्ट्रेसो में काम करा सा
1: बहुत
0: स्ट्रेस में काम
1: बहुत जस्ती बहुत जस्ती
0: तहई हमर में रहल बिगो तब बोली बातों में हमारे को चाचा बा चाचा लाला बुईला सोकरा चाचा दागी तो हर उसके जब हम लामिया बोल रही ला हर उसको देखी ला वो ज्यादा लापिस करे तो एक दिन को मजे हम गई ली संगे लापिस करे सीख ली कैसे लापिस करे ला काजे ला ले ला तो हई ली दे जो बातों ओकर संगाल बा बातों में काम करी ला काजे बनावीला है सब है जोन एस प्रकाशवाल ओकर संगाल
1: अच्छा
0: अब बोली तब बात बीगो हो गल बात हो गल तो कहे कहे कारो पास कारो में दादा दादी लोग काम कर रहे ना मामा संगे काम कर रहे कारो में
1: बिल्कुल
0: तब एगो कामगार रहल ओकरा बोली तू अइबे अथी कान करबे वीडियो में तो आल उ कान एगो कान कटलक
1: हां
0: कोई मजे के बात रहल एगो कान
1: नहीं और हई त जैसे कैसे बोलबो मोरिस के संस्कृति ह हई त जानत हवा हमर जितना बड़ा आदमी सब आल रहल उ आज ले काम करता और कितना पाल पोस के अपन लइकवन लोग के बड़ा कर लेलन सब
0: तब बोली कुछ करब सब तैयार बुतो भाई नहीं एगो कोनो कोई छोड़ दे रहे काम में सब कोई काम करेला हम काम करेला तू काम करेला सब कोई काम करेला हई बुतवा कुवे के दिली सौते वा लंबा लंबा हो गल और एगो के मैं सीमा हमरा चाला करे के मिश जोनाता हूँ बिस्राइल के वो हमें के बहुत सपोर्ट कर ले भाई गीतवा बनाई की
1: बिल्कुल है? और जितना स्पॉन्सर जरूर तू उनकरा भी एगो एगो
0: डेफिनेटली मोह वो बहुत एदे कर लेबा
1: हां हां
0: सिमा हमार मेन जोन हा वो ऋषि गंगलोल वो बहुत बहुत खुद में देले बाऊ
1: एगो एगो गाइड एगो एगो कैसे बोल बा मार्गदर्शन तो है कर ला
0: जोना तो हमरा बोलता गीत बात लंबा हो गलबा बहुत लंबा हो गल तसमो पर सब कोई के कुवे करे के जमे गीतवा के एगो फ्लो कैसे बोल दी एगो फ्लो
1: निमन रही
0: एगो निमन रही
1: हां हां और ओकरा एगो एगो मीनिंग बा गीत में जितना भी तू गईले हो जितना भी अंतरा बा उ सब में
0: एगो
1: मीनिंग बा हां और जोली जोली सन जैसे ओकरा ओकर एगो एगो स्टोरी नियर तू पारे कर ले हो
0: एगो स्टोरी और लामजी को जोन बाग मजे को लो ब्योंस में हम एक मजे चाहे ला हम कितने सुन जिए की
1: हां
0: जान ले काम करीला जब बीगो में तब सोची ला पागल एक हमर लिखजों पर हर रोज की जला काम करी लो तो मैं आई ला बीगो में स्ट्रेस रहेला चला थी अब जब शांति हो गल तो हमरा चला तनी सुन हमर खाती जिए की
1: तनी लेतो
0: निकाल हम कुछ करी ला शांति के दिन रख देला हमर फैमिली खातिर हमर मादाम हमर लड़का लोग संगे अब ले सो जो या जो हुआ जो
1: नाचे जालन सा
0: नाचे जालन सा सेमो जब दिमास के दिन आवेला हमार मैडम के बोली रहता है दिमास के दिन हमरा चाहते सुन जिए की हम खुशी रहेला तो सुन गीत गाए के पियानो खेले के और खुशी रहेला सोशलाइज हो के हमार कामकार लोग संगे पेतांग खेला सा कब कब काल अति बातो एगो बातो के एक मजे को गीत डाली रहा सा है तो हम खुशी रहा सही सब में एक मैं पॉजिटिव हुई
1: की
0: और सब मजे पॉपुलर व्यू हुई रहा हमने खुशी रहा मजे मजे अलग अलग अपन अपन नहीं खुशी
1: एगो सोशलाइज करे के है
0: गांव में जैसे बोलते गांव में हम मंदिर के प्रधान है हमें के छोटा सा गांव जो है हमें के आशुशासन जो है दीपक मंदिर नाम है तो वो बहुत दिन से कागतों से हमें के है आशुशासुआ बारा बारा अबनी जो है गाँव गाँव जुमुन तो लोग के गो इच्छा रहल मजा एगो बारा सुन मंदिर बनाए के
1: अच्छा
0: तो हम प्रधान ढुकली दिमिल जिजनेफ में तब बोलिए लोग के पॉजिटिव एटीट्यूड है बोली सकप से बनाई एगो एगो मंदिर काहे नहीं सकप से बनाई सब कोई बोलक सकप से अब हम बोलते कहा कैसी सब बोल रही सकप
1: से
0: भगवान के छो से काली शिवाला नहीं एगो बारा सुन शिवाला जो होल सब बा आज वो बन के तैयार हो गल बा खाली ओकर फिनिशिंग होता वो भोलेनाथ के छो से मजा हमें के स्पॉन्सर सब मिला था और हमें के सब मॉम जोन बा हमें के मॉम एक्टिव बा मॉम एग्जीक्यूटिव लोग काम करता तेगा में
1: अच्छा।
0: जैसे एगो मॉम बा हमार विस प्रेसिडेंट जो है एगो महिला है पूनम जगी और जो मॉम एक्टिव बाई गो वो ऋषि विशाम ओडी वो बहुत काम करता है अति है मंदिर में बनाई के तो हमें के एगो विजन रहल अब जनवरी हर कुछ एगो पूजा बा बहरिया पूजा बा दुर्गा पूजा बा तो हमें के पड़ा था पंडाल बनाई के अब पंडाल बनाई के पैसा लगे रहा कुत्ते होला एकरा दिखबे ओकरा दिखबे सेज तब बोली सर नहीं अब नहीं हम एक पंडाल नहीं बनाब सर अब यहाँ पर ही जो होई हई होला जितना बड़ा बा सकब से शादी सब

0: बनाई यहाँ पर ही,
1: यानी इतना जगह जगह बना दे ले हवा, गांव सब भर कुमाजे संगे संगे मिल के पूजा करे के उतना उतना त्राका नहीं बा उतना फैसिलिटी तू बना के थड़ा कर देगा। तो हाई एगो बहुत बड़ा कृपा है ऊपर वाला भगवान के, बहुत बड़ा कृपा है। तो भाई राजा हम हाइये जाने खोजत हई, अब तक जैसे तू बोल देले हव कि तू ब्यूरो में काम करेला, मंदिर के प्रधान हव, इतना जिम्मेदारी के काम है, तो तब तोरा रियाज करे के लिए तो कब मिलेला? बस कि हई एगो बड़ा चीज है, काहे के रियाज करे के तोरा चाहिला रोज एक घंटा दू घंटा रियाज करे के, काहे के जोन तोहर लावा है, लावा के तू नहीं सेवी करब तो नहीं नहीं हो सकी को मजा, लावा के तो रोज पड़ी तोरा एक्सरसाइज देवे के एक्सरसाइज कराए के, तो तोरा लेता हूँ कब मिलेला?
0: सच्चे बोले तो चाहला अथी है लावा के जो है चाहेला एगो लेता दे के ऊपर से वो हम बो हम तोरा बोला तो काई को सकबे हो ही नहीं, हम हर रोज के मजे एक मिनट नहीं बा तक कब गुनगुना दे।
1: अच्छा
0: मिस क्रिस्पो में हफ्ता गुनगुना देला, हां मैम दुखों में हफ्ता गुनगुना देला, बस एगो लेतो खोद देला इन एतो में एगो
1: सैंक्चुअरी
0: चलावेला गीतवा चलावेला, अब कुछ सुन मांगने मांगने कुछ सुन ले ली, अब परेला ओकरा गुनगुनाई के,
1: हां
0: हां बस ये दिमागवा में ऐसे उड़गल बा, एगो गीत सुने त चाहेला ओकरा गुनगुनाई के,
1: गुनगुनाई के, हां
0: हां लेतोवा नहीं मिलेला उतना
1: लेतो खोजे के पड़ेला, जैसे लेतो नहीं बा सेलमो लेतो खोजे के पड़ेला।
0: कैसे एगो चीज काम करत है एक मजा एगो निमन चीज होगल तब अब एगो मीटिंग करब त गीत गा दे,
1: अरे
0: एगो पासी हमर
1: मतलब काम पर भी तू तनीसन गुनगुना के हो जाला तोहर कमवा, हम समझत हई तोहर जितना स्टाफ रही उ तोहरा गीत गीत सुन सुन के कुमाजे खुशियाल, और अभी काम काम पर जो तोहर पर्सनालिटी है, तू तो एगो बैंक मैनेजर हो, बहुत एगो जिम्मेदारी के काम है, काहे के हौजा तोहरा पड़ी तोहर नीचे कितना लोग काम करत हो, अंत तोहरा चाहिए एगो तनी सही काम करे के, तो काम में भी तू ऐसे ने खुशियाली के साथ काम करेला कि बहुत बहुत जैसे सही काम करेला?
0: नहीं काम के जो है एगो लेता हूँ चाहेला को मजे सही रहेगी,
1: हाँ।
0: और एगो लेता हूँ को मजे चाहेला तनी सुन खुशहाली नहीं मचे स्टाफ लोग के
1: जोवियल
0: स्टाफ लोग के चाहेला तनी सुन जोवियल रखेगी,
1: हाँ हाँ।
0: अब एगो मीटिंग कर बे खाली सही रहे तो वो लोग बोली है कहाँ आ काम करे हम खुशी रहा जो हमारे स्टाफ लोग जाए काम करे बोले सर वो यस ए हमारा मन बा फजीर के उठ के
1: एगो प्रोडक्टिव बने के
0: हमरा हमरा मजे को मन बा फजीर के उठ के साख हाँ, लेके जाए हाँ, के काम करे हुआ पास की हुआ पड़ी ए
1: एगो ऐसा बॉस हा जे सबको एके निमन से अच्छे से रखे रन सर, और तोरा एगो लंबियांस रही काम करे के, एगो एगो अवी रही काम करे के, तो है चाहिला हम समझत है संगीत है एगो माध्यम ह जे तोरा हमेशा मूड तोहर हमेशा न्यूट्रल रखे लन सर, काहे
0: और हम ओलो के बोली ला से तू आज कैसे सुख ह,
1: हां
0: तो फजीर के जब मीटिंग गए जा ए सोचिफिया एंड बोफिगिया बस की सोची फोटे जी हैप्पी फ्राइडे तो वो लोग हंस दे वेला ना,
1: हां तनी खुशियाली के साथ
0: खुशहाली, हां आज सुख है तनी सुन
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वीकेंड को मजा हिया हम के नेक्स्ट स्टेप में बा
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आज त 7 दिन कैसे हाली से बीत जाला लेतो बहुत हाली हाली भागे लंस धोगे लंस, त जैसे आज के जो गीत के तू शुरुआत करलन भाई राजा हम बोले खजत हो, जैसे तू पेन नाम अपन पेन नेम रखले हो राजा, तो कैसे तोहर नाम में आल, कैसे तोहर दिमाग में आल ऐसे एगो पेन नेम खोजे के राजा?
0: बो हमार पेन नेम जो है यहू तो हमार माँ दे दे बा,
1: यानी राजा बेटा माँ के राजा बेटा
0: राजा बेटा जान दे ली हमार माँ के, हम हमार माँ के हम बहुत खुशी रहती हमार माँ के,
1: हाँ
0: बस की हमार जिंदगी के सबसे आधा आधा हिस्सा हमार माँ संगे बीतल बा, हमार माँ के हम पीएचडी कर ली दिमिल पेंडी में कोविड के अथी
1: समय में,
0: तो हमार माँ हमार हमार खातिर बहुत खुश चल देबा, हम भाभी ले याद करी ला हम पीती रही कातियम में जब हमार हमार बाप अथी गुजर गल, तो फासिल ने रहल हम हमार बहिन हमार सीते सुन मारा बा, तो हम खिला भी फासिल नहीं रहा हम जाते हैं तोन पर हौले पोकवा हम लेकुल जाते ली पहरे के मन करते लग, तो हमार माँ कारों में काम करते लग पहुँचो मिले तलक हाउ पहुँचो याद भाभी दे मिल देसो का तो वहीं से मिला तलक, हमारा याद बा जब लिसो रे वतली फोम सैक लोअर सिक्स अपर सिक्स हाउ पैसवा लेके पहुँचवा के कैसे मिलेला हमार माँ हमारे हाथ में दे के बोला जो है लेके तू लिसो पे कर, हाउ अब हबी हबी जब सोची ला हई बतवन तक मजे आँख में आंसू आ जाविला और हौले फुकवा हम मजे तेसुन रिस्पॉन्सिबिलिटी रही हम बोली नहीं हमारा माँ इतना करता हमारे खातिन तो हमारा चाहेला कुछ करेगी चाहेला कुछ करेगी तब हबी जे देखा तो हम मजे को बैंक मैनेजर है मंदिर के प्रधान है तो हम जब बोले ना सब अपनी के पीछे वो औरत के हाथ बा तो हमार जिंदगी में हमार माँ हमार माँ
1: माँ के हाथ सबसे बड़ा
0: सबसे बड़ा उन्हें रहता हम यहाँ पर नहीं रहती
1: सच्चे के और उनकर जितना सैक्रिफाइस उनकर जितना वो करलन तोहर खातिन त्याग तपस्या जितना करलन वो आज ओकर आशीर्वाद के रूप में तोहरा मिला था जैसे तू आज जीवन में आगे बढ़त हुआ
0: एक बात आजुते कर अब सब भाई मजे मेमो में रगल बा
1: सच्चे के
0: आलिपोक जब लोअर सिक्स है लोअर सिक्स अपर कर दिली तो उले पोकवा हमें के घर में कुआं ने कुछ नहीं रहा हम लाबूजी से पढ़ लई लाबूजी रात की हमारा बताए तय कर दे लाबूजी वाह हमार आँख से नहीं लौकी जाने ना आगे बात इतना इतना अति देर से नहीं पहर हमार आँख से नहीं लौकी
1: जैसे आँख खराब हो जाए
0: हाँ वो एक अति बोली रहा
1: पहला के समय में हाँ
0: हाँ तो ऐसा अति से गुजर के एक मजे आज कृषि हो एक मजे एगो
1: एगो सैटिस्फैक्शन एगो कैसे बोलबा एगो संतोष मिलल कि जोन भी रहल माँ जितना उतना त्याग करलन तोहर खातिन जितना सैक्रिफिस करलन आज और तू कैसे बोलबा तोहरा मिलता है आशीर्वाद के रूप में कि आज तोहर जीवन जितना बा वो नीमन सीमा में चल जाता और जैसे आज के समय में फासिल नहीं है जैसे पाछे देख जब मुड़ के तू देखबा कि कैसे तू है सीढ़ी सब चढ़ के है जा पर पहुँचलन आसान नहीं रहल
0: और एक और पीछे एक एक गो हाथ रहल हमार माँ के
1: तो आज माँ के आशीर्वाद से तू हैजा पर चलाल हुआ और जीवन में तू प्रगति करत हुआ है ये चाहिला और आज आज ले अभी ले तोहर माँ के आशीर्वाद से ही तू आगे बढ़ ले जात हुआ तो जरूर आज हमनी के संगे भाई खालिद बंधु राजा यानी भाई राजा हमनी के संगे जुड़ गल हवन और जरूर भाई राजा के आवाज में सुनब जा एगो बढ़िया हिंदी गीत काहे के वो हमनी के संगे हैजा पर लागित लेके आल हुआ तो भाई जी हमनी के तनी सन सुना द तोहर आवाज में
0: सुनाई के आगे हाई लागी तवा के को कहानी बो सुना दीला
1: काहे नहीं
0: तो हम गीत गावत अली सगरो कहूं जब अति काम में तो जब एगो गेट टुगेदर हल तो सब बुश लोग मजे ज्वाइन होत अली सा हमर कोलेग लोग तब हुआ परी खालिद कौन सा होती खालिद एगो गीत गा दे तो गावत अली तो एक दिन हमार एगो बिग बॉस चुन रहल उनका नाम है मिशेल विनी तो उकरा देखत एक पाछे उ लागित होले के गीत गावता तो उकर संगे पाछे एगो एस्पिरेशन मिलल हमरा हम बोली हम इतना दिन से लोकेस में काम कर अति गीत गावत है कबुक माजे नहीं सोचले के माजे लागित होले के माजे को गीत गा हां हां तो है एस्पिरेशन वा ए उकर संगे हमरा मिलल हम बोली नहीं हम हमरा मन लागित बजाएगी हम सकब करी तब के किनलक लागित हमर खातिन बोल ल तू
1: सोचत है के किनले होई भाई ऋषि या नहीं, फिर
0: नहीं।
1: या
0: अभी,
1: फिर
0: अभी तक ओकर नाम नहीं ले रहे है घरे जाक तक मार खा
1: अरे बाप रे यानी के किनले हवन तोहर पत्नी अरे वाह यानी है तोहरा एगो सबसे बड़ा कादो देले हवन
0: दाविना लक्ष्मण दाविना बंधु अब छा बोले के हां हां तो ऊ बोलक को एक बात तू खोजत एक माचे को लागी तो हम किनब तोर खातिन
1: चल हां हां
0: तीन के देलक कोई से नहीं सिखले है जानी ला थोड़ा बहुत बचाई उतना ही एक्सप्लेन है तो तब से मजे यूट्यूब में देख के
1: सुन के एगो जहाँ हिंदी में बोलल जाला ना जहाँ चाह है वहाँ राह है जे सीखे के मन करी वो जैसे तैसे कहूँ से भी देख के भी वो सीख जाए तो आज हमने के मौका मिलल बा भाई राजा के यहाँ पर साक्षात देखे के और जैसे वो बोला था कि वो सीखले नहीं हो तो देखब सा कि वो कैसे बजावता तो चला सुनब जा कि वो कैसे बजावता कैसे सुनावता हमने के लाइव आज लाइव एंड डायरेक्ट भाई राजा हमने के संगे जुड़ गल हवन कलाकार के बात कार्यक्रम में तो चला सुनब जा भाई राजा के लाइव एंड डायरेक्ट

0: बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब और बिल्कुल बहुत बहुत मज़ेदार गीत भाई राजा के आवाज़ में। और भाई राजा आज के कार्यक्रम में बिल्कुल हई जोन लागी तो तू बजावत हवा, बहुत सुरीला, बहुत मज़ेदार और बिल्कुल जे तोहरा कबो हईजा पर बहुत कोई सुने के, बहुत कोई खुशी रहे लनसे सीखे के। और जीवन में आज तक जैसे बोलबा पहला के जमाना में उतना इंस्टीट्यूशन नहीं रहल सीखे के, पर आज तक ढेर कोई जगह पर हमनी के सीखे के मौका मिलेला। और जैसे तू बोलत हवा हई हमनी के हई बताओ भाई खालिद, जैसे तू संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़न तो संगीत जैसे जीवन के स्ट्रेस कम करे में तोहरा कितना मदद करेला?
1: एगो कहा बा जब लिखल जाते ली अति एगो मोती कुमार जी, म्यूजिक इज एन आर्ट ऑफ लिविंग, यही सब चीज बोल देवेला। तो हमारे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन अलबा सब ने सकब सुना यहाँ पर ही सेमा हाई जोन म्यूजिक से हमारा लगाव बा म्यूजिक संगे तो यही को मजा हमरा ईदी का लेबा है सब ओवरपास करेगी
0: है सब जो में से है सब दुख में से बाहर निकले की
1: हां नेपुर कोनो दुख में रहली हम दुख में रहब सुख में रहब हम हमरा चाला को गीत गाएगी हमरा चाला म्यूजिक से जुड़ के हमर घर में तीन गो पियानो बा अभी हमारा मैडम बोला था तो तू जाने के बजाई तो लेकिन के कब सिखेबी लेकिन के तलब से सीखे के बोल जाना कर बताएला कितना एक सेवन होल सारे गम्पा बजावत हुन्छ बस लिख दिली ना लोग जाने था और खमर लिखा हुन्छ ना चेंजियन
0: और जैसे वो कैसे बोलबा कि घर में कोई रही जे संगीत के क्षेत्र में बा त लइकन ऑटोमेटिक म ओकर तरफ ओकर जोन झुकाव ह अपने आप हो जाला
1: अपने आप।
0: हाँ और जैसे आज के समय में भाई राजा हम पूछे खोजत हई जैसे आज त ढेर कोई पहला के जमाना में कैसा रहल कि उतना रिसोर्स नहीं रहल, उतना सीमा नहीं रहल, और पर फिर भी लइकन पहला के लइकन और आज के लइकन में बहुत जमीन आसमान के फर्क है। आज त बहुत बहुत तू देखब कला के क्षेत्र में जितना उवेचिया बा, जितना सीमा बनले बा, तो आज के समय के जो लइका है उतना बहुत कोई लइकन खुशी रहेलन सा संगीत में, बहुत कोई लइकन खुशी रहेलन सा आत बगल में। तो जैसे तोहर लइकन है तीन गो छोटा छोटा बेटी और जैसे तू हमनी के बोलन हमनी के हम देखले हई ओकरा जन हई जन एल्बम रहल तोहर थोड़ा जीले हई में तोहर तीन गो बेटी बाते, तो तीन गो बेटी के तू कैसे ओकरा प्रेरित कर, कैसे ओकरा आज के समय में उ खुशी रहेलन से सीखे के हई म्यूजिक में?
1: तो जैसे सुधा रहल हमार हमार बड़ा बेटी के नाम बा नयाना बंडू, सेगो के नाम बा लैना बंडू, और त्वाजम के नाम बा तिहाना बंडू, हमारे गो बिताओ बा बड़ा विंडिश बंडू। तो नयाना जोन है वो छोटा से हमार मराम दल बा नाचे के नाची जाए के
0: डांस
1: सीखे के तो वो खुशी था नाचे के वो कुमार जी को लड़का पोपी लिया है वो सबसे खुशी था बचाई की दादी लोग संगे नानी लोग संगे खूब खुशी दिला कुमार जी मिलजुल के बचाई के रहे के। तो अथी कैसे बा कैसे नाम बा तो ओकरा हिंदी वो पढ़ाएला सा कीर्तन में जाला सुने लन सा हिंदी में वहाँ पर पूजा सब होला खावन सब होला तो वो लोग सब पूजा रहला गांव में तो सगरो लेके कहाँ पर हम जाला तो वो लोगों के संगे संगे तो वो लोग के सुन के सीख जालन सा
0: तब मतलब संगे संगे रह के और लइकन कैसे हाँ।
1: कैसे बोला हिंदी गल सीखे हिंदी से आके बोला था पापा से गुआ लेना माँ दूध देती है माँ खाना देती है हाँ। बाप रे बाप
0: हाई तक एगो सीख के सुन के सीख गल तो सच्चे के लइकन जोन है वो देख के सुन के ऑब्जर्व करके हाली से सीख जाला। तो भाई राजा तोहर एक्सपीरियंस में हाँ बोला बोला
1: तो जब हम हमरा सुनावा था माँ दूध देती है खाना देती है हाँ। हम बोली हाँ ये हमारी पापा जी घूस देता है

0: आते देता है
1: हां काहे के पापा के भी तो कंट्रीब्यूशन बा
0: बहुत जीवस बहुत खुशी थैला तो मेरी पापा जीवस देता है ना
1: हां कास नहीं वादा पापा कास नहीं वादा जीवस किने के गातो किने के तो सच है कि आज के समय में जितना माता-पिता लोग और जैसे आज के समय चल ले आवता जैसे बहुत को लइकवन के मार्गदर्शन करे के बहुत जरूरी है भाई राजा तू कौन ची बोलबा हाई पे काहे के जैसे बहुत लइकवन लोग आज मार्गदर्शन से भटक गल होवन कई काहे के कब वो लाइकवन जैसे जैसे बड़ा हुआ था और तू तो एगो मंदिर के प्रधान भी हुआ संगे संगे लाभों के मैनेजर हुआ तो हाई पे तू कौन ची बोल बा
0: नहीं जाने दे आजकल के लड़का के और जो हमिक के जनरेशन रहा बहुत डिफरेंस बा
1: हाँ
0: लाभों को मैं देख भी तो आज नवा नवा जवान को मजे ज्वाइन
1: काम
0: करते हैं सा तो वो लोग के माइंडसेट वो लोग के लैटिट्यूड पारी नहीं है बहुत डिफरेंस बा और जाने दे कैसे हाई जमाना में माँ बाप सब काम करे रहें सर तो हाई स्वीवी बहुत है पोता हो तो हाई ये मैं हाई सब जिन जो होता कुमाजी माँ बाप वो लोग की तो नहीं दे होते पास वो लोग के पता काम करे के पैसा आने के घर चलाए
1: के सब कुछ तो देवे के
0: हम हमर ओपिनियन में कुमाजी माँ बाप नहीं सकलन सक मजे वो लोग के लड़का के लिमन से स्वीवी करी जो हाई स्वीवी वा रहत तो मजे लेकिन मजे जाने हमी के लिपोक में तुम्हारे गो एमिशन सुन तली आगे आय की अक्ति आगे के लिपोक में हमी के पड़ा तरह संजा करे के आगे पूजा करे के तब कुमाचे हम के खाई के मिले ऐसे नहीं और सीमा में चलते हुए एगो चाचा लोगल ओकरा नमस्ते नहीं बोले
1: प्रणाम बोल बा
0: प्रणाम नहीं बोले घरे चलेली और मेसा चलाल बाप लगे जाने को प्रॉब्लम हो कितना मार लगी
1: हाँ काहे के पहला गांव के आदमी लोग जितना बड़ा आदमी रहल सब कोई के प्रणाम करे
0: हबी के लड़का लोग नहीं
1: नहीं खोजे
0: हबी के लड़का लोग माँ बाप के बोले ला वाह चिताई कर सा हाँ कि नहीं
1: हाँ
0: ऐसा बोला तो हम हमारे ओपिनियन में कैसे बताए कैसे कि हम हबी हमार हम और हमारा मैडम हम के लड़का के तीन गो पीती जोन बा वो लोग को ऐसे स्वीवी और हिंदी बिला दे सा वो लोग के कुमाजे तुल तो बिजी रखिला सर कुमाजे वो लोग के लिप नहीं छोड़ सर और हम कुमाजे हम चाहे छोड़े ले कोल हम हमारा जाके वो लोग के आंदे बेला
1: एगो कम्युनिकेशन
0: कम्युनिकेशन जरूरी है और उस सांस के भक्त से तू कुमाजे एगो लेता खोज के वो लोग संगे बैठ के तंसुन चाला खाई की हमी के है दिनवा जोन है वो लोग संगे चाला ले के खाई की नहीं नहीं बोल कुमाजे वो हुआ पर ही खाता वो हुआ पर ही खाता नहीं
1: जरूरी है कि अपन लाइक वन खातीन एको तनी सन लेतो निकाले के और जैसे आज कलाकार के बात पे आज हम बात कर रहे था ही संगीत के विषय पर और जैसे तू संगीत के साथ जुड़ल हुआ और चाहत हुआ लाइक वन लोग के भी संगीत के द्वारा आगे बढ़े के तो भाई जी हमने के हाई बताओ जैसे अभी तू बोला था सामदी चलाल बा और जैसे सप्ताह भर तू काम करत हुआ तो संगीत तोहरा कैसे एगो सोशल तोहर बैटरी जो कैसे चार्ज करे लंसर संगीत के माध्यम से तू कैसे सब कुछ भुला जाइब कैसे और जैसे कितना लोग बहुत कोई स्ट्रेस में गुजरा लंसा सब कोई आजकल बहुत काम करे लंसा बहुत थक जाला तो कैसे एगो संगीत जब तू सुनब तो कैसे तोहर सोशल बैटरी जोन है तोहर मोरल बैटरी है वो कैसे चार्ज हो जाला
0: कैसे हम तो शुरू से बोले है
1: हाँ
0: हम कैसे एगो गीत सुनी लाख मजे गीतवा हमरा फाचगे करे लाख मजे अति हमर कपार में चाहेला ते सुन गुनगुनाए के चाहेला ते सुन गाए के हम सखेला घरे है सामदी के दिन कैसे बोले तो हम हमारा कुछ करता अब ओकर में एगो गीत निकाल ले हाँ
1: हाँ
0: कहाँ पर जब सामने के दिन दिमाग के दिन हमारे लागित
1: और कबो ऐसा होल बा भाई राजा की मान ला भी तू कौन सी काम करत हुआ मान ला कौन जी गई करत हुआ एगो गीत तोहर मन में चलाल एगो पागल तोहर मन में चलाल तो हाली हाली तू कैसे ओकरा नोते करेला
0: दिमाग में पड़ा रखे के पास पोता मैंने सब एक मजे से भी करे
1: कबो कबो ऐसा होल बा भाई राजा की मान ला एगो
0: गीत चला बा परेला परेला आगे ते हुई के परेला हाली से ओकरा म्यूजिक की कोड में रिकॉर्ड करे के पास के धुन है
1: उछल जाला
0: पास हम जब पियानो लगे बैठब तो हमरा चला वो धुनवा चल जाला तब पकड़ लेला धुनवा के परेला आगे ते हुई के म्यूजिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके
1: तब जाके मतलब वो सीना ऐसा भी होल बा

0: कि एगो चीज दिमाग में आल बा कुछ क्षण खातिन, कुछ पल खातिन, और फिर उचल जाला, फिर उसे याद नहीं
1: आवेला, नहीं आवेला, बस कि हवे के बोलल जाला इंस्पिरेशन। कुमाए कुछ कुछ देख के कुमा जाए ऊंचा लाल,
0: हाँ
1: वो फिर से नहीं आई,
0: फिर से नहीं आई, हाँ सच है,
1: फिर से नहीं आई, हम हाँ। हाउल पे हमारे संगे से, हाँ
0: तो मतलब हाली से परेला उही घड़ी में तोरा चाहिला एगो पापिये या एगो रिकॉर्डर, जैसे आज तो पोता बा
1: तो
0: रिकॉर्ड करला हाली से,
1: पापिये में लिख भी तो वो नहीं आई, बस वो धुन है,
0: धुन है सच है के, चलिए
1: धुन चाहला धुन,
0: हाँ
1: अब धुन ऐसे नहीं आवेला, वो बोली संग आवेला, फिर हाँ। तो बोली रही गीत के बोली रही तो हो गीत के बोलीवा लेकर
0: फ्लो चल आवेला,
1: गीतवा के बोलीवा चाहला पियानो में बजाई की, तब वो एगो फ्लो हो तब वो धुन बनी। पियानो में खाली सात गुनो था ना, सारी गमा म
0: सारी
1: से कितना गीत होलबा,
0: शुरू होलबा
1: बोली से सुर बनेला,
0: सचे के और कबो ऐसन होलबा भाई राजा, मान ला भी तू हिंदी भी गीत गावेला तो कबो ऐसन होलबा कि तू एगो गीत सुन ले ले हवा तनी जिफिसिल हवा, गीत वा तनी जिफिसिल बा, तो कैसे तू सुन के कैसे सीखेला?
1: जाने ले आज के समाना की गीत सब जिफिसिल बा, आगे के गीत हम पीती से कुमार जब औसे औसे सोते बहुत खुशी रहिला हम,
0: पुराना गीत,
1: पुराना गीत हम बहुत खुशी रहिला, कोई बोली है कि मजे इतना ते सुन जैन बाऊ पुराना गीत गावता नहीं, हम बहुत खुशी रहिला पुराना गीत। आजकल के जमाना के गीत मजे खाली रामजी जस्ती जस्ती रामजी बाऊ
0: पहला के पाहोल जो
1: पाहोल जोन रहल ओ कोफो मिलता कौन सी गावत हुई
0: ओकर जोन धुन रहल ओकर जोन पागल रहल ओ दूसर कलिते
1: रहल, दूसर कलिते रहल।
0: तो भाई भाई जी हम पूछे खोजत हई पहिला के जमाना में तो कितना जोली जोली कितना अच्छा अच्छा सुरीला, जैसे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, मन्ना डे, बहुत कलाकार रहल, तो तोहर सबसे प्रिय सबसे फेवरेट तोहर कौन कलाकार रहल?
1: हमर नाम सुनले हई मुकेश जी, मुकेश जी के मोहम्मद रफी है सब के गीत सुनले हई, याद नहीं बा हमी को के गीत समय से बहुत गीत में मुकेश और
0: किशोर कुमार भी,
1: किशोर कुमार
0: हां, तो तोरा कोनो पुराना गीत अभी याद चलावा था?
1: ए बहुत सुन गीत बा, ए सकपे को सुना दे
0: चला,
1: ए
0: कोनो भी जो तोहर मन में पहला आवत
1: है, हमर मन में हमर एको गीत रहल, हमर बाप खुशी रहल आलेपुक में,
0: हां हां
1: गीतवा के बोली रहल, सुना रही ला गीतवा?
0: हाँ जरूर काहे नहीं
1: लागीतवा से देखी सॉप है,
0: हाँ हाँ।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। खाइए बुतवा चाहिला,
0: और पुराना बहुत पुराना गीत
1: था,
0: बहुत पुराना गीत, श्री 420 फिल्म से लेवल गईल, बहुत ही मजेदार, और इसमें तो राज कपूर साहब खुद काम करले रहलन, और मुकेश साहब है फिल्म में संगे ओकरा आवाज देले रहल, और बहुत एक लाजवाब, और पहला के जमाना में जोन गीत रहल वो गीत आज भी जब लोग सुनेलन स तो आज भी दिल बहुत खुश हो जाला।
1: और एगो गीत रहल है हमर बाप खुशी रहल,
0: हाँ हाँ,
1: दम दम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, दम दम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपका सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपका सुभान अल्लाह।
0: ओहो बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। तो भाई जी हमने के हाई बतावा जब पहला हल्ला जाए हाई जोन गीत, अभी थोड़ा घड़ी पहला जोन भोजपुरी गीत हम चलैनी, हाई गीत जब शुरू जब जब लॉन्च होल, जब लोगों लोगन सुनलन है गीतवा, तोहर जोन परिवार सब सुनलन, और जब तोहरा मिलल रिव्यूज, जब लोग तोरा टेलीफोने करके बोलन भाई राजा का गीत बनैले बा, तोरा याद बा वो अनुभव कैसे, तोहरा कैसे बुझाल जब गीत के तोहरा रिव्यू मिले के शुरू हो गल?
1: रिव्यू से आगे मजे एक बात को मजे हमारे मन में बा, हमरा चाहला बहुत धन्यवाद करे के हमारे गो भाई जी बा माहेन मोनिक, वो जिगते शाही उतो जोन कोयराची में बा माहेन मोनिक, तो वो भाई जी हमरा स्पॉन्सर कर ले भाई गीत आगे मजे, जब बोली हमरा खाली से जब बोलेला राजाओ बोलेला कुछ करत हुई बोली भाई जी जानते थे एगो गीत अच्छा लाल बा मन में बना बनाओ तैसा, तू थका नहीं कर कितना भी जाओ खाली बोल तू हमरा,

0: तो ओकरा हम बहुत धन्यवाद करै छी बस ओकर सिपो से माझे गीता बनल
1: एक बड़का योगदान मिलल हां
0: बहुत योगदान तो अब जब रिव्यू के बारे जब गीता बना देली सर कैसे बोलते रही हमर भाई ऋषि जोन ह उक मौसम हमरा बोला पॉजिटिव पॉजिटिव जब उ बना लेला के को गीतवा त खाली हमर और ओकर बीच में रह गीतवा त एक दिन उ का करलक एगो वाजे के सुनैलक वाजे बताई का बना लेले से तो लोग बहुत अच्छा बा तब उस ऋषि सुनने करके बता हमरा ए गाजा गीतवा बहुत अच्छा बा हाली से रिकॉर्डिंग करी सा हाली से सब होल तब जब रिव्यूज आए लगल हमर परिवार देने से हमर बिल में हमर बोपे हमर
1: बोपे
0: हमर संगत्या लोग तो सब कोई को माजिए फेसबुक में संगत्या काम में संगत्या सब कोई बोलता ए गीतवा बहुत अच्छा बा बहुत जोरी बा तो गीतवा दिमिल वेनकाट में निकल ले सर उक्तोब दिमिल वेनकाट में तो एक प्रोग्राम रहल तो लोग तो ही कर दिले प्रोग्राम वा भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का में
0: तो अच्छा दिन ले फोमिया रहल हमें के गीत हौले कुकवा दिमिल वेनकाट में तो बहुत खुशी रही सर जितना की व्यूज मिलल तो अभी हमके जो नेक्स्ट प्रोग्राम है तो बोल सर काहे नहीं मजे को दिजम भोजपुरी गीत निकाल सर हाई हाई बरिस वाह
1: तो जैसे देसी दे होल जैसे हाई भाई बरिस निकाले के गीतवा
0: गीतवा बना रही है गीतवा के बोली और धुन सब हो गलवा खाली म्यूजिक
1: डाले के बाद
0: हाँ भाई किसी वो
1: काम करता
0: काम करता
1: काम करता अच्छा और हाई और हाई बरिस में वो लॉन्च हुई
0: हाई बरिस में वो लॉन्च हुई
1: अच्छा तनिसन गावे के गईबा तनिसन गईबा
0: गाप से मसूर में नहीं गाप पास गीतवा
1: अभी सुर नहीं अभी चढ़ल
0: सुर सब बा समो नहीं सकब सुरवा
1: बोले के तनिसन ओकर जो लिरिक्स हा तू बोले सकब
0: अभी देखबे त अति हमर कमाडो के देखत है ढेर कोई भोजपुरी गीत निकालत हन सर हां
1: हां
0: त ओ लोग के गीत जोन हा तनिसन उसने में बा हमर गीत के बोली बा कि हम गांव में रहिला गांव में रहिला सेमो काम हम खेत में करिला गांव में रहिला काम हम खेत में करिला
1: हां
0: मां बाप के बोली कबो नहीं तालीला
1: बहुत बहुत गहरा बात है
0: सब कोई बेला शहर में रहिला गांव के छोकरी कुसी रहिला नहीं हम गांव में रहिला चचे के गांव में रहिला
1: गांव में
0: रहिला काम हम खेत पे करिला यहां पर भीरो में काम करिला खेत में काम करिला मां बाप के बोली कबो नहीं तालीला हमर गीत के बोल ऐसे को मौसम होई
1: हाय ये होला हां
0: समय को बहुत मजेदार गीत रही
1: हां
0: हां हई ओकर को मौसम ह मैं जब और अंतरा में जईबे तो उ कैसे को फिल्म के गाना बा देखबे तो बहुत जोरी बा हम भी किसी के बोल रहे हम भाई गीतवा के बहुत खुशी रही रहा
1: और हाई गीत कब ले लॉन्च हो जाए भाई जी
0: हाई गीतवा के जिसो एगो 2 महीना चाहला
1: अच्छा अभी काम कर
0: अभी काम कर से बस लेता हूं एगो देखो कैसे काम किया सर एगो डेफो हा लेता तो हई गीतवा के बोली चुन हा ओकर अंतरा चुन हा बहुत खुशी रहा
1: चलो एस्पेरे करब कि जब वो गीत लॉन्च हो जाए जरूर हमनी के एमबीसी रेडियो पर हई गीत जरूर हम खुशी खुशी चलावब जा
0: और हई
1: एगो बहुत बड़ा चीज है कि हमनी के जितना स्थानीय कलाकार होवन जितना भी स्थानीय कलाकार आज ले कलाकार के बात कार्यक्रम के माध्यम से हम तोहर कार्यक्रम तोहर आवाज मुरिस भर में चल जाला और जितना हमने के सुने लंस जितना श्रोता लोग सुने लंस हई एगो बहुत बड़ा मान के बात है कि हमर जितना भी स्थानीय कलाकार जैसे तू बोलत हवा हम सचे के महसूस करे सकत हई कि एगो गीत बनावे में बहुत मेहनत लगेला बहुत पैसा लगेला बहुत सहयोग लगेला और सहयोग के बाद भी जब गीत चलावेला और जितना ऑडियंस लोग तक जितना है गीतवा पहुँचेला सपोर्ट चाहिला काहे के कलाकार खोजे लंस एगो सपोर्ट एगो लोंकुआजमा लोजियोंस के लोंकुआजमा और ई जरूर आज कलाकार के बात में भाई राजा खालिद बंधु हमनी के संगे जुड़ल रहल और भाई खालिद हैजा पर तू कोई के शुक्रिया अदा करब कोई के धन्यवाद करब आज के कार्यक्रम के माध्यम से काहे के हम समझत हई तोहर जितना टीम ह खाली एक जन नहीं जितना टीम हवन जितना संगीतकार हवन जितना म्यूजिशियन हवन तोहर पत्नी तोहर लैकवन तोहर परिवार के सहयोग से आज तू हैजा पर पहुंचले हव तो कोई के नाम जोड़ब आज के कार्यक्रम में
0: कैसे बहुत बहुत कोई के नाम ले रहे हई फिर से हम बोलीला

0: हमारे बाप के हैं सुदेश जुहावन के ओकरा बहुत धन्यवाद ऋषि गंगलोल हमारे म्यूजिशियन ओकरो बहुत धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर जो है माहेन मोनिक ओकरो धन्यवाद हमारे पत्नी के जो हमारे साहिता देवला बस की ओकर पेमिशन से नहीं सकब जाएंगे पेटिशन करे हाई सफाई करे बस की लड़का बाढ़ के और हमारे कामगार लोग गांव में सब कामगार जो बा हमारे बेस्ट फ्रेंड के नाम बा ये फाविन ओकरे संगे रहिला जस्ती लेता हूँ ओकरे संगे रहिला पितांग सब खेला से ओकरे संगे कुनल बा ए और काम में हमारे कामगार लोग बा हमारे हमारे कोलीग लोग बा बहुत कुछ जाने ला हमरा परिदास गाँव में किसी के प्रधान है हमारे सब मॉम जो बा एग्जीक्यूटिव सब कोई के जो कोई के भुला गए सब कोई के हम धन्यवाद करीला कुमाजिया कैसे जो कैसे करके मजे को सपोर्ट मिले बा लॉ को आजमा देवी आई के लिए
1: चला तो आज के कार्यक्रम में कलाकार के बात कार्यक्रम में हमनी के संगे जुड़ल रहल भाई खालिद बंधु राजा और उनकरा बहुत बहुत शुभकामना देवब जा उनकर पोषण गीत खातिर और जुन गीत आवत आ उनकर खातिर बहुत बहुत तोहरा लावांश में बधाई देवत है और भगवान ऊपर वाला तोहरा बहुत हिम्मत दे बहुत मेहनत करे खातिर और कहे के आगे बढ़े खातिर और जरूर कोशिश करब जा कि तोहरा एगो बार फेरों से है मंच पर बुलावब जा एगो और बढ़िया कार्यक्रम खातिर तो चला इसी के साथ एगो बढ़िया लाजवाब गीत छोड़े जात हैं कुणाल हीरीलाल के आवाज़ में और इसी के साथ कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करत हैं रत्ना के सप्रेम नमस्कार और बस इसी के साथ अभी थोड़ा घड़ी में तू सुने सक बस समाचार बुलेटिन था इसी के साथ कलाकार के बाद हैजा पर समाप्त करत हैं नमस्कार शुभ संध्या सब कोई के
2: कार के बाद

शुक्रवार 24 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस में जल संकट की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बारिश की कमी के कारण जलाशयों का स्तर सामान्य औसत से काफी नीचे पहुंच गया है और आने वाले दिनों में और पाबंदियां लागू की जा सकती हैं। अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले मॉरिशस के उत्पादों पर अब कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले

0: फैसले से मॉरिशस के निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है। मॉरिशस में कथित टेलीफोन निगरानी उपकरण खरीद मामले की जांच जारी है। पूर्व आईएसटी मंत्री दीपक बालगुबीन से आज सीसीआईडी ने गवाह के रूप में पूछताछ की। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जेगू गौशिया एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। ईरान पर अमरीकी हमलों, हुती विद्रोहियों के दावों और ईरानी संसद की टिप्पणी ने क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक बाजारों और मॉरिशस पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात करें तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। पहले ही दिन मॉरिशस के मुक्केबाज जिगी अगाथ ने शानदार जीत दर्ज कर अपने अभियान की सफल शुरुआत की। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस में जल आपूर्ति की स्थिति पर अब भी दबाव बना हुआ है। मॉरिशस की कमी बारिश की कमी के कारण देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य औसत से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल पानी की कटौती मुख्य रूप से केंद्रीय पठारी क्षेत्रों यानी के सेंट्रल प्लेन विलियम्स तक सीमित है। हालांकि यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो जल संरक्षण के लिए अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय भी लागू किए जा सकते हैं। अमरीकी प्रशासन द्वारा आज जारी की गई नई शुल्क सूची के अनुसार अमरीका को निर्यात किए जाने वाले मॉरिशस के उत्पादों पर अब 0% आयात शुल्क लागू होगा। नई शुल्क व्यवस्था 60 देशों पर लागू की गई है जिनमें चीन, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और भारत शामिल हैं। हालांकि पहले 10% शुल्क के दायरे में रहा मॉरिशस अब इस सूची से बाहर कर दिया गया है। इस निर्णय को मॉरिशस के निर्यातकों और उद्योग जगत के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मॉरिशस के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में अमरीकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। इस पर हम हमारे अन्य बुलेटिनों के दौरान फिर से वापस आएंगे। मॉरिशस के पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी मंत्री दीपक बालगुबीन से आज सीसीआईडी ने गवाह के रूप में पूछताछ की। जांच के दौरान उनसे उनके मंत्री कार्यकाल में संसद से पारित एक कानून के संबंध में जानकारी मांगी गई। ये पूछताछ कथित टेलीफोन निगरानी उपकरणों की खरीद से जुड़े मामले में चल रही पुलिस जाँच के तहत की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: दीपक बालगोविन के साथ सेंट्रल सीआईडी में एक घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। उनके साथ उनके वकील रवि यरिगादू और सुदेश कालीचंद मौजूद थे। पूर्व आईसीटी मंत्री से वायर टेपिंग घोटाले के मामले में पूछताछ की जा रही है। उनके वकील के अनुसार दीपक बालगोविन से 2021 में पारित किए गए एक कानून साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम एक्ट 2021 के बारे में जानकारियाँ मांगी गई। रवि यरिगादू कहते हैं एक जांच चल रही है जिस पर हम अभी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। अभी के लिए हम बस इतना कहेंगे जब दीपक बालगोविन मंत्री थे तो उन्होंने सभी अन्य मंत्रियों की तरह संसद में कुछ विधेयक प्रस्तुत किए थे। इस मामले का संबंध इसी तरह के एक बिल के साथ है जो उन्होंने राष्ट्रीय सभा में पेश किया था। पूछताछ अच्छी तरह से बीती। मेरे मुवक्किल ने अपना पूरा सहयोग दिया। सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने तथाकथित मुस्तस्लीक मामले की जांच शुरू की है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वायर टेपिंग उपकरण खरीदने की मंजूरी किसने दी थी और क्या इसके इस्तेमाल के दौरान सही प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। ये बात उल्लेखनीय है कि इस मामले में काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख ACP लीलराम दियाल को गिरफ्तार किया गया था।
0: मॉरिशस का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आम जनता के साथ अपने संपर्क को और मजबूत बनाने तथा अपनी सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नई पहल कर रहा है। हर वर्ष सैकड़ों मॉरिशन अपने अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने या विभिन्न विवादों के समाधान के लिए आयोग से संपर्क करते हैं। आयोग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए एबन हाइट्स में उसके मुख्यालय में एक शिकायत की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया गया जिसमें शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके विस्तारण तक की कार्यवाही को प्रस्तुत किया गया। दो वर्षों तक चले नवीनीकरण कार्य के बाद पोर्ट

0: इसके जीत अस्पताल का शवगृह दोबारा संचालित होने लगा है। इस अवसर पर देश के 8 सार्वजनिक शवगृहों की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया। इन शवगृहों में पार्थिव शरीरों के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न अस्पतालों के बीच उनके स्थानांतरण तथा लावारिस शवों के रख रखाव और अंतिम व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि ये सेवा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके कार्यप्रणाली आम लोगों की नज़रों से प्रायः दूर रहती है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन जेगो गौशा को खो सकता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब तेहरान, वॉशिंगटन और लंदन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस टिप्पणी के बाद हिंद महासागर स्थित जेगो गौशा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। जेगो गौशा और शागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। लंबे समय से मॉरिशस की संप्रभुता और क्षेत्रीय दावों से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक संबंधों और मॉरिशस के हितों पर इसके क्या संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं। मध्य पूर्व का संकट, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं। मध्य पूर्व का संकट अब एक नए चरण में पहुंच गया है। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों के लगातार 13वें दिन यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में, यानी कि रेड सी में, सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के इस दावे के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इस बढ़ते संकट का असर पहले ही वैश्विक बाजारों पर दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और तेल का एक बैरल अब 100 अमरीकी डॉलर से अधिक पर पहुंच गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी तथा अन्य जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भीषण गर्मी की लहर के कारण यूरोप भर में आपातकालीन सेवाएं जंगल की आग से लगातार मुकाबला कर रही हैं। गुरुवार को इटली, फ्रांस और स्पेन में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में भीषण जंगल की आग अभी भी सुलग रही थी। दक्षिण पूर्वी स्पेन में खतरनाक रेड हीट की चेतावनी जारी की गई है, जहाँ गुरुवार को वाल डेल अल्मांजोरा और अल्मेरिया में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की उम्मीद है। मध्य स्पेन के ग्वाडालाजारा में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भीषण गर्मी की लहर के कारण यूरोप भर में आपातकालीन सेवाएं जंगल की आग से लगातार मुकाबला कर रही हैं। गुरुवार को इटली, फ्रांस और स्पेन में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में भीषण जंगल की आग अभी भी सुलग रही थी। दक्षिण पूर्वी स्पेन में खतरनाक रेड हीट की चेतावनी जारी की गई है, जहाँ गुरुवार को वाल डेल अल्मांजोरा और अल्मेरिया में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की उम्मीद है। मध्य स्पेन के ग्वाडालाजारा में 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जल चुकी है। 34 गांवों से लोगों को निकाला गया और स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि पानी गिराने वाले विमानों ने घरों को जलने से बचाने में कामयाबी हासिल की है। गुरुवार को फ्रांस के अटलांटिक तट के साथ स्थित कस्बों और हॉलीडे रिजॉर्ट्स से लगभग 20,000 लोगों को निकाला गया, क्योंकि जंगल की आग की श्रृंखला में ताजा आग भड़क उठी और इस आग से निपटने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मियों को तैनात किया गया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बोदो के दक्षिण पश्चिम में लेश कापफेरे शहर के पास एक जंगल में लगी आग 31 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गई थी। पेरिस क्षेत्र से भेजे गए दमकल कर्मियों सहित लगभग 700 दमकल कर्मियों को तैनात किया गया था। जंगल के किनारे रहने वाले 1,000 से अधिक निवासियों के साथ साथ हॉलीडे कैंप और कैंप साइट्स में ठहरे पर्यटकों सहित 10,000 से अधिक लोगों को रात भर में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर सिसिली में दमकल कर्मियों ने शनिवार से 1,000 से अधिक बार जंगल की आग बुझाने के अभियान चलाए हैं और आग से मुकाबला करने के लिए डबल शिफ्ट में काम किया है। पालमो में तापमान के 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने और शाम को भी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे न गिरने के कारण आपातकालीन सेवाओं पर भी भारी दबाव आ गया है। हवा ने आग की लपटों को और भड़का दिया है, जिससे जमीन राख में बदल रही है और घरों तथा व्यवसायों को खतरा पैदा हो गया है।
0: और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और

0: विदेश नीति समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन जेगुगोशा को खो सकता है। इस पर ज्यादा विस्तार से इस रिपोर्ट में।
1: ये मुमकिन है कि ग्रेट ब्रिटेन अपनी दूसरी कॉलोनियों की तरह जेगुगोशा पर भी अपना नियंत्रण खो दे। यूनाइटेड किंगडम के लिए बेहतर होगा कि वो अपनी सीमाओं की कमजोरी को असलियत के नजरिए से देखे और समझे कि इस्लामिक रिपब्लिक की ताकत मात्र उसकी सैन्य ताकत तक ही सीमित नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये धमकी इब्राहिम अजीजी की तरफ से आई है। ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के चेयरपर्सन और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर ने 23 जुलाई को एक्स पर यह संदेश पोस्ट किया। ये बयान सीधे यूनाइटेड किंगडम को निशाना बनाता है। तेहरान का आरोप है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए जेगुगोशा मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। वहीं बरतानी सरकार का कहना है कि वो 2400 घंटे और सातों दिन अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हैं।
2: Now the big question is, did Iran fire long-range missiles at Diego Garcia base?
1: ये पहली बार नहीं है जब इस संदर्भ में जेगुगोशा का जिक्र हुआ है। पिछले साल मार्च महीने में जब तनाव चरम पर था तो लंदन ने बताया था कि सैन्य अड्डे की तरफ दो मिसाइलें दागी गई हैं। बरतानी और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक मिसाइल अपने निशाने तक पहुंचने से पहले ही समंदर में गिर गई जबकि दूसरी को रोक दिया गया था। हालांकि ईरान ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी से इनकार किया था। जेगुगोशा ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। हालांकि ईरान की जानी मानी बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे शहाब 3 या खुर्रम शहर जरूरी नहीं कि सीधे हमले को मुमकिन बनाती हों, लेकिन तेहरान के पास दूसरी क्षमताएं भी हैं जिनमें लंबी दूरी के ड्रोन और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं जो उसकी ऑपरेशनल पहुंच को बढ़ा सकती हैं।
0: मॉरिशस में ग्रैंड थॉर्नटन ने अपने कारोबारी विस्तार के तहत नई पहचान और विस्तृत सेवाओं की घोषणा की है। इस संबंध में गुरुवार 23 जुलाई को पोर्टवे स्थित लुलाबोडने होटल में आयोजित कार्यक्रम में समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी की नई रणनीति की जानकारी दी। पिछले 16 वर्षों से मॉरिशस में कार्यरत जीपीयू लिमिटेड अब ग्रैंड थॉर्नटन मॉरिशस लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। कंपनी के अनुसार ये बदलाव केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि इसके साथ सेवाओं के दायरे का भी विस्तार किया गया है। अब कंपनी 4 प्रमुख क्षेत्रों ऑडिट परामर्श यानी कंसल्टिंग टैक्सेशन और आउटसोर्सिंग सेवाओं में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी का उद्देश्य मॉरिशस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना है। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित ओवो हाइड्रो अरेना में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ खेलों का आधिकारिक उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों की रंगारंग मार्च पोस्ट रही। 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इन खेलों में इस बार 74 देश और क्षेत्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 3000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिनमें मॉरिशस के करीब 40 खिलाड़ी भी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में ब्रिटेन की राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमेलिया भी उपस्थित रहे।
3: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ओवो हाइड्रो अरेना में पारंपरिक खिलाड़ियों की परेड से पहले की ये गूंज खेलों को आगाज देती है।
4: मॉरिशस
5: Boxer Fabrice Valerie and swimmer Anisha Tilop lead out Mauritius, who had a record-breaking Birmingham 2022 with 5 medals won. The Mauritian flag is one of only 2 in the world with 4 horizontal lines. Red represents the struggle for freedom, blue is its Indian Ocean home, yellow the shining light of independence, and green the year-round colour of its beautiful landscape. A fitting flag for this Commonwealth garden.
3: मॉरिशस के डेलीगेशन में मुख्य रूप से वहां पर बॉक्सिंग और स्विमिंग के खिलाड़ी मौजूद थे जिनका प्रतिनिधित्व फैब्रिस वालिया ने किया। प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख ऋषभ पापी और मिशन के प्रमुख फैसल बंधन हैं। उनके साथ इन खेलों में भाग लेने वाले 74 देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इन खेलों में लगभग 3000 खिलाड़ी

0: स्टेडियम में मौजूद 13,000 दर्शकों और दुनिया भर में करोड़ों टीवी दर्शकों ने स्कॉटलैंड की संस्कृति और परंपरा से भरपूर एक शानदार उद्घाटन समारोह का आनंद लिया। संगीत कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार टॉम वॉकर, केटी टर्नस्टॉल, कलम बियाती और नीना नेस्बिट मंच पर उतरी। राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कमिला भी समारोह का हिस्सा बने, जिसके बाद औपचारिक कार्यक्रम हुआ। किंग चार्ल्स तृतीय ने 23वें कॉमनवेल्थ खेलों की औपचारिक लॉन्चिंग की। अब सभी की निगाहें प्रतियोगिताओं पर हैं, जो 2 अगस्त तक चलेंगी।
1: विवरण अभी याचना मिश्रा का रहा। राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस के 24 वर्षीय मुक्केबाज जिगी आगात ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। 65 किलोग्राम से कम भार वर्ग में जिगी आगात का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के जिमेसी सिमामकेले से हुआ। मुकाबले के दूसरे राउंड में रेफरी ने प्रतिद्वंदी की स्थिति को देखते हुए मुकाबला रोक दिया और जिगी आगात को विजेता घोषित कर दिया। समाचार बुलेटिन के अंत में हमारे पूर्व सहयोगी धनराज बुलक को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनका आज 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। धनराज बुलक ने वर्ष 1988 में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में हैंडी वॉकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। वर्षों की समर्पित सेवा के दौरान उन्होंने कई जिम्मेदारियाँ निभाईं और अंततः ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। MBC परिवार की ओर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस कठिन समय में उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं मौसम की हाल की ओर याचना मिश्रा के साथ।
0: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा। कल दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरा सकते हैं। अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 12 से 14, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:50 पर होगा।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग मिला है और कंसल पर हमारे सहयोगी लुदविक का भी चिरंतन धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। Choc Sanchez Sonnier, Rivière Baptiste Road, La Flora Saint-Pierre-Main, Rivière Baptiste Road, La Flora Saint-Pierre-Main, 61 साल की, 61 years old की श्रीमती विमला गंगा बिसुन, श्रीमती विमला गंगा बिसुन पैदाश नाम बिफन और जिन्हें स्वतिका के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर La Flora Saint-Pierre से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लांश की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। ला मेरे ओकुलेमें 67 साल के, 67 ईयर्स ओल्ड के श्री धनराज बुलक जिन्हें दान के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती नीता बुलक के घर ओकुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मॉस्को रोड रोजबेल में 95 साल की, 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्मावती भरत

पैदाश्रम राम जावन और जिन्हें इंद्रावती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे ससिराज भरत के घर रॉसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मैगजानी रॉसबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड पुचिराफे में, महात्मा गांधी रोड पुचिराफे में 58 साल के 58 years old के श्री महावीर दिहोल जिन्हें जॉन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भाई विशाल दिहोल के घर पुचिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। 75 साल के 75 years old के श्री वेंकटाचार्य लिंगालू जिन्हें किसना के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे साज अस्पताल के मोचुअरी हाउस से निकालकर अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों सौ सैपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। रेलवे रोड रिविया जो पोस्ट में 67 साल की 67 years old की श्रीमती ललिता बिया सिंह पैदाशनाम गणपत और जिन्हें बिमला के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे गिरीश बिया सिंह के घर रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौराबू रिविया जुपस की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: नमस्कार, शाम के 6:23 हुए हैं। हमारा आपका साथ है रेडियो मनोरंजन पर और लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हम आज का प्रोग्राम नई सोच।
2: नई सोच
1: कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जहां भी होंगे आप खुश खुश हंसते मुस्कुराते होंगे और ऐसे में आप लोगों का साथ हो तो ये शाम बहुत ही प्यारी नई नई सोचों के साथ, नए नए अरमानों के साथ, नई नई उड़ानों के साथ शुरू होगी। तो चलिए इस शाम में आपको हम चित्रा सिंह की आवाज़ का ये गाना सुनवाते हैं जो ले चलता है हमें कुछ अपने सफ़र में। और सफ़र में कभी बारिश, कभी धूप आती है, कभी धूप आती है, गर्मी होती है और तपता हुआ रास्ता मिलता है, फिर भी चलते जाते हैं हम और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं हम। कहीं ना कहीं धूप होगी पर कभी ना कभी छांव भी मिलेगी आपको।

सफर की बात जो छिड़ी गई है तो चलिए जरा हम शिवाजी चट्टोपाध्याय की आवाज में सुनते हैं। ये सफर कितना कठिन होता है पर कठिनाई से गुजरकर ही तो सफर तय किया जाता है।

चलिए जरा हमारे आत्मविश्वास को हम टटोले जरा। आत्मविश्वास हम में हो अगर तो हम जीत जाएंगे। अपनी जीत को आप पहले से ही सेलिब्रेट कीजिएगा ताकि आप में पॉजिटिविटी आए, आप में जीतने की चाहत रहे।

हमारे जीवन में कई ऐसी बातों से हमें बहुत सारी आशाएं मिल जाती हैं और कई ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमें निराशा हो जाती है। आशाएं निराशाएं आती रहती हैं ज़िंदगी में, बस निराशाओं के बाद आशाओं की आशा ज़रूर रखिएगा और आशाएं रखने की मानसिकता ज़रूर रखिएगा। इनसे आपके जीवन में बहुत सारी उम्मीदें जागेंगी और जागने पर आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएंगी।

जहाँ आशाएं होती हैं, निराशाएं होती हैं, वहाँ खुशियाँ होती हैं और गम भी होते हैं। चलिए हम गमों को छोड़कर खुशियों की ओर ध्यान दें। जो गम आते हैं तो उनको भी खुशियाँ बनाने की कोशिश करें। जहाँ हम होते हैं वहाँ गम भी नहीं होता। आप इन गमों से बस नाता इतना रखिएगा कि इनके साथ हम जूझ जाएं और खुशियों में बदल डालें इनको, और ये खुशियाँ आप लोगों के जीवन का की रौनक बन जाए, आप लोगों के जीवन का सौंदर्य बन जाए।

वही बातें कि कभी गम कभी खुशी इस जहां में आती है, क्योंकि इस जहां में बिना गम बिना खुशी के कोई जिंदगी होती ही नहीं है।

0: बस इसी गाने के साथ, यानी के कभी खुशी कभी हम गाने के साथ हम रोकेंगे हमारे नई सोच प्रोग्राम को। इस समय 7 बजे हैं, बस हम पेश करेंगे आप लोगों के लिए आज का दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। ये है रेडियो मनोरंजन।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: Yo, hello. Testing 1 2. Yeah.
3: Kabhi socha hai?
4: MBC Radio ke studio se live or direct.
3: Listeners se baat karna kaisa lagta hoga?
4: Most popular Bollywood hits play karna.
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
4: MBC Radio presents One Day RJ.
3: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
3: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स

0: वाले आज
1: एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: Continuous music. RM3.
1: दिलों की आवाज।
3: कई दिल होंगे हमारे साथ साथ हमारे दिलों के साथ घुलने के लिए। ये है प्रोग्राम दिलों की आवाज़ और लेकर आए हैं दिलों की बातें, दिलों के अरमां। आपके दिल में हो अरमां कोई गाना सुनने का तो हमारे इस शो में शामिल हो जाइएगा। हम हैं सुरेखा, आपका स्वागत करते हैं दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में। अगर आप भाग लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो 5250-6200 पर हमें मैसेज भेजिएगा, और जो कॉल करना चाहते हैं आप तो 4028070 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप बताइएगा हमें कौन सा गाना आप सुनना चाह रहे हैं। अगर बहुत दिनों से ये गाना सुनना चाह रहे हैं, अभी अभी आपके दिल में अरमान जागा हो ये गाना सुनने का, या कब से आप सुनना चाह रहे हैं वो भी बता दीजिएगा हमको, और आप लोगों के नाम करेंगे हम वही गाने जिनकी फरमाइश आप कर रहे हैं। हम है सुरेखा, साथ आपका दे रहे हैं। चलिए आप लोगों के नाम करते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ सबसे पहले दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में। ये गाना होगा आप लोगों के लिए, जहर मूवी से लिया गया।

यूं ही कटेगा हमारा सफर आपकी फरमाइशों को देखते हुए, आपकी फरमाइशों को आप तक पहुंचाते हुए। वैसे ये मुलाकात बहुत प्यारी सी है, ये प्यारी सी मुलाकात आप लोगों की फरमाइशों तक पहुंचने के लिए है। और फरमाइशों की लिस्ट में सबसे पहला गाना है दहलीज़ मूवी का, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, उनसे मिलने की तमन्ना को इजहार किया गया है इसमें। बस ये तमन्ना हर किसी की पूरी हो जाए, जिनसे मिलने की भी तमन्ना हो आप उनसे बहुत जल्द मिल जाए, ये हमारी दुआ हमारे सभी श्रोताओं के लिए है। और ये गाना सुरीनाम की किरण जी की तरफ से है।

जहाँ मुलाकात की तमन्ना होती है वहाँ मोहब्बत की राह होती है। उस मोहब्बत की राह में बस कुछ वादे कुछ कस्में होती हैं और ऐसी ही कस्में ऐसी ही वादे मुकेश की आवाज़ में हम सुनते हैं। यह है संगम मूवी का गाना और महबूबा से जो कस्में वादे किए जा रहे हैं वो सुनना चाह रही है नंदा जी पाए से।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: और हम हैं आपकी दोस्त सुरेखा. सुरेखा आपका साथ दे रही हैं इस महफिल में. ये है महफिल दिलों की, ये है महफिल आवाज़ों की, ये है महफिल दिलों की आवाज़. जहाँ भी होंगे आप अपनी फरमाइश ज़रूर हमारे इस शो में शामिल कीजिएगा. वो गाने जो आप सुनना चाह रहे हैं, वो गाने होंगे आपकी फरमाइशों के. और 5250-6200 पर हमें मैसेजेस भेजिएगा. और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बेशक कॉल कीजिएगा हमको. 402-8070 पर हम आपका इंतज़ार करेंगे आपके कॉल्स के. और ऐसे में हम आपको सुनवाते हैं साजन की बाहों में फिल्म का ये गाना. और ये गाना हम पेश कर रहे हैं सुदेवी जी के लिए. वाकवा की सुदेवी जी ये गाना सुनना चाह रही हैं और सुनवाना चाह रही है थयोले की दीदी ललिता जी के लिए, पूरे कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा के अनुषा, किरण, रामरतन परिवार और हमारे सभी सुनने वालों को. और ऐसे में हम ये गाना आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में. ये गाना साजन का घर मूवी से लिया गया, अलका याग्निक की आवाज़ में भी है.

वीकेंड आ रहा है भाई, थोड़ा शादी का माहौल तो बनाए। चलिए सुने हम जरा कुछ कुछ होता है मूवी का ये गाना, ये है शादी वाला गाना। चलिए शादी वाला माहौल बनाते हैं और ये गाना हम पेश करते हैं श्वेनल जी की पसंद पर। श्वेनल जी ने इस गाने की फरमाइश की है उन कपल के लिए जिनकी इस वीकेंड शादी हो रही है और वे हैं आशना और विकास। तो आशना और विकास को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं दे रहे हैं। जिंदगी की हर राह में मिले खुशियां आपको, जिंदगी की हर राह में पाए सपोर्ट एक दूसरे का, और इसी सपोर्ट के दम पर आप इस जहां में खुशियों का खजाना पा जाए। चलिए जरा आशना और विकास जी के लिए ये गाना तो हम पेश करते हैं। भैया श्रवण, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नाविया और पूरे तिलक फैमिली की ओर से बहुत सारी मंगल कामनाएं देते हैं।

तो जहाँ चलिए जहाँ शादी का माहौल हो वहाँ हमें भी शामिल कर लीजिएगा। शादी के माहौल में बड़ा मज़ा आता है हमें भी। चलिए ज़रा हम आगे बढ़ जाएं हमारे अगले गाने की ओर। ये गाना होगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आशा भोसले के साथ साथ। बेशक आशा भोसले का होना ज़रूरी है इस गाने में, क्योंकि इस गाने की फरमाइश मोहताज ब्लॉग के नवीन जी ने की है और ये हमारे वो श्रोता है जो बहुत बड़े फ़ैन हैं आशा भोसले के। तो चलिए आशा ताई की आवाज़ का ये गाना हम नवीन जी के नाम करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से।

एक भला करके 100 खुशियाँ मिल जाती है दिल को, हर बार भला करने से हर बार 100 खुशियाँ मिलेंगी दिल को। आप ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी का भला अवश्य करते रहिएगा। 7:43 हुए हैं और ये है महफिल दिलों की, ये है महफिल आवाज़ों की, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में आप लोगों को आपके पसंद के गाने, आपकी फरमाइशों वाले गाने, आपके दिल की आवाज़ वाले गाने सुनवा रहे हैं हम। 5250-6200 हमारा नंबर है मैसेजेस वाला, जी हाँ 5250-6200 ये नंबर नोट कर लीजिएगा और अपनी पसंद के गानों की फरमाइशें मैसेजेस द्वारा कीजिएगा। और जो कॉल करके आप अपनी फरमाइश करना चाहते हैं तो 4028070 नंबर है हमारा। हम है सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं और इस सफ़र में बहुत प्यार से कट रहा है ये सफ़र। इस सफ़र में हम आपको सुनवाते हैं अगला वाला गाना और ये अगला वाला गाना कुमार सानू की आवाज़ में है। हम है राही, प्यार के मूवी का ये गाना है और हम तो भाई कहेंगे हम है राही दिलों की आवाज़ के, और दिलों की आवाज़ में हम सफ़र बने हुए हैं गिरीश हरलोल जी। हम बहुत सेहतमंद हैं गिरीश जी, गिरीश जी ने हमसे हमारा हाल चाल पूछा, सो हम भी सेहतमंद हैं, उम्मीद यही करते हैं कि हमारे सभी श्रोता सेहतमंद होंगे। चलिए ज़रा ये सफ़र आपके नाम करते हैं गिरीश जी, आप भी गुनगुनाइएगा, साथ देते रहिएगा।

0: RM3 Radio.
1: सफर तो कटता है बड़े प्यार से कोई हम सफर जो हो हमारे साथ कहा जाता है ना कि प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है तो आपके जीवन में प्यार ही प्यार रहे आपके हम सफर के साथ सफर तय करने में मजा बहुत आए इतना मजा आए कि आपको मंजिल की तलाश ही न रहे वैसे हमारा भी कुछ सफ़र कुछ यूं ही है हमारे श्रोता हमारा साथ इतना दे रहे हैं कि हमें तो मंजिल की तलाश ही नहीं हमें नहीं ख़त्म करना इस प्रोग्राम को हमें नहीं समाप्त करना इस प्रोग्राम को बस अगर वक्त हमारा साथ दे देता तो हम कभी भी समाप्त नहीं होने देते इस शो को अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गुलशन जी का मैसेज है तो विरासत मूवी का गाना सुनना चाह रहे हैं गुलशन जी जो कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में है गुलशन जी ये गाना अपने बेस्ट फ्रेंड विषय के लिए और भावना जी के लिए मांग रहे हैं क्योंकि वो मैरिड होने वाले हैं उनकी शादी होने वाली है अगले वेंसडे को और बल्ले बल्ले नाचने वाले हैं गुलशन जी तो बहुत इंजॉय कीजिएगा शादी में और शादी का ये सफ़र आप लोगों के लिए विषय और भावना जी बहुत ही सफल रहे आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां रहे ढेर सारी सफलताओं के पल रहे और ढेर सारी खुशियों के पल आती रहे आपके जीवन में और ये गाना गुलशन जी ने अपने किचन टीम के लिए मांगा है इसका मतलब ये है कि अपने किचन में वो अपनी टीम के साथ है इस वक्त और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं इसीलिए तो आपके इस मैसेज से गुलशन जी यमी यमी खाने की खुशबू आ रही है भूख भी बढ़ा रही है तो चलिए गुलशन जी की तरफ से ये गाना कि मामा प्रभा के नाम बहन दीक्षिता के नाम और आयशा जी के नाम और साथ ही साथ पूरे भोला परिवार के नाम

चलिए जरा सीधा उनकी निगाहों में डूब जाएं हम, क्योंकि ये निगाहें बहुत गहरी नज़र आती हैं, इनकी गहराई में बहुत प्यार नज़र आता है। ये गहराइयां हैं फिल्म शबनम के गाने की, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं मुकेश की आवाज़ में सूरज शर्मा सजादा जी की तरफ से। उन्होंने ये गाना मांगा है अपने बेटे निशाल के लिए और पूरे बिसे सर परिवार के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक यू सूरज जी।

साजन साजन पुकारूं फिल्म साजन का ये गाना और ये गीत हम पेश कर रहे हैं ललिता जी की पसंद पर उनकी बहनों के लिए सुदेवी देवी ना ज्ञानी के लिए छोटी जी प्रभावती जी हरी जी और आत्माराम जी के लिए सुखलाल मौसी के लिए और उषा लोकाना जी के लिए

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चलिए साथी बनकर हमारी इस महफिल की बढ़ाइएगा शान। बस हम तो यहाँ पर बैठे हैं, आपको देंगे हर तरह से म्यूज़िक का ये प्यारा सा पल। और इस पल में आप हमारा साथ तो दे रहे हैं 5250

6200 पर या फिर 4028070 पर, या फिर आप मैसेज भेजिएगा या फिर आप हमें कॉल कीजिएगा। आप लोगों के मैसेजेस के ज़रिए हम आपकी पसंद तो जान जाएंगे और आपकी पसंद आप तक पहुंचाएंगे। हाथी मेरे साथी मूवी का ये गाना होगा इस बार, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और हमारे श्रोता तायक से रफीक मोहित जी ये गाना सुनवाना चाह रहे हैं। तो चलिए साथ मिलके सुनते हैं। याद रखिएगा, हम हैं सुरेखा का साथ दे रहे हैं। हमें बताइएगा कौन सा गाना आप सुनना चाह रहे हैं।

हम तो भाई कहेंगे जो बांटना है तो बस प्यार ही बांटिए, जो देना है तो मुस्कुराहट दीजिए, मुस्कुराहट से प्यार से ये दुनिया कितनी हसीन हो जाती।

की है। 8:17 हुए हैं, हमारी आपकी ये मुलाकात है और दिलों की आवाज़ कार्यक्रम 9 तक चलने वाली है। आप लोगों के लिए इस बार जो गाना हम पेश कर रहे हैं ये होगा जिंदगी और ख्वाब का गाना। जिंदगी को आप जिंदगी बना लीजिए, इसे ख्वाबों से भी सुंदर बना लीजिए। ख्वाबों में जो दिखता है आपको, ख्वाबों में जो आपको खूबसूरत लगता है, उसे अपनी हकीकत की ज़िंदगी में शामिल कर लीजिएगा। ये गाना हम पेश कर रहे हैं रेहाना जी के लिए जो फिनिक्स की रहने वाली है। मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं।

जहां भी होंगे आप किसी भी कोने में दुनिया की आपके हम सफर जो हो आपके हम सफर जो आपको खोजेंगे आपको जरूर निकालेंगे आपको जरूर खोज निकालेंगे और दिल की बातों से आपको इस जहां में अपना महबूब बना डालेंगे और इस जहां में सबसे बड़ी खुशियां उन्हीं के साथ से आपको मिलने लगेगी। चलिए जरा हम दो रास्ते मूवी के गाने की ओर चलते हैं। इसमें बिंदिया चमक रही है, खुशी का ये खजाना निकल रहा है। लता मंगेशकर की आवाज का गाना है ये और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं हमारे दोस्त रफीक जी और यही गाना हम पेश कर रहे हैं क्यूपीप की अनीता जी के लिए और अनीता जी की तरफ से ये गाना हमारे सभी सभी सभी श्रोताओं के लिए।

और चलिए जरा हम पेश करते हैं दिल तो पागल है मूवी का गाना, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं हरीश जी की पसंद पर बुबा सिंह के। और हरीश जी ने भी कहा है, हरीश जी का भी मानना है कि इस दुनिया में जो फैलाना हो तो आप प्यार फैलाइएगा। बहुत ही लाजवाब सा ये बहाना होता है संसार को खुश रखने का।

इस बार हम पढ़ते हैं मैसेज बहुश गुडलैंड की संध्या जी की, और संध्या जी ने नजराना मूवी के गाने की फरमाइश की है मुकेश की आवाज़ का, माफ़ कीजिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये गाना है, और इस गाने की फरमाइश संध्या जी ने की है अपने पति विनोद के लिए। साथ ही साथ है सीजल, रैना और प्यारे प्यारे से निर्वय के लिए। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस रात्रि की दी है संध्या जी ने, शुभ रात्रि कहा है हमारे सभी श्रोताओं को।

नायक मूवी में। चलिए जरा हम वो गाना सुनते हैं जहां पर रूखी सूखी रोटी खा के भी खुश रहने की बातें होती हैं। और ये चर्चा जरा सही चर्चा है कि रूखी सूखी रोटी हो, मन को तसल्ली हो, तो ज़िंदगी बड़े आराम से कटती है। और पकवान भी हो पर दिल में तसल्ली नहीं तो ज़िंदगी में खुशियां नहीं आती हैं। चलिए ये गाना हम पेश करते हैं नवीन जी के लिए जो रहते हैं प्लेन मान्यो। उन्होंने इस गाने की फरमाइश अपनी पत्नी राधिका के लिए की है और उन्हें खुशियां देने का वादा भी किया है।

0: Centre, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: होप के अपने कांड का म्यूजिक सुन के आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। ये है आपके लिए आपके दिलों की आवाज। जी हाँ, इस समय 8:47 हुए हैं और 9 बजे तक का हमारा आपका साथ है। चलिए जरा हम नरसिम्हा मूवी का ये गाना सुनते हैं। चलिए जरा हम दुश्मनी को हटाते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दोस्त बनते हैं हम और दोस्ती निभाते हैं हम। और इस प्रोग्राम में आपको अमित कुमार अलकायाग्नि की आवाज़ें हम सुनवाएंगे। देव भरत जी की पसंद पर देव भरत जी ने ये गाना अपने सभी दोस्तों के लिए मांगा है, रवीना, विनेश और सुजय के लिए। तो चलिए मिल के सुनते हैं।

और इस बार हम लास्ट गाना सुनवा रहे हैं आपको दिलों की आवाज़ कार्यक्रम का। दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथ रहा तो इस प्रोग्राम की शान बढ़ी और इस प्रोग्राम में हमें भी बहुत मज़ा आया आपका साथ पाकर। सो हम पेश कर रहे हैं आपके लिए नमस्ते लंदन का ये गाना राहत फ़तेह अली खां की आवाज़ में, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं पृथ्वीराज जी की पसंद पर। कौन दे मास पावे के पृथ्वीराज जी ने इस गाने की फरमाइश अपनी पत्नी माया के लिए, बेटे कमलेश और बहू नीना के लिए, पोतों अंश और द्विज के लिए की है। तो बस इस गाने के साथ ही हम यहाँ पर प्रोग्राम समाप्त करते हैं। थोड़ी देर में हम मिलते हैं भोजपुरी गीतों के साथ, भोजपुरी फरमाइशों के साथ और भोजपुरी प्रोग्राम भोजपुरी तड़का के साथ। अगर आप भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में भाग लेना चाहेंगे तो याद रखिएगा नंबर बदला हुआ होगा, मैसेज के लिए होगा 5251705 और कॉल करने के लिए होगा नंबर 4028085। तो मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: भोजपुरी तड़का।
1: नमस्ते अनिके सब श्रोता लोग के जहाँ हो बजा खुश खुश रहिया जा, हंसते रहिया जा, मुस्कुराते रहिया जा और सब को के मुस्कुराए के बोलिया जा और ये मुस्कुराहट दे दिया जा सब कह के। तो हर जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ रही, तो हर जीवन में बहुत खुशहाली रही, यही उम्मीद करते हैं जा, यही दुआ करते हैं जा और उम्मीद करते हैं जा कि आज सुख के दिन तो खातिर बहुत लाजवाब रहल और रात तो अभी लाजवाब रहे करी। भोजपुरी के गाना तो लोग के सुनवाओ अब जा, तरी कमट वमट कर ले अब जा। अभी हमने के भोजपुरी तड़का तोहर नाम करत हैं जा, हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में भाग ले बजात 5251700 पर सक बजा, हमने के मिसाज भेजे और जे टेलीफोने करे खोज बजात 4028085 पर सक बजा टेलीफोने करे और अपन पसंद के गाना के फरमाइश सक बजा करे। भोजपुरी के वो गीत जन तो लोग बोल बजा उ तो लोग के सुनवाओ अब जा। अभी देखा जाना ललिता चाची हमने से बोले हमन की सुनियन साजन के साड़ी गाना, चला सुनीता ननकुज के गावली गाना हमने सुनी जा और ललिता चाची बगल से उनकर बहिन सुदेवी देवीना और ज्ञानी खातिर छोटी जी प्रभावती जी हरीश जी और आत्माराम जी खातिर बजवाओ अब जा और री शुक्लाल मौसी खातिर और उषा लोकाना जी खातिर बजवाओ अब जा।

चले अब बढ़ी जा हमने कोइरिन बगल कोइरिन धान रोपेला किसनवा कोइरिन हरदी रोपेला किसनवा धान रोपेला तलीलो माथुर जी बोलियन के कौनची रोपेलन और ये गाना हमने लीलो माथुर जी की आवाज में सुनब जा अमृता जी के पसीन भर पीतों से अमृता जी गाना मंगले वन सोनिया और परी खातिर बेटा विशान और पतो मीनाक्षी खातिर और बेटी पूनम खातिर

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार

0: वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: कितना मजा आएगा ना माइक के इस पार बैठना। आप जरूर इस प्रोग्राम में, इस शो में भाग लीजिएगा और अपने एप्लीकेशंस भेजिएगा। इस समय 9:24 हुए हैं और ये हमने भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में क्या नहीं जाता और खातिर भोजपुरी में जुन गाना। अब रिकुद तो लोग सुन बजाई हम मीरा मोहन जी के गावल गीत और ये बड़े प्यार से गायत्री जी मंगले हवन गाना। गायत्री जी पीछे वेर सैम्पिया से गाना मंगले हवन अपन भौजी मीरा खातिर, उनकर बेटी गिरिशा और मेधा खातिर, अपन बहन अमृता खातिर, उनकर बेटी नेहा क्षिति और दिव्या खातिर, बेटा सुधीर और कमलेश खातिर, बहू सुधा खातिर और हमने के सब श्रोता लोग खातिर।

कहाँ छुपी रानी मोरी, किशोर कुमार रमेश सर जी के गावल गाना। और ई गाना हमने बजवावत है जा देव जी के फरमाइश पर, काहे देव जी मंगले हवनी गाना, उनकर पत्नी के नाम रानी है तो उनकर पत्नी रानी के नाम करत हवनी गाना देव जी मोहदार बेसे।

चल माता पिता के बतिया माने के बहुत जरूरी है, माता पिता के आदर करे के बहुत जरूरी है। ये हमनी के जीवन के एगो हिस्सा चाहना रहे कि हमनी के जीवन में हमनी के जीवन के हिस्सा माता पिता हमेशा से रहलन जा और उनकर बुढ़ापा के समय में हमनी उनकर जीवन के हिस्सा बन जाब जा त जीवन ऐसने बड़ी खुशहाली से चलते रही। सुखी जीवन खातिर चाहे हमनी के गत जनरेशन और आवत जनरेशन सबके देखभाल करके बीतल जमाना और आवे होला जमाना दोनों के संभाल के रखबा तो आज के जमाना बहुत शांतिमय रही। चला सुनी जा हमने मोहित दवा सिंह जी के गावल गाना और हमने ये गाना बजवावत हैं जा रेणुका जी के पसीन पर। रेणुका जी ये गाना मंगले हवन विजेश खातिर, उनकर बेटा हवन विजेश और उनकर बेटी सुनीता के नाम। तो चला सुनी जा ये गीत हमने माता पिता के सेवा करे, माता पिता के आदर कर, माता पिता के गंती रखा।

जीवन में तनी दुख मिलेला तनी सुख मिलेला और जन दुख ओकरा कैसों करके हमने के ढाले के बरेला सुख बनाए के पड़ेला। चला अभी हमने गरम गरम दाल कच्चू के बारे में सुनब जा कुचा पीमा के अचार सब बाँटत हो जा और ई जन मेन्यू बा ई संतोष महादेव जी बाँटत हो। चला संतोष महादेव जी के गावली गाना हमने सुनी जा और ई गाना हमने से मंगले हवन सुदेवी जी वाकवासी सुदेवी जी मंगले हवनी गीत अपन पूरा परिवार खातिर दीदी ललिता जी खातिर और त्रियोले के कुशल परिवार खातिर और संगे संगे गाना सुदेवी जी मंगले हवन आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवी ना खातिर मालिका के राम रतन परिवार खातिर और हमने के सब श्रोता

संतोष महादेव जी के गावल गाना के बाद संतोष महादेव जी के गावल ही गाना उनका साथी कलाकार के साथ साथ ये गाना हमने से मंगले हवन फ्लिक ऑन फ्लाक के अनीता जी और ये अनीता जी गाना मंगले हवन अपन संगत यालो खातिर और अपन पूरा परिवार खातिर।

अभी हमने गाना सुनवाओ अब जाता है लोके अभिदानंद बीजन जी के गावल और ये गाना हमने बजाओ थे जा घोगुप के सुनीता जी के पसंद पर सुनीता जी मंगले होनी गाना कुंगुमा के अपन बहिन विमाला के नाम

चटनी के तेगो लंबा सुनलालिस दे देलन हमने के अभिदानंद बीजन जी चाह बढ़ी जाओ अभी कुछ हमने बड़का मामा के बारे में सुनी जा बड़का मामा कौन ची करेला चला सुनी जा हमने सुदेश बोई जी से अरिकाना सुने खुजा थवन मी

मीराबाई जी मोदाल बेसे चलम मीराबाई जी बगल से गाना हमने बजवाए लजा पादिया परिवार खातिर दमिया परिवार खातिर उनकर बेटी और उनकर दामाद खातिर।

हमी के बीतल दिन अभिमन्यु हरिपोल जी के गावल गाना ये गाना हमने बजावत है जा तेहूर से राधा जी के पसंद पर राधा जी मंगले वन ये गाना अपन बहन विद्या के नाम

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आप

0: का मौका.
1: MBC Radio presents One Day RJ.
0: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363.
0: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस.
1: डोंट मिस इट.
2: तो सर भोजपुरी तड़का में तो हर स्वागत करत हैं जा कहा कैसे जनबा. अभी अभी तो लोग राजो दल्ले हो बजा तो बता देगा तो लोग कि अभी भोजपुरी तड़का कार्यक्रम प्रस्तुत करत हैं जा हम सर का तो हर साथ देवत हैं और ही संगे संगे तो हर का तीर तो हर पसंद के गाना प्रस्तुत करत हैं. चला सुनी जा हमने के अगला गाना दादा दादी की कहानी, हम के पूर्वज की कहानी. हम के पूर्वज लोग आ रलन जा तो तनी पीड़ा में रलन जा, काफ़ी पीड़ा में रहन जा, बहुत पीड़ा में रहन जा, बहुत दर्द से गुजरल हवन जा, बहुत दुख से गुजरल हवन जा. चला उन्हीं लोगन के कहानी सुनी जा हम निगासन सिंगारों जी के गावल और ये गीत हमने बजवावत है जानू अल्फोंस के गायत्री जी के पसंद पर. गायत्री जी मंगले हवन पर बेटा अजय खातिर गाना, मेबक के अपन मामी कल्याणी मोहन जी खातिर और ही लॉन्ग माउंटेन के अपन भौजी शकुंतला जी खातिर, नुवेल फ्रांस के सखी गीता बाई खातिर.

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: ये गाना हमने बजावत है जाहरी पारिस कहा नाग जी के गावल रविंद्र जी गाना मंगले हवन गांवे से अपन बेटा राहुल और अपन पत्तो स्नेहा के खातिर खास कर अपन बहू स्नेहा खातिर।

0: सबको के पतो के नाम करत हैं जाई गाना और सब पतो लोग प्यार से रहियन यही उम्मीद करत हैं जा भोजपुरी तड़का में तोहर पसंद के गाना चलावत हैं जा और भोजपुरी तड़का में तोहर पसंद के गाना तोहरा खुश कर दे यही उम्मीद करत हैं जा
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
0: चलो मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी सुनी जाई प्रेम कहानी सुने खोजत हुआ महेन जी पालमा से महेन भैया गाना मंगले हवन दीदी मान खातिर चलो सुनी जाए गाना हमने मुर्गा मुर्गी के कहानी मुर्गा मुर्गी के लाजवाब प्रेम कहानी

मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी तो सुदेश बोईजू के आवाज में सुन ला जा। अब चलाई गो प्रेम कहानी हमने सुनी जा जयप्रकाश दुखित जी के गावल और प्रकाश दुखित जी के गावल ही गाना चला हमने सुनी जा रघु जी के पास इन पर रघु जी गाना मंगले हवन पिछित से ये गाना अपन पत्नी यादवी जी खातिर मंगले हवन।

जयहरलाल जी के गावली गाना हमने सुनी जा मच्छी मरवा मच्छी मरवा के या फिर एगो कोनो मेहनत करे होला लोग के कितना मेहनत करे के परेला चलो सुनी जा जयहरलाल से और ये गीत हमने बजवा थे जा बिंदिया जी खातिर बिंदिया जी गाँवे रहलन और मच्छी मरवा लोग के खूबे दिखेलन उनकर जीवन खूब दिखेलन तो बिंदिया जी गाना सब मच्छी मरवा के नाम कर ले हवन।

जब हमने समुंदर के बात करीला जा तो हमने अपन पर्यावरण के भी बात करीला जा। पर्यावरण पर जो गाना अभी हमने सुनब जा ईश्वरदत्त जीनिया जी के गावल और ई गाना हमने बजावत है जा कतोबोन से मानती जी के फरमाइश पर। मानती जी गाना अपन तीन अपन चार गुसंगतिया खातिर मंगले हवन सुचित्रा हंसा वीना और मेधा खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का और भोजपुरी तड़का में कुणाल हीरीलाल की आवाज गूंजे होला बात चला सुने जाओ नी। कुणाल हीरीलाल के गावल गाना और गीता जी गाना मंगले हवन अपन तीन गो बेटा खातिर, अक्षय, माधव और शैलेश खातिर। तो चला सुनी जा हमने कुणाल हीरीलाल की आवाज।

पुरखन की कहानियां। चला सुनी जा हमने ये गाना और पुरखन के कितना याद आवेला, पुरखन के कितना हला धन्यवाद देवे के मन करेला। ये किशोर खेमिया हमने के सुने हन और ये गाना हमने बजवावा थे जा रवि जी के पसीन पर। रवि जी गाना अपन भाई निवेद के नाम और बहिन सुदेवी के नाम करत हवन।

0: के याद सच में बड़ा आवेला उनका देवला हमने के जो आजादी बा जो हमने के प्रगति बा सब हमने के पुरखन के देवला
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी के स्वाद संगीत के खुशबू सुरेखा संगीत भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का
0: तड़का विकत लगाए जा हमनी राधा के गाना संगे कृष्ण उखज जी गईले होवनी गाना और ये गाना हमनी से श्याम जी मंगलवन मोताय ब्लाउंस से अपन माता जी शकुन खातिर बहिन ज्ञानती और भाई आत्मा खातिर

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समय है जहाँ पर पूरा हुआ था अभी 55 मिनट हुई होला बाद 10 बज के 55 मिनट के पर एगो अंतिम गाना तोल के सुनवावत है जहाँ हमने लाली लाली कान ब्लांते लागो लुई इफ्रीमान के गावल तफ्रीमान लागो के गावल गाना सुनते सुनते हमने के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का समाप्त हो जाए। बहुत धन्यवाद देवा हमने के सब श्रोता लोग के जे हमने के टेलीफोनी कर लन जा हमें सास भेजलन जा और ये कार्यक्रम के बहुत दिलचस्प बनाई लन जा तो बहुत बहुत धन्यवाद हमने के श्रोता लोगन और हमने के कार्यक्रम के बाद सुनिए जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम पुराना पुराना गीत के बहुत मजेदार कार्यक्रम लेके गिनीशा आए हन आवत हला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार जी, और गणेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और शुरू हो चुका है आपका सुनहरे पल। तो आइए लौट चलते हैं उन खूबसूरत दिनों में जब बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल में बसा लिए जाते थे। अगले कुछ घंटों तक साथ रहिए और महसूस कीजिए पुरानी यादों का जादू सिर्फ सुनहरे पल में।

हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक याद है। दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वो अमर बॉलीवुड गीत जो आज भी दिल को छू जाते हैं। तो चलिए मिलकर यादों के इस सफर का आनंद लेते हैं। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

दोस्तों, अगर आप घर पर आराम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो या हो सकते हैं सफर पर हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पुराने बॉलीवुड संगीत का खजाना। ये है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी जिंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ।

याद कीजिए उन दिनों को, वाकई में वो दौर अलग था, वो गीत अलग थे और उन गीतों की बात ही कुछ और थी दोस्त। और रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आज भी सजेगी यादों की महफिल, तो साथ बनाए रखे और बस हर एक गाने को आप दिल से महसूस कीजिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. बिल्कुल, इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय. आपको विश करना चाहेंगे टू हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम अहेड, लेकिन बस यूं ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल. फिर से लौट आएंगे एक और खूबसूरत से शो के साथ. तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: एक बात बताऊं दोस्त?
1: बता बता जल्दी बता।
0: एक बार वो मुझे मिलने आई।
1: अच्छा?
0: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: एक दिन उसका टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी हेलो हेलो डार्लिंग
1: डार्लिंग।
0: हाँ,
1: फिर क्या बोली?
0: बोली मेरे घर में पार्टी है, आओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवाय कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था,
1: वो थी,
0: मैं था।